एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण शुरू होता है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावोका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्रवाई कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक

0: सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

धैर्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। धैर्य सहनशीलता की वह अवस्था है जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को क्रोध या ईर्ष्या जैसी नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न ना होने देने वाला गुण ही धैर्य है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और शांत चित होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। भक्ति मार्ग पर चलने के लिए भी व्यक्ति का धैर्यवान होना अति आवश्यक है। धैर्य, संतोष और सहनशीलता ही जीवन की नौका की पतवार हैं जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जहां पर आनंद ही आनंद है।

जब भी कोई भक्त अपने दोषों को स्वीकार करके पूर्ण भाव से प्रभु की शरण में जाता है तो प्रभु उनकी रक्षा अवश्य करते हैं।

देवों के देव महादेव संपूर्ण ब्रह्मांड के आदि और अंत हैं, जो अपनी कृपा से भक्तों के सभी संकटों को दूर

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

अपने स्वामी के साथ रहकर वन प्रवास के सारे कष्ट सीता जी की कल्पना में उस पीड़ा से कम दुखदाई होंगे जो पति के वियोग में अयोध्या में झेलनी होगी। यदि श्री राम से 14 वर्षों तक अलग उन्हें अयोध्या में रखा गया तो निश्चित ही वो जीवित नहीं रह सकेंगी। भला स्वामी को वनवास का कठिन जीवन और उन्हें राजमहलों का भोग विलास उचित है? सीता जी ने अत्यधिक व्याकुल होकर ये वचन कहे। पति वियोग की वो कल्पना तक नहीं कर सकती। सीता जी की विकलता देख श्री राम का ये विचार दृढ़ हो गया कि हठपूर्वक उन्हें अयोध्या में छोड़ देने से वो जीवित नहीं रह सकेंगी। अतः उन्होंने सीता जी को विषाद भूलकर वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाने की अनुमति दे दी। माता के चरण छूकर श्री राम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्र को कातर नेत्रों से देखते हुए माता अधीर हो गईं। जब सीता जी ने सास के चरण छुए तो उन्हें हृदय से लगाकर सास ने आशीष दिया, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद सुबह ठीक 7:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुहानी।

7:40 पर सुनेगा लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम गाने सुहाने आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर और आज सुबह 9 बजे समय रहेगा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला का। इसी कार्यक्रम के बीच में सुबह 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। 10:30 पर हिमाचली गीतों पर और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं पहाड़ों के सुर। दिन में 11 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे और 11:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं 11:30 पर। दोपहर 12 बजे समय रहता है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनो सखी और सखियों आज का ये कार्यक्रम लाइव फोन इन रहेगा। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5 बजे तक आकाशवाणी मुंबई से आप सुना करते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5:10 पर आपको सुनवाएंगे कुछ भजन। 5:25 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा मंच और आज के इस कार्यक्रम में हम युवाओं को करवाएंगे एक मजेदार सैर सपाटा। 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे और 6:05 पर आप सुनेंगे हमारा सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ। मौजां ग्राइंदियां ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:30 पर। 7:10 पर किसान व बागबान भाई बहन सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 8:00 संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। देशगान आप सुन सकते हैं 8:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या। 9:00 अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 9:15 पर एक ही कलाकार के अंतर्गत श्रोताओं आज आपको सुनवाएंगे गायक मुकेश के गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। 9:30 पर समय रहेगा लोक संगीत के कार्यक्रम धाम गीता दी का।

0: और रात 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से संसद के दोनों सदनों में हुए प्रश्नकाल पर आधारित विशेष कार्यक्रम रिले किया जाएगा। कार्यक्रमों की रूपरेखा में श्रोताओं बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः स्वीय त्रिराष्ट्र आधिकारिक यात्रायाः द्वितीय चरणे उत्तर मैसेडोनिया देशं संप्राप्तवती। कस्यश्चित् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मैसेडोनिया देशस्य एषा प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। राष्ट्रपतिः स्व समकक्षया गोर्दाना सेल्जानो

0: ओस्का दावकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। सा उत्तर मसिडोनिया देशस्य प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की तथा संसदः अध्यक्षं अफ्रीम गाशी इत्येताभ्यां सह अपि मेलिष्यति। तदनन्तरं सा उत्तर मेसिडोनिया संसदं तथा भारतोत्तर मेसिडोनिया व्यापार मञ्चमपि सम्बोधयिष्यति। उभय देशौ कृषि औषधोद्योग विज्ञान प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्रेषु आर्थिक सहयोगं इतोपि सुदृढीकर्तुं रुचिं प्रदर्शितवन्तौ। राष्ट्रपतिः सेंट पास चर्च इत्यत्र अपि गमिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां यदा विरोधप्रदर्शनं हिंसायां परिवर्तितः तदा अष्टादशोत्तरैकशततोप्यधिकाः आरक्षकाः व्रणिताः। व्रणितेषु विशेषारक्षक आयुक्तः संयुक्तारक्षकायुक्तः अपरायुक्तः उप आरक्षकायुक्तः अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। एकस्मिन् वक्तव्ये दिल्ल्याः आरक्षकाः अवदन् यत् विरोध प्रदर्शन समये प्रदर्शनकारिभिः आक्रामकं हिंसात्मकञ्च आचरणं प्रदर्शितम्। पुनः पुनः पूर्वसूचनाः विधिसम्मतानि निर्देशानि च प्राप्यापि ते विद्रोहं कृतवन्तः। प्रवर्तमानानां निषेधात्मक आदेशानां च उल्लंघनं कृतवन्तः। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् प्रदर्शनकारिभिः आरक्षकाणाम् उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। आरक्षकाणां प्रशासकीय वाहनान् च भंगं कृत्वा हिंसाम् आचरितवन्तः, येन सार्वजनिक व्यवस्थायाः कृते गंभीरा विभीषिका समुत्पन्नासीत्। बलेन उक्तं यत् अवशिष्ट व्रणितानां आरक्षक कर्मचारिणां चिकित्सा विधि परीक्षणं प्रचलति। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् कलह समये प्रायः षष्टि आन्दोलनकारिणः अपि व्रणिताः जाताः। ते उक्तवन्तः यत् प्रायः सप्ततिः प्रदर्शनकारिणः निगडिताः सन्ति, समुचित विधि प्रक्रिया आरब्धा अस्ति। सहैव भारतीय न्याय संहितायाः प्रासंगिकोपबन्धैः अथ अन्य प्रासंगिक विधिभिः च FIR प्राथमिकी इति पञ्जीकृतमस्ति। युक्रेन देशस्य ओडेसा पत्तनात् प्रस्थानावधौ MV गोल्डन लियो इत्यस्यां नौकायां कृताक्रमणस्य भारतेन निन्दा कृता। विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् चत्वारः भारतीयाः नागरिकाः दुर्दैववशात् मृत्युमुपगताः। एकः गंभीरावस्थायां चिकित्सालये उपचाराधीनः अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् उपलब्ध सूचनानुसारं घटना समये पञ्च भारतीय नागरिकैः सह 17 चालकदलस्य सदस्याः आसन्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां पनामा देशस्य विदेशमंत्रिणा हेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। ह्यः जाते उपवेशने डॉक्टर जयशंकरः लैटिन अमेरिका कैरिबियन क्षेत्रयोः प्रवेशद्वारा रूपेण पनामा देशेन सह भारतस्य सम्बन्धस्य गहनतायाः महत्त्वं अधोरेखितवान्। व्यापारोद्योग विकास स्वास्थ्य कृषि शिक्षा आंकिकीय सहयोगादीनां प्रगति विषये उभौ विस्तृतं विमर्शं कृतवन्तौ। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहभागित्वस्य विषये अपि तौ अवदताम्। प्रशासनेन संसूचितं यत् अस्य वर्षस्य जून मास पर्यन्तं देशे प्रायः 49,55,55 कोटि उपयोक्तारः UPI इत्यनेन सह सम्बद्धाः जाताः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना करने की चेतावनी दी है। जब उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में विशेष जांच दल की जांच के बारे में जानकारी देगी तो सर्वोच्च न्यायालय इस महीने की 27 तारीख को याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश का रेड अलर्ट के मद्देनज़र आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। औषधि महानियंत्रक ने टेकोडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति दी है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The National Democratic Alliance, NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. On the second leg of a three-nation state visit, President Draupadi Murmu has reached North Macedonia. This is the first ever visit by an Indian president to North Macedonia. President Murmu will hold bilateral talks with a Macedonian counterpart, Gordana Siljanovsku Davkova. She will also meet the Prime Minister Hristijan Milskosti Speaker of the Assembly, Afrim Gashi, and will also address Assembly of North Macedonia. The President will also address India-North Macedonia Business Forum. Both sides have keen interests in deepening economic ties in the priority sectors like agriculture, pharmaceuticals, science and technology, IT and ITES. President Murmu is also scheduled to visit the Church of St. Spa and will also lay a wreath at the grave of eminent Macedonian revolutionary Gotse Delchev. External Affairs Minister S. Jaishankar met his Panamanian counterpart Javier Eduardo Martinez Achavasque in New Delhi. During the meeting, Dr. Jaishankar underscored the importance of deepening India's engagement with Panama as a gateway to Latin America and the Caribbean region. Both leaders held wide-ranging discussions, including advancing trade, business development, maritime, health, agriculture, education, and digital cooperation. They also spoke about engagement at the multilateral fora.
4: Panama serves as a natural bridge for us for global trade routes, gateway for the wider Latin America region. And anchored by the Panama Canal, your logistics infrastructure certainly sets a global landmark. We value your interest in collaborating across a wide array of domains from education, scholarships, pharmaceuticals, technology, and of course, most important, trade. We note that you have had a consistently high growth trajectory, and as we ourselves accelerate our development towards the quest of Viksit Bharat or developed India by 2047.
3: India condemned the attack on the vessel MV Golden Leo while departing the port of Odisha in Ukraine. External Affairs Ministry said four Indian nationals have tragically lost their lives while one is hospitalized in a critical condition. The ministry said that at the time of the incident, there were 17 crew members on board, including five Indian nationals. The ministry has reiterated that targeting commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding freedom of navigation and commerce is deplorable and should be avoided. The ministry said that the Indian mission in Ukraine is closely monitoring the situation and is making every effort to extend all possible assistance to those affected. The government of India extended deepest condolences to the families of the deceased Indian nationals and wished them speedy and full recovery. More than 118 police personnel sustained injuries yesterday when a protest escalated into violence in New Delhi area. The injured include senior officers of the ranks of Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner and Deputy Commissioner of Police. In a statement, Delhi police said during the protest, the protesters displayed unruly, aggressive and violent behavior. And despite repeated warnings and lawful directions, they refused to disperse and violated the prohibitory orders in force. National Security Advisor Ajit Doval has been selected for this year's prestigious Lokmanya Tilak National Award. The award will be presented on August 1st in Pune on the occasion of the 106th death anniversary of Lokmanya Tilak. In hockey, the Indian sub-junior men's and women's teams made a winning start to their respective campaigns at the FIH Youth Hockey Asian Championship 2026 in Muscat, Oman yesterday. The Indian women's team was the first to start its campaign on the tournament's opening day against Kazakhstan and won 8-3. Ace Indian shuttler PV Sindhu is set to lead India at the China Open 2026 badminton tournament beginning today. Sindhu will face compatriot Unnati Hooda in opening round of 32 clash of the women's singles today. Devika Sihag will also compete in the women's singles draw. Moreover, Lakshya Sen and Ayush Shetty and Aegis Pranoy are the three Indian entries in the men's singles draw. And that is the end of this news bulletin.
5: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी।
6: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: श्रोताओ गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुबह सुहानी में। आज के इस सुहाने सफर में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सचिता। श्रोतो, हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो हमसे कहता है कि गुजरा हुआ कल चाहे जैसा भी था, आज का दिन एक नया पन्ना है जिस पर हम अपनी नई कहानी लिख सकते हैं। और हमारा आज का सुविचार भी कुछ ऐसा ही कहता है कि कल क्या हुआ था उसे भूल जाना चाहिए, कल क्या होगा उसकी चिंता भी हमें छोड़ देनी चाहिए। बस यही याद रखिए कि आज का दिन हमारी मुट्ठी में है और आज का दिन ही है जिसमें हम कुछ नया कर सकते हैं। तो श्रोताओ मुस्कुराइए, क्योंकि एक नई सुबह हमारा इंतजार कर रही है नई कहानी लिखने के लिए। जी हाँ श्रोताओ, ये सुविचार ही होते हैं जो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं, हमारे दिन को ऊर्जावान बनाते हैं। और इसीलिए ये कार्यक्रम है सुबह सुहानी, ताकि आप अपनी सुबह को सुहाना बना सके। आपकी सुबह को सुहाना बनाने के लिए हम सुनवा रहे हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम है सुबह सुहानी। श्रोताओ, अब वक्त है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि आज का ये दिन यानी 21 जुलाई का ये दिन क्यों खास है। श्रोताओ, आज का दिन सपनों के सच होने का दिन है। सन 1969 में आज ही के दिन नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये मानव इतिहास का एक ऐतिहासिक पल था। भारतीय संविधान सभा ने 21 जुलाई 1947 को भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को स्वीकार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे।

साथ ही श्रोताओं, सन 1883 में कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर की भी शुरुआत आज ही के दिन हुई। 1884 को लॉर्ड्स के मैदान पर आज ही के दिन पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था। 21 जुलाई सन 1888 को ब्रिटेन के आविष्कारक डनलप ने टायर और ट्यूब तैयार किए, जिससे परिवहन के साधनों की गति बढ़ी। और 1960 में श्रोताओं, आज के दिन श्रीलंका में सिरिमावो भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1962 में भारत चीन के बीच सीमा पर युद्ध आज ही के दिन शुरू हुआ था। 1963 में काशी विद्यापीठ और विश्व विद्यालय का उसे दर्जा आज ही के दिन दिया गया। श्रोताओं, बात करें सन 2007 की, तो आज ही के दिन यानी 21 जुलाई के दिन देश को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति मिली। 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव में विजयी रही और 25 जुलाई सन 2007 को उन्हें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। और श्रोताओं, आज ही के दिन 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी थी। 25 जुलाई सन 2022 को उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। श्रोताओ, कार्यक्रम में अब फिर से हम आपको ये प्यारा सा गीत सुनवा रहे हैं और गीत के बाद जानकारियों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के दिन यानी 21 जुलाई के दिन जन्म व मृत्यु हुए महान हस्तियों का। श्रोतो, महान आध्यात्मिक संत रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी शारदा माँ का निधन 1920 में आज ही के दिन हुआ। गंगूबाई हंगल का निधन सन 2009 में हुआ था आज ही के दिन। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर व राजनेता चेतन चौहान का जन्म भी आज के दिन 1947 में हुआ था और हिंदी सिनेमा के दिग्गज और लोकप्रिय गीतकार आनंद बख्शी का जन्म भी आज के दिन हुआ 1930 में। श्रोतो, प्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए गीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लोकप्रिय और सदाबहार गानों में से हैं। उन्होंने 1945 से लेकर सन 2002 तक एक लंबा सफर तय किया और लगभग 3000 से अधिक फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे। उनकी खासियत ये थी कि बहुत ही सरल शब्दों में आम आदमी के दिलों की बात लिख देते थे। ऐसा ही एक खूबसूरत सा गीत आपको सुनवा रहे हैं।

एसडी वर्मन का ये संगीत है श्रोताओं आराधना फिल्म से। इस गीत को हमने लिया है, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

श्रोताओ, वक्त हो चला है सुबह सुहानी के इस सफर में देश दुनिया की हलचल पर नजर डालने का। श्रोताओ, दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शनों और सभाओं का दौर जारी है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच राजनीतिक और सामाजिक चर्चा बनी हुई है। संसद का मानसून सत्र पिछले कल से शुरू हो चुका है और आज यानी दूसरे दिन राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों और बैठकों का दौर जारी रहेगा, जिसमें युवा संगठनों और विभिन्न मोर्चों की गतिविधियां शामिल होंगी। अंतर्राष्ट्रीय और प्रवासी युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट के तहत भारत के युवाओं के लिए YPS यानी UK यंग प्रोफेशनल्स स्कीम का दूसरा और अंतिम वीजा वैलिड आज दोपहर खुलने जा रहा है, जिसमें युवा आवेदन कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बेंगलुरु में आयोजित प्रतिष्ठित IEEE स्पेस और यूरोस्पेस एंड डिफेंस कॉन्फ्रेंस का आज समापन दिवस है, जहां देश विदेश के दिग्गज वैज्ञानिक और शोधकर्ता हिस्सा ले रहे हैं।

और श्रोताओं, देश के लिए गर्व का ये पल है। ग्लोबल मंच पर यूपीआई भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने एक और बड़ा वैश्विक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। दुनिया के 12 देशों ने अब यूपीआई सिस्टम को अपना लिया है, जिससे ग्लोबल लेवल पर भारत की डिजिटल ताकत और भी मजबूत हुई है। हेल्थ सेक्टर से एक बड़ी राहत है। भारत ने अपनी पहली डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब टीकाकरण के लिए किसी भी तरह के प्री वैक्सीनेशन टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें, और अब आपको सुनवा रहे हैं ये एक और प्यारा सा गीत, और गीत के बाद जानेंगे मौसम का हाल।

यहां पर भारी बारिश का दौर जारी रहने की भी संभावना है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कुछ संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की भी सलाह दी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते श्रोताओं, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ की आशंका भी जताई है और प्रशासन ने लोगों को नदियों और झरनों के पास न जाने की सलाह दी है। तो श्रोताओं, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकलें, और अगर आप घर से बाहर किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं तो रेनकोट और छाता साथ लेकर जाएं और मौसम विभाग द्वारा दी जा रही जानकारी को अपने ध्यान में रखें और तभी घर से बाहर निकलें और सुरक्षित रहें।

0: तो श्रोतो, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी।
0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं श्रोताओं, और अब आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग।

कार्यक्रम शुभ प्रयाग में आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है। आपको सुनवा रहे हैं नरोत्तम कुमार और साथियों का गाया ये लोकगीत।

0: 1999 ईएमआई के साथ, साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
2: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.
4: आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शुभ प्याग।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शुभ प्याग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:55 हुए हैं। अब सुनिए ये देशगान।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।
1: मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति

0: बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
3: फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। वाट्सएप दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों और इराक में एक सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमज़ोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के तीन दौर

0: के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और PV सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with a North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA Alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest-serving elected Prime Minister of India.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने सुहाने। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास और सुरीले सफर पर। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त सचिता। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज का हमारा ये सफर बहुत ही खास होने वाला है। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में कई ऐसे जादूगर हुए जिन्होंने अपनी कलम से शब्दों को ऐसे पिरोया कि वे हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक व्यक्तित्व की जिन्होंने अपनी सादी और दिल को छू लेने वाली जुबान से आम आदमी के दर्द, उनकी मोहब्बत और

वो इंसान जिन्होंने सिनेमाघरों में बैठकर तालियां बजवाने वाले गाने भी लिखे और अकेले में आंखें नम कर देने वाली गजलें भी दी। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में उनके इसी जादुई व्यक्तित्व को करीब से जानते हैं और सुनते हैं उनके लिखे हुए कुछ बेमिसाल से नगमे और जो गीत आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, श्रोताओं अब से लेकर ठीक 9 बजे तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सुनवाते हैं आपको आज के इस कार्यक्रम का ये पहला गीत। फिल्म का नाम है ताल।

श्रोतो, इसी तरह से आनंद बख्शी साहब ने हिंदी सिनेमा को बहुत ही लोकप्रिय और सदाबहार गाने दिए हैं। ताल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, एआर रहमान का संगीत था और सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें थी। श्रोतो, अब आपको सुनवा रहे हैं हिमाचली गीत और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम। शुरुआत हम कर रहे हैं मानसिंह और सुनील राणा के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: Come on boys, let's go practice.
5: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया।
4: ये तो बैंक को कंप्लेन करना।
5: बैंक को लिखे एक महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं।
6: तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
7: रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेन को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेन सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: हिमाचली लोकगीतों का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
0: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। टीएनसी अप्लाई।

इसी लोकगीत के साथ हिमाचली लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला।

0: सुबह के ठीक 9 बज चुके हैं श्रोता, और हम लेकर हाजिर हैं आपका हमारा हम सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो धर्मशाला।
1: हेलो धर्मशाला, हेलो धर्मशाला,
0: जी हाँ श्रोताओं, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप हमारे साथ जुड़ते हैं और सुनते हैं अपनी पसंद का गीत। तो श्रोताओं, सबसे पहले आपको उन फिल्मों के नाम बता देते हैं जिनसे आज के इस कार्यक्रम में आप अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। जो फिल्में हम आपके लिए चुनकर लाए हैं उनके नाम हैं, आदमी खिलौना है, आरजू, अनामिका, बेवफा सनम, भूल भुलैया, इतिहास, कल की आवाज़, लुटेरा, लव आजकल, मैं हूं ना, महबूब की मेहंदी, प्यार किया तो डरना क्या और राज। तो श्रोताओं, इन फिल्मों में से अगर आप कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए। हमारा टेलीफोन नंबर है 01892224391। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सचिता। तो श्रोताओं, हमारे आज के इस कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है।

0: हम उम्मीद करते हैं कि ये फिर से हमें कॉल करेंगे। हेलो जी, तो श्रोताओं जब भी हमें कॉल करें तो सिग्नल का आप विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि आपकी और हमारी बात सही तरीके से हो पाए। हेलो,
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी। इतिहास फिल्म का गीत सुनवा दीजिए, ये इश्क बड़ा बेदर्द।
0: जी, बहुत जल्दी जल्दी में ये श्रोता हमसे बात कर गए, लेकिन इन्होंने अपनी पसंद का गीत भी बता दिया है। इतिहास फिल्म से ये गीत सुनना चाहते हैं। श्रोताओं, हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े, अच्छे से बात करें, लेकिन कई बार सिग्नल नहीं होता है तो उनकी बात हमारे साथ नहीं हो पाती है। तो इन श्रोताओं ने अपनी पसंद का गीत बता दिया है, हम इनको सुनवा रहे हैं ये गीत। इसी तरह से श्रोताओं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 01892224391 पर।

आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। हेलो हेलो जी, इन श्रोताओं ने हमें कॉल तो किया है लेकिन ये मुझे लगता है गाना सुनने में व्यस्त हो गए हैं। हेलो जी, तो श्रोताओं आपको उन फिल्मों के नाम बता देते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। फिल्में हैं आदमी खिलौना है, आरजू, अनामिका, बेवफा सनम, भूल भुलैया, कल की आवाज़, लुटेरा, लव आजकल, मैं हूं ना, महबूब की मेहंदी, प्यार किया तो डरना क्या और राज। हेलो जी श्रोताओं, आपसे फिर से निवेदन करना चाहते हैं कि सिग्नल में रहकर हमसे बात करें।

0: जी एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से। प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ
0: जी। फिल्म का नाम बताइए, कौन सी फिल्म से आप गीत सुनना चाहते हैं?
1: आरजू फिल्म का सुनवा दीजिएगा
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें कॉल किया है। और आरजू फिल्म का गीत, कौन सा गीत सुनेंगे आप बता दीजिए
1: जी। इसमें से आप कोई सा भी
0: जी। तो इनकी भी कॉल कट गई है, लेकिन इन्होंने फिल्म का नाम बता दिया है। श्रोताओं, इनकी फरमाइश को पूरा करते हैं और सुनते हैं आरजू फिल्म से ये गीत।

कार्यक्रम हेलो धर्मशाला, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। एक श्रोता हमारे साथ हैं। जी हाँ श्रोताओं, बरसात का मौसम है, ऐसे में इस तरह की परेशानियां हो ही जाती हैं। तो हमारे श्रोता बहुत प्यारे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ने की। हेलो जी हाँ श्रोताओं, सुबह के 9:16 हो चुके हैं और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो धर्मशाला।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और श्रोताओं इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा प्रादेशिक समाचारों के बाद भी। सुबह के 9:18 हो चुके हैं श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य न निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें अधिकार जाने,
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में मानसून की वर्षा का क्रम जारी, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में आज भारी वर्षा का रेड अलर्ट। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों सहित कुल्लू के आनी और निरमंड व शिमला के ठियोग उपमंडल में सभी शैक्षणिक संस्थानों में आज रहेगा अवकाश। वर्षा से विभिन्न क्षेत्रों से नुकसान के समाचार। चंबा जिला में 20 लोगों को किया गया रेस्क्यू, किन्नौर में NH5 यातायात के लिए बंद। सरकार द्वारा MIS के तहत सेब खरीद समर्थन मूल्य न बढ़ाने पर भाजपा ने जताई निराशा। मंडी के गोपालपुर विकास खंड में सुनील कुमार ने प्राकृतिक खेती से सफलता की नई मिसाल की पेश। और देश को मिली डेंगू की पहली वैक्सीन, औषधिक महानियंत्रक से मिली मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में मानसून की वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने सिरमौर जिले के लिए फ्लैश फ्लड की संभावना को देखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार आज 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और कुल्लू में अनेक स्थानों पर वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में आज दूसरे दिन भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कुल्लू जिला के आनी और निरमंड उपमंडल सहित शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में भी आज एहतियातन सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान हो रही मानसून की वर्षा से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से नुकसान के समाचार है। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी की शून पंचायत में बादल फटने की एक घटना

0: घटना से नदी नाले उफान पर है, जिससे यहां कल वीवी जीराम जी योजना के तहत कार्य में जुटे 20 लोग फंस गए थे, जिन्हें बीती रात रेस्क्यू किया गया है। लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण सड़क मार्ग बह जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही रोक दी है और सीमा सड़क संगठन को इस सड़क मार्ग की बहाली के निर्देश दिए हैं, ताकि क्षेत्र के किसानों व बागवानों की फसल को मंडियों तक पहुँचाना सुनिश्चित हो सके। किन्नौर जिला में भी सतलुज नदी उफान पर है और कड़छम बांध में पानी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। बांध योजना प्रबंधन ने बांध से कभी भी पानी छोड़ने की संभावना को देखते हुए लोगों से नदी के किनारे ना जाने और एहतियात बरतने की अपील की है। जिला में शलखर और समदो के निकट दो और अलग अलग स्थानों पर भूस्खलन और चट्टाने गिरने की घटना से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बंद हो गया है, जिससे काजा, स्पीति, पूह और रिकोंगपियों के बीच यातायात अवरुद्ध है। सिरमौर जिला में गिरी जटोन डैम में अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है और नदी के साथ इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है। भारत में इस वर्ष जून तक 55,49,00,000 से अधिक उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। ये जानकारी लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में यूपीआई के जरिए 314,00,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। उन्होंने बताया कि यूपीआई लेन देन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि यूपीआई को कई देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ा गया है, जिससे व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी भुगतान को आसान बनाया जा सके। प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो चुका है और राज्य मंत्रिमंडल ने कल एमआईएस के तहत सेब खरीद को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बराकटा ने निराशा जाहिर करते हुए कहा है कि सेब समर्थन मूल्य में 2 साल बाद भी वृद्धि नहीं की गई है।
1: पिछले कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी शिमला में, उसमें हम सब बागवानी आशा कर रहे थे कि जो एचपीएमसी द्वारा, हिमफेड द्वारा जो सी ग्रेड का सेब हमारे से लिया जाता है, प्रोक्योर किया जाता है, उस रेट में इंक्रीज होगा, बढ़ोतरी होगी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक पैसा भी उसमें नहीं बढ़ाया और ये लगातार दूसरा साल हो गया है। 150 करोड़ रुपया पिछले कुछ सालों का लंबित है जो बागवानों को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देना है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करती है कि जो हमारे एमआईएस की पेमेंट्स है पिछले कुछ सालों की, उसको क्लियर करवाए और साथ ही साथ जो है एमआईएस इस सीजन में किया जाएगा उसमें बढ़ोतरी की जाए। धन्यवाद।
0: भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने एक निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा विकसित क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की है। कंपनी के अनुसार ये वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के लिए स्वीकृत है और इसे डेंगू संक्रमण के पूर्व इतिहास की जाँच के बिना लगाया जा सकता है। इसे यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ब्राजील, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना सहित 40 से अधिक देशों में मंजूरी मिल चुकी है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मंडी जिला के गोपालपुर विकासखंड के खनोट गांव के प्रगतिशील किसान सुनील कुमार ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर सफलता की नई मिसाल पेश की है। मात्र 2 बीघा भूमि पर प्राकृतिक खेती कर वे सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
2: मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के गोपालपुर विकासखंड के खनोट गांव के प्रगतिशील किसान सुनील कुमार ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर सफलता की नई मिसाल पेश की है। मात्र 2 बीघा जमीन पर प्राकृतिक खेती कर वे सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। सुनील कुमार का कहना है कि प्राकृतिक खेती अपनाने से उनकी खेती की लागत घटी है, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह बंद हुआ है और मिट्टी की उर्वरता में लगातार सुधार आया है। पिछले वर्ष उन्होंने पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती की, जिसमें 10 से 15 हजार रुपए के निवेश पर लगभग 60 से 70 हजार रुपए की आय हुई और करीब 50 हजार रुपए किया शुद्ध लाभ हुआ। वर्तमान में वे कई फसलों की प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: आयकर विभाग द्वारा कल 22 जुलाई को शिमला स्थित रेलवे बोर्ड भवन में करदाता जागरूकता व जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य करदाताओं को निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न समय पर और सही तरीके से दाखिल करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान लोगों को सही ITR फॉर्म के चयन, उपयुक्त कर व्यवस्था के चुनाव, रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया, आयकर कानूनों में हाल के संशोधनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल के निर्णयों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, हिमाचल में भरे जाएंगे 7,500 पद। नंबरदारों और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी। पंजाब केसरी ने लिखा है, सुक्खू सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 7,500 पदों पर होगी भर्ती। अब कुफरी अभेद्य और रूबी भी उगाएंगे हिमाचल के किसान, शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, केंद्र सरकार ने आलू की दो नई किस्मों की खेती के लिए जारी की अधिसूचना। दैनिक जागरण के शब्द है, आलू करेगा मालाबाल, नहीं लगेगा झुलसा रोग। दैनिक भास्कर ने प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, दूसरी पत्नी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार, विवाह भले ही कानूनन अमान्य हो उसे अनैतिक नहीं ठहरा सकते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में मानसून की वर्षा का क्रम जारी, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में आज भारी वर्षा का रेड अलर्ट। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों सहित कुल्लू के आनी और निरमंड और शिमला के ठियोग उपमंडल में सभी शैक्षणिक संस्थानों में आज रहेगा अवकाश। वर्षा से विभिन्न क्षेत्रों से नुकसान के समाचार, चंबा जिला में 20 लोगों को किया गया रेस्क्यू, किन्नौर में NH5 यातायात के लिए बंद। सरकार द्वारा MIS के तहत सेब खरीद समर्थन मूल्य न बढ़ाने पर भाजपा ने जताई निराशा। मंडी के गोपालपुर विकास खंड में सुनील कुमार ने प्राकृतिक खेती से सफलता की नई मिसाल की पेश। और देश को मिली डेंगू की पहली वैक्सीन, औषधीय नियंत्रण ने दी मंजूरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 AM। नमस्कार।
3: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
4: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
5: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
6: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी।
7: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला में। हेलो,
8: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
7: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
8: ठीक है मैडम, आप भी अच्छी हैं, मैं भी अच्छा हूँ। फोन लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बातचीत हो रहा है, डबल खुशी बढ़ रहा है। मौसम एकदम बादल किया हुआ है, एकदम पानी यहाँ गिरने का कगार में है। और इधर आपको कहना चाहिए कि दक्षिण दिशा से एकदम जबरदस्त पानी गिर रहा है मैडम
7: जी, हर जगह बारिश का कहर जो है वो जारी है। आप जल्दी से हमें फिल्म बता दीजिए जिसका गीत।
8: जी फिल्म बना में मैं हूं ना, गीत के बोले तुमसे मिलकर दिल का हाल क्या करे, गायक सोनू निगम। सबसे पहले गीत आपको कहने, निर्देशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी धर्मशाला में जुड़े सभी लोगों को, हेलो एक्टर रेडियो प्रवेश ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत राज के श्रोताओं को, आकाशवाणी धर्मशाला में सभी उद्घोषक भाई बहन स्टाफ कंजर्व सबको डीडी कर मैडम। अब इंतजार रहो अपने पसंद के गीत सुनने के लिए, फोन शाम की मैडम। धन्यवाद
7: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया और हम सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे द्वारा चुनी हुई फिल्मों में से अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। हेलो
1: मैडम, नमस्कार जी।

0: जी हाँ श्रोताओ, एक और श्रोता हमें कॉल कर रहे थे, लेकिन इनसे हमारी बात नहीं हो पाई है। उम्मीद करते हैं कि ये फिर से हमें कॉल करेंगे। हेलो
1: हेलो,
0: जी,
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: मैडम
0: जी,
1: जी।
0: कार्यक्रम हेलो धर्मशाला में आपका स्वागत है।
1: मैं राकेश गुप्ता दाड़ी से बोल रहा हूँ मैडम।

0: जी जी
1: सनम बेफा सनम का गाना सुनाने की कृपा करें मैडम जी।
0: ठीक है, इस फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे
1: मैडम? सब गाने अच्छे हैं, कोई भी गाना सुना दीजिए मैडम इसका।
0: ठीक है, आपको इस फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं, आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया।

लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में जो फिल्में अब हमारे पास शेष बची हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। आदमी खिलौना है, अनामिका, भूल भुलैया, कल की आवाज़, राज, लुटेरा, लव आजकल और प्यार किया तो डरना क्या। इन फिल्मों में से अगर आप कोई भी गीत सुनना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर है 01892 2243 91।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
0: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
0: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं लाइफ ऑन इन हेलो धर्मशाला। हेलो,
4: हाँ जी नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं
4: जी? मैं रैत से कर रहा हूँ जी, जयंती जनरल स्टोर, विनोद बालिया
3: जी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में
4: जी। जी
3: जी, कहिए कौन सी फिल्म से गीत सुनेंगे?
4: प्यार किया तो डरना क्या है, है ना जी फिल्म?
3: जी नई वाली है, 90s वाली।
4: हाँ बस वही चाहिए जी।
3: जी जी बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
4: और टाइटल सॉन्ग ही सुनाए जी।
3: इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग?
4: जी प्यार किया तो डरना क्या।
3: ठीक है, हम कोशिश करेंगे ये गीत आपको सुनवाने के लिए
4: जी।
3: जी शुक्रिया आपने कॉल किया, और यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।
4: धन्यवाद जी।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: जी वेरी गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए।
1: योगेश जांगड़े, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: जी योगेश जी, बताइए कौन सी फिल्म से गीत सुनेंगे?
1: कल की आवाज से बचा है क्या?
0: जी जी
1: हाँ, तो उन्हीं में से सुना देंगे।
0: जी इस फिल्म का कोई सा भी गीत सुनेंगे?
1: हाँ जी, वो तुम्हारी नजरों में हमने देखा है, ये उपलब्ध होगा तो वो सुनवा देंगे,
0: जी,
1: और नहीं होगा
0: बिल्कुल
1: तो कोई सा भी।
0: जी आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं। जी बताइए आपके वहाँ मौसम कैसा है?
1: अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है।
0: अच्छा, हमारे यहाँ तो झमाझम बारिश हो रही है।
1: मतलब अभी 3-4 दिनों में ना बारिश अच्छा हुआ है, पहले बहुत गर्मी उमस था और काफी परेशानी थी।
0: जी तो रिमझिम बारिश के साथ रेडियो पर अपनी पसंद का ये गीत एंजॉय कीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।
1: जी धन्यवाद।

तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया अंकित धीमान ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। और अब अपनी रेडियो दोस्त सचिता को इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। फिर किसी दिन इसी कार्यक्रम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो धर्मशाला, जो कि लाइव फोन इन था। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। गीतों के कारवा के सफर में हाजिर हूं मैं मीनाक्षी, लेकर ये

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म हम साथ साथ हैं का ये गीत सुना। गीत को गाया था कविता कृष्णमूर्ति, अलका यज्ञिक और अनुराधा पौडवाल ने। गीतकार थे किरण और संगीतकार राम लक्ष्मण। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यस बॉस से। आवाजें हैं अलका यज्ञिक और कुमार सानू की। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत जतिन ललित का है।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: श्रोताओं, फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म रोजा का आपको ये गीत सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। शब्द रचना पीके मिश्रा की और सुर दिए हैं एआर रहमान ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीतों का कारवां का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं दिलेर मेहंदी और अलका याग्निक के युगल स्वरों में, फिल्म अर्जुन पंडित से। संगीत दिया है दिलीप सेन ने और समीर सेन ने।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अशोक चौधरी के गाए इस लोक भजन के साथ।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, पहाड़ों के सुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 MHz पर। और कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लेहरू राम संख्यान की आवाज में ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश भर में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में कई स्थानों पर तीव्र से अधिक तीव्र वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने सिरमौर जिले के लिए फ्लैश फ्लड की संभावना को देखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार आज सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ एक दो स्थानों पर तीव्र वर्षा का अनुमान है। वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में आज दूसरे दिन भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कुल्लू जिला के आनी और निरमंड उपमंडल के साथ साथ शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में भी आज एहतियातन सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान हो रही मॉनसून की वर्षा से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से नुकसान के समाचार है। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी की शून पंचायत में बादल फटने की एक घटना में नदी नाले उफान पर है, जिससे यहां कल वीबी जीरामजी योजना के तहत कार्य में जुटे 20 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें बीती रात रेस्क्यू किया गया है। लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण सड़क मार्ग बह जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही रोक दी है और सीमा सड़क संगठन को इस सड़क मार्ग की बहाली के निर्देश दिए हैं, ताकि क्षेत्र के किसानों व बागवानों की फसल को मंडियों तक पहुँचाना सुनिश्चित हो सके। किन्नौर जिला में भी सतलुज नदी उफान पर है और करछम बांध में पानी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। बांध परियोजना प्रबंधन ने बांध से कभी भी पानी छोड़ने की संभावना को देखते हुए लोगों से नदी के किनारे ना जाने और एहतियात बरतने की अपील की है। जिला के शलखर के समदो के निकट दो अलग अलग स्थानों पर भूस्खलन और चट्टानें गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बंद हो गया है, जिससे काजा, स्पीति, पूह और कॉम्पियों के बीच यातायात अवरुद्ध है। सिरमौर जिला के गिरी जटोंग डैम से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है और नदी के साथ इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है। चंबा जिला की लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में आज सुबह भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। सांसद व पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल लोकसभा में सोलन जिला के भगत कोऑपरेटिव बैंक में जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों और उसकी वित्तीय स्थिति की जानकारी मांगी। सरकार की ओर से प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि रिजर्व बैंक द्वारा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से अक्टूबर 2025 में बैंक परिचालन पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत प्रत्येक जमाकर्ता के लिए निकासी की सीमा 10,000 निर्धारित की गई थी। ये प्रतिबंध इस वर्ष 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगे, जिसकी समय पर समीक्षा की जा रही है। बैंक के 70,849 जमाकर्ता तथा 10,590 शेयर धारक इन प्रतिबंधों से प्रभावित हुए हैं। सरकार ने बताया कि बैंक का किसी दूसरे सहकारी बैंक में विलय का कोई प्रस्ताव आरबीआई को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो चुका है और राज्य मंत्रिमंडल ने कल एमआईएस के तहत सेब खरीद को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने निराशा जाहिर करते हुए कहा है कि सेब समर्थन मूल्य में 2 साल बाद भी वृद्धि नहीं की गई है।
1: पिछले कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी शिमला में, उसमें हम सब बागवानी आशा कर रहे थे कि जो एचपीएमसी द्वारा, हिमफेड द्वारा जो सी ग्रेड का सेब हमारे से लिया जाता है, प्रोक्योर किया जाता है, उस रेट में इंक्रीज होगा, बढ़ोतरी होगी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक पैसा भी उसमें नहीं बढ़ाया और ये लगातार दूसरा साल हो गया है। 150 करोड़ रुपया पिछले कुछ सालों का लंबित है, जो बागवानों को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देना है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करती है कि जो हमारे एमआईएस की पेमेंट्स है पिछले कुछ सालों की, उसको क्लियर करवाए और साथ ही साथ जो है एमआईएस इस सीजन में किया जाएगा, उसमें बढ़ोतरी की जाए।
0: कुल्लू जिला में 2026-27 की पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में 25 जुलाई से 14 अगस्त तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त अनुराग चंद शर्मा ने ये आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन ग्राम सभाओं में स्थानीय विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय की जाएगी और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3:00 PM। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे एक बार फिर से पहाड़ी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की, और इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं करनैल राणा के इस लोक भजन के साथ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
3: Nexa.
4: ये लोकगीत आपको सुनवाने जा रहे हैं विमला चौहान की आवाज में।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, गूंज पहाड़ों की कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं मान सिंह की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
3: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
3: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
3: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
3: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
3: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉनबील मेले की।
3: जॉनबील मेला
2: जी,
3: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
3: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
3: जी। पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
3: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
3: हाँ विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
2: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था
3: जी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय

0: से भटक गए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर?
1: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
0: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है
1: जी।
0: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
1: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी
0: जी। श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
0: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है
1: जी।
0: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
1: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
0: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
1: जी, फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
0: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
1: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जॉन बील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
1: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

0: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है। क्यों? आइए जानते हैं।
1: यमन भैया कहाँ हो भैया?
2: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया, खुश होने की बात तो है ही। पता है, पापा का ईमेल आया है।
2: अच्छा, क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है। कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
3: साथियों, वल्लरी के पिता वन

0: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
1: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुंचे डिब्रूगढ़।
0: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुंच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
2: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
3: नमस्ते पापा।
2: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
3: ठीक है।
2: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
3: बड़ा मजा आया।
2: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आजा आजा आजा।
1: चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
0: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
1: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया।
2: अरे भाई चावतान जी घर पर हैं क्या?
4: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
3: नमस्ते अंकल।
4: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी है ना?
2: बिल्कुल ठीक पहचाना।
4: आइए, स्वागत है आप सबका।
2: धन्यवाद।
4: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा वर्मा।
2: अरे भाई हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
5: अंकल हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर जगह है।
4: थैंक यू।
6: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
4: ओहो वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
2: जी,
4: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
2: बिल्कुल ठीक कहा।
4: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
2: अरे
4: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखकेन का पर्व जो है।
2: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
5: अच्छा तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
2: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया आई हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
6: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
4: बेटा ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
2: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
5: यह तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
4: थैंक यू।
2: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
4: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
2: अच्छा
5: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
4: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
2: जल उत्सव क्यों?
4: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
2: अच्छा।
4: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हो।
2: हाँ।
4: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
2: जी।
6: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।

0: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
1: तो हम भी चले?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
1: चलो चलो चलो।
2: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
3: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
2: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चाउतान जी से कहा,
1: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
3: इतने में किसी ने चाउतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया। अरे!
2: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चाउतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
0: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
1: अच्छा।
0: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
1: जी अंकल।
0: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
4: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
0: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
4: हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
3: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
5: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
6: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओं, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ सुरक्षित।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये गीत, गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों, समय हो गया आपसे विदा लेने का, तो मुझे यानी मीनाक्षी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:30 हुए हैं, 12:30 हुए हैं। अब प्यारी बहनें सुनेंगी अपना खास कार्यक्रम सुनो सखी का फोन इन लाइव फरमाइश।

0: जिंदगी का यही दस्तूर रहे, सबके चेहरों पर खुशियों का नूर रहे। मौसम तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हम सब में जिंदगी को जीने का हौसला जरूर रहे। नमस्कार सखियों, मैं हूं मीनाक्षी और स्वागत करती हूं आप सभी श्रोता सखियों का सुनो सखी के लाइव फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में। आज है मंगलवार और हमारे लिए बेहद ख़ास दिन, क्योंकि आज हमें मिलता है मौका अपनी सखियों से बात करने का, उन्हें गीत सुनाने का, जिसमें फिल्में तो रहती हैं हमारी पसंद की, लेकिन उन चुनिंदा फिल्मों के गीत होते हैं आपकी पसंद की। तो सखियों, ढेर सारी बातें हमें आज करनी है, और देर किस बात की, डायल कीजिए हमारे स्टूडियोज़ का नंबर जो है 01892-224391। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 01892-224391। और जिन फिल्मों के आज हमने रखे हैं गानों के लिए, उनके नाम हैं दोस्ती, हिना, हम किसी से कम नहीं, हमराज, कभी हाँ कभी ना, केसरी, लाल बंगला, मेरा साया, प्रेम पुजारी। तो देर नहीं करनी है, नंबर जरूर डायल करें आप। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रही हैं?
1: रमना कुमारी
0: जी। रमना जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, तो पहले तो ये बताइए कि किस फिल्म का आप गीत सुनना चाहती हैं। फिल्में हमने रखी हैं दोस्ती, हिना, हम किसी से कम नहीं, हमराज, केसरी, कभी हाँ कभी ना, लाल बंगला, मेरा साया और प्रेम पुजारी। अच्छा जी, कौन सा फिल्म गीत आप सुनना चाहेंगी दोस्ती फिल्म से?
1: कोई भी।
0: अच्छा, कोई भी। तो क्या करती हैं रमना जी आप?
1: फुटवेयर में लगी हूँ, काम कर रही हूँ मार्केट।
0: बहुत बढ़िया है ना, फुटवेयर का काम करती हैं आप। तो आज मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है,
0: बारिश। हाँ, तो अभी बंद है या लगी हुई है?
1: अभी बंद है।
0: अच्छा,
1: लग रही है।
0: बहुत बढ़िया है ना। और क्या शौक है आपके, क्या करना पसंद करती हैं?
1: बस काम के साथ गाने सुनती।
0: जी, तो बहुत बढ़िया।
1: रेडियो दिन भर चला रहता है।
0: अच्छा, दिन भर आप रेडियो सुनती हैं, बड़ी अच्छी बात है। और हमारे आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं?
1: बहुत बढ़िया, हमारा मायका भी धर्मशाला में है।
0: बहुत बढ़िया है ना, जब मायका यहाँ है तो अपनापन और वो लगाव एक अलग सा हो जाता है। तो चलिए रमना जी, आपने स्टूडियो में कॉल किया, इसके लिए धन्यवाद। और फिल्म दोस्ती का आपको ये गीत सुनवा रहे हैं जी।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार मैम।
0: कौन बोल रही हैं?
1: मेरा नाम अक्षरा है मैम।
0: जी अक्षरा जी, कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी मैं हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से बोल रही हूँ।
0: जी कांगड़ा में कौन सी जगह से?
1: तहसील हारचकिया।
0: जी हारचकिया से आप बात कर रही हैं। तो जिन फिल्मों के नाम आज हमने रखे हैं वो नाम आपने सुने हैं?
1: नहीं, आप एक बार रिपीट कर दो।
0: जी, तो फिल्में हैं हिना, हम किसी से कम नहीं, हमराज, कभी हाँ कभी ना, केसरी, लाल बंगला, मेरा साया, प्रेम पुजारी। तो बताइए इनमें से कौन सी फिल्म का गीत आप पसंद
1: मूवी
0: करें?
1: हीना।
0: हिना, हिना का कौन सा गीत?
1: कोई भी सुना दो।
0: जी, और क्या करती हैं अक्षरा जी आप?
1: मैं तो अभी क्लास प्लस टू में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, स्टूडेंट हैं, तो क्या सब्जेक्ट आपने रखे हैं?
1: मैंने आर्ट्स रखा है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कैसा इंटरेस्ट है पढ़ाई में?
1: इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो है पढ़ाई में, अच्छा है।
0: अच्छा लगता है पढ़ना, या कई बार दिल करता है कि नहीं अब बुक बंद करो और किताबें छोड़ के मुझे पढ़ना नहीं है, या फोन पे ज्यादा बिजी रहते हो?
1: नहीं, जितना मतलब फोन में थोड़ा कम है, तो पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट है।
0: जी, है ना, और रखना भी चाहिए क्योंकि यही उम्र है। एक बार अगर पढ़ाई से आप अच्छे से निकल जाते हैं तो फिर जो मर्जी करें कोई टेंशन नहीं होती, तो बहुत अच्छी बात है। अक्षरा जी, आपने धर्मशाला स्टूडियोज़ में कॉल किया और हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आपकी फरमाइश पे हिना फिल्म से हम लगा रहे हैं ये गीत।
1: ओके, थैंक यू।
0: ओके जी, थैंक यू।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार मैडम जी।
1: कौन बात कर रही हैं?
2: कठुए से बोल रही हूँ मैडम जी।
1: अच्छा, कठुए से। क्या नाम बताया?
2: तानिया मैडम जी।
1: अच्छा, तानिया या सानिया?
2: तानिया मैडम जी।
1: ओके, तानिया जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक है मैडम जी, आप बताइए कैसे हो?
1: बहुत बढ़िया। और मौसम कैसा है?
2: मौसम मैडम जी बारिश लगी है, बहुत बारिश लगी है आज।
1: बहुत जोर की है ना, बहुत तेज बारिश यहाँ भी हो रही है। और चलिए, तो पहले तो हमें ये बता दीजिए कि किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहती हैं। फिल्में हमने रखी हैं हम किसी से कम नहीं, हमराज, कभी हाँ कभी ना, केसरी, लाल बंगला, मेरा साया और प्रेम पुजारी।
2: मैडम जी प्रेम पुजारी सुना रहे हो?
1: प्रेम पुजारी का कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगी?

0: राधे मैडम जी।
1: अच्छा, कोई भी गीत हम आपको सुना देते हैं। और क्या क्या करती हैं आप, मतलब किस तरह से आपका जो दिन का, चलिए फोन लाइन जो है वो कट चुकी है, लेकिन इन्होंने अपनी पसंद का गीत हमें बता दिया है। फिल्म प्रेम पुजारी से हम ये गीत सुनवा रहे हैं।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू।

0: बारिश लगी है, बहुत बारिश लगी है आज।
1: बहुत जोर की है ना, बहुत तेज बारिश यहाँ भी हो रही है। और चलिए, तो पहले तो हमें ये बता दीजिए कि किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहती हैं। फिल्में हमने रखी हैं, हम किसी से कम नहीं, हमराज, कभी हाँ कभी ना, केसरी, लाल बंगला, मेरा साया और प्रेम पुजारी।
0: मैडम जी, प्रेम पुजारी सुना रहे हो?
1: प्रेम पुजारी का कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगी?
0: मैडम फोन सुना रहे हो मैडम जी।
1: अच्छा, कोई भी गीत हम आपको सुना देते हैं। और क्या क्या करती हैं आप, मतलब

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी। कौन बात कर रही हैं
1: अनीता बात कर रही हूँ मैम, तलवाड़ा से।
0: जी? अनीता जी, तलवाड़ा से आप बोल रही हैं, और कैसी हैं?
1: ठीक हूँ मैम, आप बताओ।
0: बहुत बढ़िया अनीता जी। तो पहले ये बता दीजिए कि किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहें।

0: सुनती हैं, और कौन से कार्यक्रम आप ज्यादातर सुनती हैं?
1: ज्यादातर मुझे मैम सुबह वाला जो 6 बजे आता है वो वाला सबसे अच्छा लगता है, भक्ति संगीत वाला प्रोग्राम है।
0: अच्छा, भक्ति संगीत तो बढ़िया है ना? तो चलिए,
1: सुबह की शुरुआत अच्छे से हो जाती है।
0: हाँ जी, ये तो है। तो चलिए, आपकी पसंद का आपको
1: जी
0: ये हमराज फिल्म से गीत सुनवा रहे हैं। स्टूडियो में आपने कॉल किया, इसके लिए धन्यवाद
1: थैंक यू मैम।
0: जी।

जी, ये जानकारी के लिए बता दें कि ये सिर्फ महिलाओं का कार्यक्रम है और सिर्फ महिलाएं ही इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ें, हमसे बात करें।

0: इसी गीत के साथ सखियों समय हो गया आपसे विदा लेने का। तो आप भी सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद जिन्होंने अपनी प्यारी प्यारी कॉल्स के जरिए इस महफिल को और भी खूबसूरत बना दिया। आपकी मुस्कान, आपकी बातें और आपकी पसंद ही इस कार्यक्रम की असली पहचान है। तो सखियों, मुझे यानी मीनाक्षी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया विकास पठानिया ने और प्रस्तुतकर्ता रहे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। प्यारे सखियों, नमस्कार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बचाव कार्य और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच राज्य में NHPC तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू के रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू के रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू के रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे।

अनूप को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोफ से कहा गया कि व्यापार

0: अपने अपने मुकाबले हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country.

फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, देवर। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी की याद को समर्पित था ये गाना, रोशन का संगीत था। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है सही, और ये भी लिखा है कि धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर होते हैं इस फिल्म में। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम पहला गाना सुन रहे थे चलो सजना तो हमें याद आया

फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। देवर लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी की याद को समर्पित था ये गाना, रोशन का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है सही, और ये भी लिखा है कि धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर होते हैं इस फिल्म में। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम पहला गाना सुन रहे थे चलो सजना, तो हमें याद आया गुड्डे से, और विदा के समय जब वो गुड्डे वाली सहेली कहती अब ये गुड़िया हमारी हुई, तो सारी दोस्ती भूल कर अपनी गुड़िया के लिए लड़ाई करना, तब बीज बचाव में मम्मी को आना पड़ता। क्या बात है भाई, वे कहती कि शादी हुई है तो गुड़िया अब गुड्डे की हुई ना, फिर न जाने कब बचपन बीत गया और फिर मिला एक साथी जिसके साथ चलते जीवन की सच्चाई से सामना हुआ। यादें भी न जाने कितनी अजीब होती हैं, वे कभी दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक किसी गीत के सहारे किसी पुराने मौसम के साथ दिल में उतर आती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो अब हमारा साथी है, हमारा हम सफ़र है। तो अपने हम सफ़र से जुड़ी हुई बात भी बताइए, विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी साझा कीजिए कि आपके जीवन साथी के साथ दिन में कितनी बार तकरार होती है और कितनी बार प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, ये भी साझा कीजिए। भाई ये तो प्रोग्राम ही ऐसा है कि एक परिवार की तरह हम एक दूसरे से बोलते बतियाते हैं। फिलहाल अब जो वो गाना आ रहा है जिसकी फरमाइश बहुत सारे श्रोताओं ने की है और बहुत सारे श्रोताओं ने इससे जुड़ी हुई याद साझा की है, टिप्पणी साझा की है।

गुड़िया के अलावा आपके पापा कौन सा तोहफा लाया करते थे शाम को जब घर लौटते थे तो? कभी जब आपके पापा खाली हाथ आते थे तो कैसा लगता था, जरा वो भी बताइएगा। क्या गुड़िया के अलावा कभी टॉफी चॉकलेट भी लाए?

तकदीर फिल्म का गाना था लता मंगेशकर और सुलक्षणा पंडित, मीना पत्की और साथियों की आवाजें थी। गीतकार संगीतकार आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आनंद बख्शी की याद को समर्पित था ये गाना और बहुत सारे श्रोताओं ने लंबी तादाद में इस गाने का जिक्र किया और अपने पापा के तोहफों का जिक्र किया। एक श्रोता ने लिखा है कि पापा का साथ होना ही सबसे बड़ा उपहार होता है, बहुत ही भावुक कर देने वाला गीत है ये। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गुड़िये गुड्डे से तो नहीं खेल पाया हूँ, लेकिन मेरी धर्म पत्नी मुझे बताती हैं कि वो उनकी बहनें बचपन में अपनी गुड़िया और दूसरे बच्चों के गुड़िया के साथ आपस में मिलकर शादी कराते थे, खूब मज़े करते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब के लिए लिखा है कि आनंद बख्शी जी ने गीत सिर्फ लिखे नहीं, उन्हें लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया गया। उनके शब्द इतने सहज थे कि हर कोई उसमें अपना एहसास, कोई रिश्ता, कोई याद ढूंढ लेता है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, सादगी में गहराई और हर दिल तक पहुँच जाने वाली बात। बिल्कुल सही फरमाया है कि सीधे सादे अंदाज में, सरल भाषा में गहरी बात लिखना बहुत मुश्किल है। एक श्रोता ने लिखा है कि भई आज तो पूरी लिस्ट वायरल हो गई है, आप तो प्रश्न करते रहिए, जवाब देते रहेंगे। तो हमने तो आपसे प्रश्न किया है कि अब बताइए कि आनंद बख्शी साहब के कौन से गाने इस वक्त आपको याद आ रहे हैं। कोई एक गाना अगर आपसे कहा जाए, चुनकर बताइए कि आपका बेहद पसंदीदा गाना, तो क्या आप सब बता सकेंगे? अगर बता सकते हैं तो ज़रा बताइए, हम भी देखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब वो शख्सियत हैं जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया में कभी एक जैसा किसी का नसीब नहीं होता है, जो देवर फिल्म का गाना सुनवाया था उसके लिए। और झूले के लिए इन्होंने लिखा है कि सावन के महीने में जब झूले पर पींगे मारते थे तो बीच में बैठी लड़कियाँ गाना गाती थीं, पिया मेहंदी मगाए द मोती झील से जाए के साइकिल से, ये याद है मेरी दीदी को। और एक श्रोता ने लिखा है कि पींगे भरते हुए लोगों को देखा है और स्वयं तो दरवाजे की कुंडी में चादर बांधकर तकिया लगाकर घर में झूला झूला गया है, भाई क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो मेरी गुड़िया का जन्मदिवस है, आज वो 13 बरस की हो गई। और एक श्रोता ने लिखा है कि पापा जल्दी आ जाना, ये गाना इतना भावपूर्ण है कि आँखों में

गाने हैं सात समंदर पार से, एक था गुल और एक थी बुलबुल, तेरी जुल्फ के छांव में दिल मेरा खोना चाहे और छोड़कर तेरे प्यार का दामन। फिर आगे लिखा, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं ओ मेरे शाह खुबा। भई गज़ब, इतने सारे गाने तो आपने बूझ लिए, तो और भी श्रोता और भी गाने बूझें। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में बहुत सारे भावनात्मक शब्द हैं, जैसे कि मोहब्बत, प्यार और एहसास। इन शब्दों पर कई सुरीली गाने सुनवाए जा सकते हैं। गुड़िया लाकर देने की बात तो दिल को छू गई।

और एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो मेरी गुड़िया का जन्मदिवस है, आज वो 13 बरस की हो गई। और एक श्रोता ने लिखा है कि पापा जल्दी आ जाना, ये गाना इतना भावपूर्ण है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी टिप्पणियाँ लिख भी। गाने हैं सात समंदर पार से, एक था गुल और एक थी बुलबुल, तेरी जुल्फ के छाँव में दिल मेरा खोना चाहे, और छोड़कर तेरे प्यार का दामन, फिर आगे लिखा जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं ओ मेरे शाह खुबा। भई गज़ब, इतने सारे गाने तो आपने बूझ लिए, तो और भी श्रोता और भी गाने बूझें। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में बहुत सारे भावनात्मक शब्द हैं, जैसे कि मोहब्बत, प्यार और एहसास। इन शब्दों पर कई सुरीली गाने सुनवाए जा सकते हैं, गुड़िया लाकर देने की बात तो दिल को छू गई। और

लव इन टोक्यो फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और हमने हीरो हीरोइन का नाम आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने बताया जया मुखर्जी और आशा पारेख। कुछ श्रोताओं ने इसका गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बात झूले की चली है तो वो 13-14 साल की उम्र का झूले की मस्ती याद आती है। आज गांव में 2-3 पेड़ नीम के हैं, पहले तो हर घर के दरवाजे पर 2 ज़रूर होते थे। सावन आते ही बांस के डंडे से रस्सी बांधकर झूला लटकाते और नीचे एक पटरा बांधकर पींग मारते। फिर शाम को अक्सर गांव की लड़कियां झूलने आती हैं और हम सब मना करने पर भी तेज़ पींगे मारकर झूला ऊपर ले जाते थे और कजरी गाई जाती थी।

महबूब की मेहंदी, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं भाई? आप अपने अनुभव भी तो बताइए कि आपने अनुभव किया ऐसा कुछ कि आपने कभी ये गुनगुनाया हो गाना किसी और के लिए, या किसी ने आपके लिए ये गाना गुनगुनाया हो। हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और लीना चंदावरकर। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि धन्यवाद, आपने ये गाना सुनवाया, मेरी भी पसंद का गाना था। किसकी पसंद नहीं हो सकती भला। हमने संगीतकार का नाम भी आपसे पूछा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और गीतकार आनंद बख्शी। और आनंद बख्शी के गानों के लिए जब हमने पूछा कि कौन सा गाना पसंद है, तो ये गाना भी आपकी पसंद में शामिल था। और बहुत सारे गानों का जिक्र किया है हमारे श्रोताओं ने, और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आनंद बख्शी जैसा गीतकार कोई हो नहीं सकता, उनके गीतों में जो सहजता है। तमाम श्रोताओं की बात इन वाक्यों में मैं आप तक पहुंचा रही हूं। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि आनंद बख्शी साहब का एकदम सदाबहार, दिल को सुकून देने वाला ये गाना था। अब हमने जो झूले की बात पूछी थी, हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि कुछ पारिवारिक परंपरा होती थी, बच्चों के लिए मोटे कपड़ों का झूला छत की कड़ी से बांधकर उसमें छोटे बच्चों को सुलाते थे, लकड़ी का पालना वर्जित था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी दो बेटियां हैं, दोनों का विवाह हो चुका है, मैंने करीब 10 वर्ष तक उन्हें चॉकलेट नहीं खाने दिया, और इस बात को मेरी बड़ी बिटिया ने एक वाक्या बताया कि उसकी एक सहेली के दाँत पूरी तरह ख़राब हो गए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जो हमने पूछा था कि झूले पर कौन सा लोकगीत गुनगुनाते थे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मिर्ज़ापुर गईल हो, गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन के।

दिल बलमू, सोने की थाली में जवना परोसल, और दो तीन लाइन और लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की वो प्यारी यादें, पापा का प्यार, धीरे धीरे जवानी के दहलीज में बढ़ते कदम, हम सफ़र का साथ, खट्टे मीठे अनुभव, सब कुछ जीना सिखा दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक पिता के द्वारा लाई गई गुड़िया सचमुच हर बिटिया के लिए एक अमूल्य उपहार होता है। ये वात्सल्य रस की प्रतीकात्मक और कोमल अभिव्यक्ति है, जिसमें पिता का निश्चल स्नेह, हृदय से जुड़ी भावनाएं रहती है। यहाँ गुड़िया का भौतिक अस्तित्व ममता की मूरत की भावना को दर्शाता है। सचमुच एक गाने ने कैसे आप सबको द्रवीभूत कर दिया है, और कौन ऐसा शख्स है

है गुल और बुलबुल वाला गाना कब आएगा, ये आ गया, लेकिन आपको पहेली का जवाब देना है कि कौन है इसमें हीरो, कौन है हीरोइन। त्वरित जवाब दीजिए क्योंकि आपको पता होगा शायद हीरो हीरोइन का नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं आप।

क्या ये गाना सुनते हुए आपको कोई कहानी भी याद आती है? कहानी की शक्ल में ये गाना लगता है ना।

शशि कपूर और नंदा इस फिल्म में हीरो हीरोइन थे, ये हमने सवाल पूछा था, सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया, त्वरित जवाब आया और लंबी तादाद में अब तक जवाब आ रहा है। हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, टिप्पणियाँ ख़त्म नहीं हो रही।

हैं शशि कपूर और नंदा। एक श्रोता ने लिखा है, बहुत ही मासूमियत भरा सुपरस्टार हिट गीत है मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ में। और एक श्रोता ने लिखा है कि अद्भुत अभिनय था इस फिल्म में शशि कपूर का और नंदा का। कश्मीर की वादियों में फिल्माया गया ये गाना सुनने में खूबसूरत है, देखने में भी उतना ही खूबसूरत था। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि जहाँ तक मुझे याद है हमारे नाना जी ने कोई कहानी नहीं सुनाई, नानी और दादी ज़रूर सुनाती थी, देश के वीर जवानों की कहानी सुनाया करती थी। कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि अपने क्रांतिकारियों के बारे में कहानी सुनाना जैसे हम भूल ही गए हैं। बच्चों को ज़रूर सुनाइए ऐसी कहानियाँ। कहानियाँ सुनने से एक तो उनकी कल्पना शक्ति में विस्तार होता है, वरना तो वो मोबाइल में जो कहानियाँ देख लेते हैं उसमें उनकी सोचने की क्षमता कमज़ोर होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव की सच्ची घटना है, दो लोग गुल और बुलबुल की तरह प्यार करते थे, जब उन्हें घर वालों ने एक न होने दिया तो वो दोनों साथ में जान दे दिए। उफ, ये तो दर्दनाक बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि सच में ये गीत कहानी जैसा लगता है, जैसे कोई अपना पराया सा साथी कुछ बता रहा हो और हम उनसे हर बात बड़े ही भोलेपन से पूछ रहे हों। ये आनंद बख्शी की गीतकारी की कमाल है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम ऐप पर सुन रहे हैं गाने तो आधे मिनट देर से पहुंचते हैं, लेकिन हम जवाब तो रेत देते हैं। आ गया आपका जवाब भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मपत्नी के साथ अगर नोकझोंक ना हो तो जीवन में मज़ा ही ना आए। मैं तो जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ देता हूँ तो वो लेक्चर शुरू कर देती है और मन ही मन में हंसकर खुश होता रहता हूँ। भाई ये तो बड़ी शरारत है। अगर आपकी श्रीमती जी सुन रही हों तो एक तरह से अच्छी बात है, अगर उन्हें गुस्सा आता हो तो गुस्सा उनका ठंडा भी हो जाता होगा। एक श्रोता ने लिखा है कि गौरवशाली बचपन के गुड्डे गुड़िये की गाथा गान कर जवानी के दहलीज के दहकते दहन को दर्शाती है आज की ये इबारत। और एक श्रोता ने लिखा है कि उस ज़माने में गाने बनाने वालों ने बेहतरीन गाने बना दिए और गीतकार आनंद बख्शी के लिए इन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे और जब बहुत रोते थे तो हम दोनों पति पत्नी उसको चादर पर सुलाकर उसके दोनों कोने पकड़ लेते थे और उसे झूला झुलाकर सुलाया करते थे। भाई झूले की बात बहुत हो गई है और बचपन के तोहफ़ों की बात हो गई, पापा के घर आने की बात हो गई है, अब ज़रा ये बात हो जाए कि प्यार मोहब्बत जब आपने किसी से किया और आपकी पत्नी या आपके पति ने क्या बातें कही। ये गाना सुनिए और कभी आपने भी इस तरह की बात कही एक दूसरे से, क्योंकि ज़िंदगी में प्यार बहुत ज़रूरी है।

प्यार का इजहार बहुत जरूरी है, तो क्या आप अपनी पत्नी से या अपने पति से इजहार करते हैं प्यार का? उम्र के किसी भी पड़ाव में प्यार का इजहार किया जा सकता है। फिल्म का नाम जरा बताइएगा।

फिल्म थी वो कौन थी, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। ये हमारा सवाल था। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें थीं, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और मदन मोहन का संगीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मनोज कुमार और हेलन अभिनेत्री, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि कमाल है ये गाना, हमने भी सोचा था, मेरी पसंद का था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कहानियाँ सुनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, नाना नानी दादा दादी तो इस तरह दुनिया में नहीं रहे, मगर हाँ उनकी कहानियाँ ज़रूर याद आती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 38 साल हो गए ये कहते और दोहराते हुए, अब तो बच्चे हंसते हैं, कहते हैं पापा डिजिटल युग में नया गीत अपनाइए। उनको समझाइए कि हम अपने युग का गीत गा रहे हैं, आप अपने युग का गीत गुनगुनाइए, लेकिन गुनगुनाइए ज़रूर। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी मेरे पास ही बैठी रेडियो पर विविध भारती सुन रही है और आपकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही हैं। क्या बात है भाई, हमारा कहना और बोलना सफल हो जाता है जब हमारी बात से कोई मुस्कुराए और हमारी बजाए गए गानों से किसी बात से उदास हो या प्रेरणा ले, तो हमारा प्रोग्राम करना सफल हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत ऐसी होनी चाहिए कि पिरोए गए शब्दों का आकलन सहजता से हो जाए, उस पर लिखे गए गाने खूबसूरत हैं, आज के सभी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमारा ये दूसरा गाना पसंद का, किसी ने लिखा है चौथा गाना, किसी ने लिखा है तीसरा गाना। क्या बात है भाई, हमें भी अच्छा लग रहा है जानकर कि हमारी और आपकी पसंद मिल रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो सुरीला सफ़र सुरीला होगा, शुद्ध और साफ उच्चारण आवाज़ में सुनने को मिलेगी आपकी बातें। क्या बात है भाई, आगे लिखा है कि गुड़िया बुलबुल गुल दुनिया घटा वगैरह शब्द पर गाने होंगे और बहुत सारे इमोजी इन्होंने लगाए हैं, फूल पत्ती दिल और हाथ। तो आप बताइए कि क्या आप जब अपनी बात कहते हैं आज के ज़माने में अपनों से, तो क्या इमोजी से काम चलाते हैं या अपने दिल की बात शब्दों से कहते हैं। अब सुनिए ये गाना, ये गाना आ रहा है कुछ श्रोताओं के अनुरोध पर, बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का भी जिक्र किया है, हमारी आज की इबारत में ये शब्द है। तो सुनिए ये गाना और बताइए ज़रा गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म रतन, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है, जोराबाई अंबाले वाली।

रतन फिल्म का गाना जोहराबाई अंबाले वाले की आवाज़ में, रचना थी डी एन मधु की, संगीतकार नौशादा। और ये हमारा सवाल था, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है सही जवाब, कुछ श्रोताओं ने गलत भी लिखा है, लेकिन इतने जवाब नहीं आए जितने कि अन्य गानों के लिए आए थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो प्यार के इजहार का सबका अलग सा अंदाज है, पर होता बड़ा ही प्यारा है, रूठना मनाना, कभी कभी बात न करना। हमारे साथी तो रूठ कर खाना नहीं खाते थे, बड़ा ही मुश्किल होता था उन्हें मनाना। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह क्या पूछ लिया, जिंदगी अंतिम पड़ाव में पति जी से बड़ा प्यार और इजहार सुनने को मिला, लगता है सारी कमी पूरी हो गई। जब प्यार से कहते हैं तुम अपना ध्यान रखा करो, तुमने सोचा तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, अभी मैं 74 वर्ष हूँ। क्या बात है भाई, आपने तो हमारे जज्बात को छू लिया। और अच्छा लगा कि उम्र के इस पड़ाव में एक दूसरे से आप इजहार करते हैं और ये बात आपने यहाँ पर लिखी। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज बहुत सारे गाने हमारे और आपके मिले, हमें भी अच्छा लगा। एक श्रोता ने लिखा है कि शब्दों के साथ साथ थोड़ी सी इमोजी भी हम भेज दिया करते हैं, बस अपने जज्बात का इजहार ज़रूरी है। अब ज़रा घड़ी की ओर देखिए, घड़ी की सुइयाँ तो आगे निकल गई हैं। चलिए अब कार्यक्रम को यहीं पर समेट लेते हैं। कार्यक्रम का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओ नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी फूल पर। फूल प्रकृति की सबसे सुंदर और मनमोहक रचनाओं में से एक है। रंग बिरंगे फूल धरती की सुंदरता को बढ़ाते हैं और अपनी सुगंधित स्पर्श से वातावरण को आनंदमय

बड़ों का जीवन भले ही छोटा होता है, लेकिन उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। वे हमें सिखाते हैं कि कम समय में भी अपने गुणों और सुंदरता से संसार को खुशियाँ दी जा सकती है। फूल बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनी खुशबू और सुंदरता प्रदान करते हैं।

हमेशा ताज़ा रहती है। जब कोई हमें प्रेम, स्नेह या सम्मान के रूप में फूल देता है तो वह केवल फूल नहीं बल्कि अपने मन का एक कोमल भाव हमारे पास छोड़ जाता है। समय के साथ फूल की खुशबू भले ही कम हो जाए, उसका रंग फीका पड़ जाए, लेकिन उससे जुड़ी यादें कभी पुरानी नहीं होती। कभी किसी पहली मुलाकात की निशानी, कभी किसी खास अवसर की स्मृति, तो कभी किसी अपने के स्नेह का प्रतीक बनकर सूखे हुए फूल जीवन के अनमोल पलों को संभाल कर रखते हैं और खत में भी भेज दिए जाते हैं।

0: सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
0: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने

0: निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें

लोफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आज के सदाबहार नगमे प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी को। सुनिए अगला गीत उन्हीं का लिखा हुआ, किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

0: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

0: कटी पतंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमक हराम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं चुपके चुपके फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM एंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब थोड़ी देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और उसके तुरंत बाद आप करेंगे सामयिक चर्चा। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार कौशल विकास व रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में तकनीकी शिक्षा विभाग के तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य छात्रों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और रोजगारदाताओं को एकीकृत प्रणाली के माध्यम से जोड़कर प्रदेश में प्लेसमेंट और भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल छात्रों को रोजगार के अवसरों और उद्योगों की आवश्यकताओं तक सीधी पहुंच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाएगी। साथ ही नियोक्ता भी इस पोर्टल पर पंजीकरण व रिक्त पदों की जानकारी साझा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन को मजबूत बनाने और युवाओं के लिए सार्थक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग कर रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के सतत प्रयासों से प्रदेश के ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटरों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों की मांगों का मामला लगातार केंद्र सरकार के समक्ष उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों की परिचालन अवधि को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पर्यटन प्रधान राज्य में हजारों परिवार टैक्सी संचालन कर अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियमों में संशोधन किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी करने के साथ साथ विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया भी अधिसूचित कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक ने कर्जदारों को बड़ी राहत देते हुए अगले 6 महीने के लिए वन टाइम सेटलमेंट की 3 योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने आज शिमला में बताया कि किसानों को राहत देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि ऋण राहत योजना में 50% ब्याज माफी का निर्णय लिया गया है और जिन किसानों ने कृषि क्षेत्र में 3 लाख रुपए तक का ऋण लिया है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। संजय सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के 6,319 किसानों को इस

0: का लाभ मिलेगा और ये योजना आज से अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 2016 तक के पुराने एनपीए खातों के लिए ओटीएस के तहत 25% ब्याज छूट दी जाएगी।
1: स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। एक मुख्यतः स्कीम जो है वो कृषकों के लिए है जिनका 3 लाख तक का लोन है, उसमें 50% जो इंटरेस्ट पार्ट है हम उसको माफ कर रहे हैं, जिसका वहन जो है हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी आने वाले समय में। इसके अलावा दो और स्कीमें हैं जो हम लॉन्च कर रहे हैं, जो की 2016 तक के जो लोन केसेज है जिसकी जो प्रोविजनिंग वो हम कर चुके हैं। नबार्ड हमें रेगुलेट करता है, जो नबार्ड हमें पैसा देता है उसकी जो प्रोविजनिंग है उसकी पेमेंट 2016 तक जो है बैंक नबार्ड को कर चुका है, उसमें भी हम 25% तक का फायदा हम दे रहे हैं।
0: प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: हमीरपुर जिला की भोरंज तहसील के निवासी समर्थ अत्री का चयन देहरादून में 17 से 20 अगस्त तक आयोजित होने वाली एशियन शॉर्ट ट्रैक आइस स्केटिंग ट्रॉफी के लिए हुआ है। वे शिमला के एक निजी स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र हैं और पिछले लगभग 7 वर्षों से शिमला स्थित आइस स्केटिंग रिंक में नियमित अभ्यास कर रहे हैं। हाल ही में उनका चयन 21वीं राष्ट्रीय शॉर्ट ट्रैक आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ था। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर अब समर्थ अत्री का चयन एशियन शॉर्ट ट्रैक आइस स्केटिंग ट्रॉफी 2026 के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समर्थ अत्री को इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद लीजिए पेश है शिमला जिला की चिट्ठी। लेखक हैं योगराज शर्मा और वाचक स्वर राकेश शर्मा का है।
0: जुलाई महीने की शुरुआत शिमला में मॉनसून की एंट्री से हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस बार मॉनसून तय समय से करीब 5 दिन की देरी से पहुंचा। इसके चलते मॉनसून सीजन में सामान्य से करीब 10% या इससे भी कम बारिश होने की संभावना है, जो कि प्रदेश के लिहाज से काफी राहत की बात है। शिमला सहित पूरे प्रदेश में ही इस बार बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसान व बागवान बुरी तरह परेशान रहे। सेब सहित स्टोन फ्रूट की पैदावार कम होने से बागवानों की कमर टूट गई है। शिमला जिला के बागवानों का कहना है कि मौसम की बेरुखी के चलते फसल बेहद कम हुई है, दवाइयां और उपकरण महंगे हो गए हैं, खर्चा ज्यादा और आय ना के बराबर रह गई है। इस बार सेब का उत्पादन लगभग 7 लाख मीट्रिक टन से घटकर करीब 4,36,000 मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। कांग्रेस ने शिमला में संगठन विस्तार कार्यक्रम के तहत 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले संगठन विस्तार अभियान की शुरुआत की है। अभियान के पहले चरण में भाजपा, आप और अन्य दलों से नाराज कार्यकर्ताओं का को कांग्रेस में शामिल करवाया जाएगा। दूसरे चरण में मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च होगी। कांग्रेस का दावा है कि पहली महीने में 8 से 10 हजार भाजपा कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जता चुके हैं। इस बीच शिमला कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की पहली आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने सहित कांग्रेस के आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर मंथन किया गया। राम मंदिर, चंदा चोरी, नीट पेपर लीक का आगामी 2027 चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रूपरेखा तैयार की। वहीं भाजपा ने शिमला सहित प्रदेश कार्यालय दीप कमल में कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की। इस बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। भाजपा ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी जन आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। कोर ग्रुप की बैठक में सरकार के 3.5 वर्षों के कार्यकाल की विस्तृत चार्जशीट तैयार कर जनता के बीच ले जाने का निर्णय लिया गया है। शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए से अधिक की अर्जित अवैध चल और अचल संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद की है। इनमें कोटखाई और बालूगंज थाना में दर्ज 2 बड़े मामले शामिल है। शिमला पुलिस का कहना है कि अब सिर्फ तस्करों की गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। इस वर्ष शिमला पुलिस ने अब तक 4 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है, जो प्रदेश में सबसे अधिक है। शिमला जिला में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की दिशा में मॉडल विलेज स्थापित किए जाएंगे। जिला के हर खंड में एक गांव ऐसे चिन्हित किया जाएगा जिसके तहत टूटू खंड में 2 मॉडल विलेज स्थापित किए जाएंगे। इन मॉडल विलेज में कृषि विभाग, उद्यान, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं को संयुक्त लाभ किसानों को पहुँचाने के लिए किया जाएगा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी संशोधित भारत नेट परियोजना के तहत शिमला जिला के सभी 12 विकास खंडों की 412 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई। परियोजना के अंतर्गत इंटरनेट सेवाएं अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध रूप से उपलब्ध होंगी। इस परियोजना के तहत शिमला जिला में कुल 3691 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का प्रस्ताव है। बीते दिनों प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर राजधानी शिमला में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री

0: नहीं करवाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं प्रदेश में युवा कांग्रेस ने शिमला में छात्रों की गूंज और युवा कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शिक्षा प्रणाली और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर युवाओं से संवाद किया गया। इसके साथ ही शिमला जिला की चिट्ठी संपन्न हुई। नमस्कार।
1: अभी आप शिमला जिला की चिट्ठी सुन रहे थे। लेखक थे योगराज शर्मा और वाचक स्वर राकेश शर्मा का था। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी प्रसारित किया जा रहा था। हम आकाश
2: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर

0: घूमना और पेड़ों पर झूलना, आदि बाग से फल तोड़ना चुराना, ये सब बहुत सारी यादें हैं जो एकदम से जुड़ जाती हैं उन।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बचपन का वो जो समय था हमारे लिए इतना कीमती था कि आज भी हम उसे भुला नहीं सकते हैं। न जाने कितनी यादें थीं, लालटेन में पढ़ते थे, कुछ बच्चे शाम होते ही खुले आसमान में चांद तानों को निहारते हुए सोते थे, और सब आज ही कहकर याद करते हैं कि क्या दिन थे वो भी। हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था और ऐसे हमारे ज़माने में वैसा होता था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन केवल वक्त के बदलते दौर में मंजरी हम उन यादों के साथ तो नहीं जीवन गुजार सकते, है ना। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, परिवेश परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लोगों की सोच बदल गई है, अब जीवन शैली समृद्धि की ओर बढ़ चली है। आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई सुविधाएं आ गई हैं, रसोई में सिलबट्टे की जगह मिक्सी ने ले ली है, चूल्हे की जगह गैस ने ले ली है, अंगीठी की जगह भी गैस ने ले ली है, और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आ गए हैं हमारे घरों में। कभी हम पैदल चला करते थे, आज साइकिल तो स्कूटर कार से जाने लग गए हैं। घर में टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, सभी कुछ आ गया है और सब ऑनलाइन भी हो गया है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं ना मंदाकिनी जी कि यादों को सजो कर रखें, क्योंकि भविष्य के लिए हमें पहले के दिनों के संग और आज के दिनों में तालमेल बिठाना ही पड़ता है। और वैसे ही हम धीरे धीरे आज के सांचे में सुख सुविधाओं के आदि हो गए, जैसे कि इसके बिना रह ही नहीं सकते, तो पुरानी यादों को दोहराते भी हैं। और यादें जहाँ हमें भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाती हैं और बदलाव हमें आगे बढ़ना सिखाता है, इसलिए पुरानी यादों को भूलिए नहीं और ना ही नए समय से दूरी बनाइए। यानी जीवन का जो सौंदर्य इसी में है कि हम बीते कल से सीखें और आज की पूरी शिद्दत से जिएं और आने वाले कल का पूरे आत्मविश्वास से स्वागत करें, है ना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और जिंदगी तो पल पल बदलती है मंजरी, और इसी प्रकार हमारी यादें भी धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, पुराने लम्हों को याद करते हैं किसी वजह से, तो हमें वो सब याद आ जाता है जिसका जिक्र अभी तुम कर रही हो।
0: और हमारे साथी भी देखिए एक संदेश में लिखा है उन्होंने कि बीते पलों की यादें जीवन का सबसे खूबसूरत और अमूल्य खजाना होती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, इस जिंदगी में जब हम कुछ पल ठहर कर स्मृतियों की खिड़की खोलते हैं तो एक असीम शांति और सुकून का एहसास होता है। यादों की मिठास मन को गहरा सुकून देती है जो हमें मुश्किल वक्त में संबल प्रदान करती है। वहीं जीवन का अटल नियम बदलाव हमें निरंतर आगे बढ़ने और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रेरणा देता है। पुरानी यादें हमारी जड़ों से भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करती हैं। इन पुरानी यादों को एक मजबूत पूंजी के रूप में सजोएं, लेकिन वर्तमान के बदलावों को खुले मन से स्वीकारें। बहुत अच्छी बात
1: है। वो ना जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है और उसे हमें स्वीकार करना ही होगा, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि यादों में सुकून इसलिए है क्योंकि वहां सब कुछ अपने हिसाब से हमें सजावा लगता है। जो लोग चले गए, जो लम्हे गुजर गए, जो गलतियां हमने की थी, वो सब यादों में आकर धुंधली और खूबसूरत तो हो जाती हैं। वहाँ कोई शोर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं होता, बस एक ठहराव है जो दिल को थाम लेता है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी सुकून में उलझे रहें तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि बदलाव को समझना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि ज़िंदगी स्थिर नहीं है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हमें स्वयं को भी उनके साथ बदलना पड़ता है। और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं कि जो ये बदलाव है इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी जिंदगी में संतुलन बना रहता है।
0: बिल्कुल मंदाकिनी जी, और देखिए यादों की बातें करते करते हमारे पास अभी अंतराल का भी समय होने वाला है, तो अंतराल के बाद फिर हम सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबकी यादें साझा करेंगे, तो लेते हैं एक अंतराल।
1: ठीक है।

0: तो हम लोग बात कर रहे थे यादों के बारे में, तो हमारे साथी क्या लिखते हैं, लिखती है कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफ़ेद सलेटी से वर्णमाला, बारह खड़ी और अंक लिपि लिखा करते थे, और अब आज उस समय की यादों सजोते हुए स्मार्टफोन और को दिल में बसाकर मैसेज भी लिखते हैं, क्योंकि पुरानी यादें हमें सुकून, शांति और खुशी देती हैं, वर्तमान की भागदौड़ में ऊर्जा देती हैं, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें समय के साथ हो रहे बदलाव को भी पल पल समझना और अपनाना होगा, नहीं तो जीवन में हम पीछे रह जाएंगे। बहुत सारी यादें इन्होंने दी अपने संदेश में।
1: और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादें जीवन की सबसे अनमोल धरोहर होती हैं, कठिन समय में वही यादें हमें सुकून देती हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं, लेकिन हमेशा यादों में ही खोए रहना ठीक नहीं होता, यादों को दिल में संजो कर रखें लेकिन वर्तमान को पूरे मन से जिएं और आने वाले बदलावों का खुले दिल से स्वागत करें, क्योंकि सुंदर यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और सकारात्मक बदलाव हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, यही जीवन का संतुलन भी है।
0: और एक साथी लिखती हैं कि यादों से सुकून कहाँ पर, अब तो हर दर्द की सीमा पार है, जो यादों में थे वो ही मुस्कुराते मिलते हैं, सामने हैं जो बस वो तो एक झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं, यादों का सुकून आज भी

0: की सीमा पार है, जो यादों में थे वो मुस्कुराते मिलते हैं, सामने हैं। अच्छा ये भी आपने बता दिया है कि हमारे श्रोता कहते हैं कि जो सामने लोग मिल रहे हैं वो हमें झूठी मुस्कान के साथ मिलते हैं, ऐसा नहीं है। हम सखियां तो आपसे सच्ची मुस्कान के साथ मिलती है हमेशा
1: जी,
0: है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादों में सुकून तो सच में बहुत मिलता है, कितनी सारी पुरानी बातें हैं जिनको हम हटाना नहीं चाहते हैं, और बच्चे कहते हैं अभी हम हटाइए दूसरा लाइए, और ये एक माया है जिससे लगाव मन में रहता है, उसे हटाना नहीं चाहता, फिर उसको जब छोड़ते हैं नई चीज़ आती है तो बहुत अच्छा भी लगता है।
1: तो चलिए इन्हीं यादों के साथ एक सुन लेते हैं गीत।
0: बिल्कुल।

0: और सफल व्यक्तित्व की महिलाएं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी, पीएचडी शिक्षाविद, लेखिका, सामाजिक उद्यमी और कॉरपोरेट प्रशिक्षक होने के अलावा आप जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की संस्थापक निदेशक और जेएनयू में प्रबंधन संकाय की डीन और मुंबई स्थित AIMSR आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च की निदेशक भी रह चुकी हैं।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की हम बात कर रहे हैं। इस संस्थान को देश के शीर्ष 10 उभरते 20 स्कूलों में स्थान मिला है और इसके बाद वे प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में नेतृत्व विभाग में भी प्रमुख बनी हैं। और डॉक्टर स्वाति की बात जब चल रही है तो उन्होंने कई शैक्षणिक और सामाजिक पहलों की संस्थापक वो रही हैं। PD प्राइवेट लिमिटेड, इनकी स्थापना उन्होंने स्वाश PD प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना उन्होंने 1997 में की थी और ये संस्था युवाओं को महिलाओं को पेशेवरों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं।
0: इसके अलावा लाइफ लेमोनेट के आप संस्थापक भी हैं और ये उनके प्रशिक्षण एवं कोचिंग की पहल है और वे नेतृत्व, पेरेंटिंग, व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल और पर कार्यशालाएं एवं सेमिनार आयोजित करती हैं। उनके उल्टा स्कूल, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के सक्रिय, सार्थक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए शुरू की गई उनकी एक सामाजिक पहल है। वर्तमान में भी वे एक डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने 10,000 से अधिक कॉरपोरेट अधिकारियों और युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर स्वाति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जिसमें शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और जीवन के क्षेत्र में सक्रिय योगदान, देश भर में छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों और कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए प्रेरक व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
0: जी, महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, संवाद कौशल और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देना, लेखन के माध्यम से भी जीवन मूल्यों, प्रेरणा और सफलता के सूत्र साझा करती हैं।
1: बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा की बेस्ट सेलर पुस्तक डोंट रेज योर चिल्ड्रन, रेज योर सेल्फ और साल 2020 में इन्होंने अपनी स्व सहायता पुस्तक कम ऑन गेट सेट गो लिखी और कविता से गद्य में जो है कदम भी रखा और इस पुस्तक का 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है और इसे भारत सरकार द्वारा 2002 में राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
0: इसके साथ ही इन्हें वीर दुर्गादास पुरस्कार 2009 में, सूर्यदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 में, भारत गौरव पुरस्कार 2016 में, JITO बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 में, टाइम्स पावर वुमेन पुरस्कार 2019 में और ग्रोथ बिट्स वुमेन आइकान पुरस्कार 2021 में मिला। आपके पति शैलेश लोढ़ा जो एक कवि और अभिनेता, लेखक भी हैं। और जी, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का मानना है कि सफलता केवल अच्छी शिक्षा से नहीं बल्कि सही सोच, अनुशासन, निरंतर सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलती है। वे युवाओं को अपने सपने पर विश्वास रखने, चुनौतियों से सीखने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। तो ऐसी सफल महिला से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और हम लोग बढ़ते हैं एक गीत की ओर।

0: तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं उफ घरों में सामानों की उठाई धराई के बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब पहले का समय होता था मंजरी, आज भी लगभग यही होता है, लेकिन कुछ अंदाज तौर तरीके बदल गए हैं। उठा धराई के काम का कहीं अंत तो होता नहीं। सुबह होते ही घर की महिलाएं या घर के लोग जो हैं घर के सामानों की उठा धराई में ही लगे रहते हैं। उनके दो हाथ 10 के बराबर हो जाते हैं। जिधर से निकले वहीं से सामान को झाड़ना पोछना सही से रखना शुरू कर देती हैं, खासतौर से महिलाएं। जो सामान जहां से उठाया वहीं रख दिया। परिवार में सबको समझाते हुए वो थकती नहीं कि भी सभी चीजें सही समय पर रखें, मगर भला किसी के कान में कोई असर नहीं पड़ता, यानी जू तक नहीं रेंगती।
0: और एक समय था जब घर के छोटे बड़े दोनों तरह के घर हुआ करते थे मंदाकिनी जी, लेकिन सलीका बड़ा होता था। घरों में हर चीज अपनी जगह तय होती थी। दादी अम्मा कहती थी कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं रख दो। अब यही छोटी छोटी सी आदत घरों को व्यवस्थित भी रखती थी और समय भी बचाती थी। पहले घरों में रसोई में तरह तरह के डिब्बे हुआ करते थे, आपको याद होगा है ना, और उनमें रंग से हम पहचान जाते थे कि अरहर की दाल के जो है वो है डब्बा है वो उसका ढक्कन जो है वो हरे रंग का है। चावल के डिब्बे का नाम बिगड़ चुका है, घिस चुका है, और चीनी के डिब्बे का ढक्कन चूहा कुतर गया है, लेकिन डिब्बा नहीं बदला क्योंकि चींटी जाने की जगह नहीं उसमें हो पाई थी, है ना। तो जब माँ या दादी की रसोई कितनी भी उनकी छोटी सी दुनिया जैसी होती थी, आँख बंद करके भी वो बता देती थी कि चाय की पत्ती वाला डिब्बा दाईं तरफ तो दूसरे खाने में रखा है और जीरा उसके ठीक पीछे। सच पूछिए तो मंदाकिनी जी, उस जमाने में डिब्बे भी शायद अपनी जगह छोड़ने से डरा करते थे, है ना। और कोई बहू भला अम्मा की धराई को इधर उधर कर भी देना तो डांट पड़ने के आसार बन जाते थे, बल्कि क्या है कि पढ़ ही जाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे उनका हम सभी कहना भी मानते थे, उनका सम्मान भी करते थे। जैसा कि आज बच्चे भी चिल्लाकर

0: माता पिता को डांट देते हैं, यूं कहें कि
1: हम्म,
0: टोक देते हैं कि क्या मम्मी आप रोज शोर करती हैं या क्या पापा, है ना। तो पहले अनुशासन होता था और सबसे मजा आता था जब बक्सा जब हम खोलते थे, अम्मा का संदूक खुलता था और कोठरी में अम्मा अपने उस बड़े से बक्से को संवारती थी, बच्चे फुदकते कंधे पर लटक जाते थे या पास में बैठकर उनके सामानों को निहारा करते थे और देखते थे कि दादी अम्मा का क्या खजाना है। ऊपर करीने से जो करीने से तह की हुई साड़ियाँ होती थी, उनके बीच में नीम की सूखी पत्तियाँ जो आज तो कहीं दिखाई भी नहीं
1: जी
0: देती हैं, और कहीं कपूर की हल्की सी खुशबू होती थी और अम्मा की पल्लू में डिबिया बटुआ छुपा लेती जिसमें उन्होंने एक एक पाई जोड़ी होती थी। तो इस तरह का नज़ारा हमें याद आता है आज भी।
1: बिल्कुल। और उस बक्से में ना जाने कितनी सारी चीज़ें निकलती थी, जैसे चांदी के सिक्के, चांदी की सोने की सुपारी और चांदी की तश्तरी, कोने मुड़े हुए टूटे, और दादा का खत भी उसमें होता था मंदाकिनी जी, और पोटली में पुरानी आरती संग्रह, दुपट्टे में लिपटा श्वेत श्याम फोटो का एल्बम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का एल्बम, और उसकी यादों में खो जाती थी, और बच्चे पूछने लग जाते थे ये कौन वो कौन, यानी ये भी उठाई धराई का एक हिस्सा होता था। जब संदूक खुलता था तो उसमें यादों में ही आदमी खोया रहता था, व्यक्ति खोया रहता था। और अब अम्मा जो थी अपनी साड़ी के पल्लू में संदूक की चाबी बांध कर रखती थी, कभी कमर में खोस लेती, और कभी अगर कोई पूछ भी बैठे कि अम्मा चाबी कहाँ है तो वो मुस्कुरा कर यही कहती भाई तुम्हें उससे क्या काम।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा।
1: ये सब बातें भी उस समय बेहद याद आती हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही नज़ारा होता था जो आप अभी पेश कर रही हैं हमारी सखे और सखियों को। सूती बनारसी रेशमी साड़ी तो कहीं चमकी ले गोटे का गोला, जिसकी जो है जरी पीली पड़ चुकी होती थी, शादी के लहंगे से निकला हुआ, वो भी संजो कर रखा होता था। छोटी पोटली, 2-3 5 के सिक्के, बिछिया की कई जोड़ियाँ, घिसी हुई टूटी पायल जो शायद किसी को बनवाने को तो नहीं बोल पाई, एक संकोच मन में रहा होगा अम्मा के, और या अब नई मिल गई होगी, नई पहन ली होगी कि कभी इसको ठीक करवा के फिर से पहन लूंगी। और
1: बिल्कुल
0: कंगन मोतियों की माले मालाएं जो थी, कजरोटा, शीशा कंघी, दुर्जनिया तंबाकू का डिब्बा और उसमें धरे सूती धागा, और वो सुई बटन
1: जी
0: हुक, न जाने क्या क्या, मतलब कपड़ों को धूप दिखाई जाती थी, छत पर जाकर
1: जी
0: कपड़े सुखाए जाते थे, बक्सा झाड़ा जाता था, उन्हें फिर से धरा जाता था और इसी में पूरा समय गुजर जाता था।
1: बिल्कुल, और कितनी सारी यादें पास चली आती
0: हाँ
1: थी।
0: बिल्कुल
1: और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों को धोना, सुखाना, धूप दिखाना, रजाई गद्दे धूप में डालना, पलटना, फिर वापस धरना, घर भर के कपड़ों की सिलाई ठीक करना, अलमारी बक्से जमाना, यानी गर्मी आने से पहले ही वापस इन ऊनी कपड़ों को समेटना, और पापड़ चिप्स कचरी यानी क्या क्या बढ़िया
0: बनाना।
1: है इन सबको बनाना, और बारिश से पहले पीपे भर कर सब रख लिया जाता था, और दिन महीने साल साल उसकी उठा धराई के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और सब काम एक अभियान जैसे होते थे, और जैसे लगता था घर आंगन में एकदम मेला लग गया
0: और
1: है।
0: किसी के कोई शिकन या शिकायत नहीं होती थी चेहरे पर कि हम थक गए हैं या सारे दिन हम काम ही करते रहते हैं, ऐसा
1: बिल्कुल
0: कोई भी नहीं, सब मिलकर घर को संवारते थे, बड़ा प्यारा नज़ारा होता था। मुझे याद है मेरी मौसी कहा करती थी कि हम गेहूं में तेल लगाकर उसको सुखाए करते थे, फिर उसको डब्बे में भरा करते थे, तो हम पूछते आप थकती नहीं है, कहती काहे की थकान, सब मिलकर काम
1: सही
0: करते
1: बात
0: हैं।
1: सही
0: तो
1: बात
0: घर के सभी सदस्य जानते थे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कहाँ रखी है और कहाँ मिलेगी, और इसीलिए काम भी जल्दी होता था और बिना कारण जो भाग दौड़ हुआ करती है आज के जमाने में वो नहीं होती थी। आले ताके जिनमें लालटेन, कुप्पी, मोमबत्ती, माचिस रखी रहती थी और लाइट जाने पर हाथ बढ़ाकर जला लिया जाता था उसे, हाथ के पंखे होते थे और खटिया, पलंग, तख्त के सिराने पर भी वो रखे होते थे।
1: आराम से
0: हाँ
1: रखे, मिल जाते थे आराम से, है
0: हाँ
1: ना
0: जैसे ही लाइट गई हमारा हाथ जाता था या
1: जी।
0: दादी अम्मा का, नानी का, और उठाकर पंखा जलना शुरू हो जाता
1: बिल्कुल,
0: था।
1: तो ये भी एक सही एक सामान को रखने का तरीका था कि एक जगह रखते थे, और घर का बड़ा हो या छोटा, सामान कम हो या ज्यादा, हर चीज का अपना एक ठिकाना होता था। शाम को पूरा परिवार मिलकर घर समेटता था, चारपाई अपनी जगह, अखबार तय करके रख दिया जाता था, सिलाई का डिब्बा बंद होकर अलमारी में चला जाता था। सुबह घर ऐसा लगता था जैसे रात भर किसी ने प्यार से उसकी छोटी सी गूंथ दी हो,
0: बिल्कुल
1: एकदम
0: सही कह रही हो मंजरी।
1: जी
0: लेकिन अब आते हैं हम आज के दौर पर जहां
1: जी
0: बिल्कुल सब कुछ अलग हो गया है, कभी चश्मा यहाँ, मोबाइल वहां, चाबी किसी मेज पर, रिमोट सोफे के नीचे, मतलब आधा समय कहाँ है सामान, कहाँ है मेरे मोजे, कहाँ है मेरा
1: जी
0: मोबाइल, इसी धुन में जो है पूरे घर में हंगामा बना रहता है आज के समय में,
1: बिल्कुल
0: और सामान ढूंढने में लगभग पूरा समय, ऑफिस को लेट हो जाते हैं लोग बाग, लगता है जैसे घर का हर सामान रोज अपनी जगह बदलने की कसम खाकर बैठ गया हो।
1: बिल्कुल। और बच्चों के कमरे तो बिल्कुल अलग ही होते हैं कि उनमें चाहे जैसा भी सामान रखा हो तो बच्चे चाहते भी नहीं कि आप उनको समेटिए, वो कहते हैं कि भाई आप रहने दो माँ। और अब तो माँओं का भी धैर्य छूट गया है कि भाई उन्हें लगता है कि क्या करना है इनका समेट के, तो फिर फैलाएंगे, क्योंकि वो भी जॉब कर रही है, थकी आई है तो खाने में भी समय देना है उन्हें। तो जो उनके लिए अब क्या हो गया, छुट्टी वाला ही दिन उठाई धराई का हो गया है।
0: बिल्कुल, नौकरी पेशा जो महिलाएं हैं ना, उन्हें संडे बहुत प्यारा होता है, पता है मंजरी, जब उन्हें कोई रविवार को बाहर बुलाता है तो वो जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि पूरा दिन वो संडे का इसी काम में बिताती है। तो आज सुविधाएं बढ़ गई है, सामान भी इतना बढ़ गया है घर में, दुनिया भर की अलमारियां, दुनिया भर की हमने सामान उठा के घर में भर लिए, और कहीं भी हम इधर उधर रख देते हैं तो फिर ये आवाजें लगाने का सिलसिला है, कभी खत्म नहीं होता, भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है।
1: यानी कहने का मतलब ये कि जो उठाई धराई का जो काम था वो उस समय महिलाएं पूरे दिन भर इसी में लगी रहती थी, और कोई शिकवा शिकायत नहीं, चेहरे पर शिकन तक नहीं होती थी। तो आज के समय में है कि भाई अगर कोई आपका कर रहा है काम तो आप मिलकर हाथ बटाइए, और उठाई धराई थोड़ी कम हो गई लेकिन आप अपना सहयोग दीजिए।
0: तो मंजरी, इसका अंत में जो इन सभी बातों का जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि घर की शांति जो है केवल सुंदर सजावट से नहीं आती बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। जब हर वस्तु अपने स्थान पर हो तो मन भी शांत रहता है और समय भी बचता है, और घर स्वर्ग जैसा लगता है।
1: बिल्कुल, और हम लोग सुनते हैं गीत।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंजरी, अभी हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखे हैं कि भाई हल्की फुल्की बातें घर में सामान की जूठा पटक है, बहुत ज़्यादा रोचक है ये विषय। जब हम घर में किसी सामान को एक नई जगह से सेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, या कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं, इस सामान को इस जगह पर रखना है, इस जगह पर नहीं रखना। इसमें परिवार वालों के अलग अलग मत हो जाते हैं, सबकी अलग अलग मर्जी होती है, किसी को वो सामान यहाँ जचता है, किसी को वहाँ जचता है, मुझे यहाँ मज़ा आ रहा है, और ये बहुत छोटा छोटा झगड़ा होने लगता है, लेकिन मज़ेदार होता है। और लास्ट में सामान जहाँ पर भी रखा जाता है वो देखना पड़ता है कि अक्सर गृहिणियों की पसंद ही होती है कि लास्ट में घर की जो महिला है, हाँ, मुख्य महिला, वो क्या चाहती है, वहीं पर सामान रखा जाता है।
1: और एक साथी लिखते हैं, जहाँ घर जहाँ लोग रहते हैं वहाँ रखी चीज़ों की जगह बदलती रहती है, कभी सफाई के लिए, कभी सजावट के लिए, और कभी बदलाव के लिए। इससे घर की सफाई होती, बेकार वस्तुओं की पहचान होती है और घर अधिक व्यवस्थित बना रहता है। साथ ही इस बहाने से कई पुरानी खोई चीज़ें मिल जाती जो भूली बिसरी यादों को फिर से ताज़ा कर देती हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखती है कि घर के सामान की उठा पटक कई बार लगता है, अच्छा ये चीज़ यहाँ नहीं वहाँ रख कर देखते हैं, अच्छा ये सामान यहाँ नहीं वहाँ रख कर देखते हैं, और ऐसा करते करते फिर चीज़ की सही जगह कौन सी है ये भी भूल जाते हैं।
1: और एक लिखते हैं कि उफ, घर में सामानों की उठा पटक और घर में गूंजती आवाज़ें, जरा ये अलमारी इधर सरका दो, वो डिब्बा ऊपर रख दो, अरे ये सामान यहाँ किसने रखा, बस यहीं से शुरू हो जाती घर में सामानों की उठापटक। इसी बीच अचानक कोई पुरानी तस्वीर, खोया ज़रूरी सामान या किसी अपने का लिखा हुआ पत्र मिल जाए तो चेहरे की थकान पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन इस उठापटक में कभी चाबी नहीं मिलती, चश्मा गायब हो जाता है या फिर अन्य कोई ज़रूरत की चीज़, फिर जवाब मिलता है अभी तो यहीं रखा था। ऐसे में झुंझलाहट और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन उठापटक करते समय धैर्य भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और खत है हमारे संदेश के रूप में कि सामान की उठा पटक का मौसम आने ही वाला है, ये कहीं आ ही गया है, यानी त्योहार का मौसम, अगस्त माह से तैयारियां आरंभ हो जाएंगी और इसमें शामिल रहेगा घर की सफाई, रंग रोगन, पर्दे बदलना, इन सबको करते करते कुछ तो सामान की उठा पटक होगी ही, कुछ शरीर की भी, कभी गिरते हैं, कभी सामान उठाते हुए लड़खड़ा जाते हैं, कभी बड़ों की आवाज आती है, संभाल कर रखना भाई, गिरना नहीं गिराना नहीं, कहीं आवाज आती है अभी मजा, अभी यहाँ से हटा दो, बस यही करते करते कुछ टूट भी जाता है, कुछ बिखर भी जाता है।
1: यानी बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं, और इसी की तरह देखिए मुहावरों की दुनिया में भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, जो हमने आज दिया था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर, तो इस पर लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया भी अजब गजब की है, जहां हमें गागर में सागर जैसा अनुभव होता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यहां नोचने का अर्थ झटकने से खींचना, उखाड़ना या खरोचना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती के कारण शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय क्रोधित होकर दूसरों पर गुस्सा निकालता है, उसी पर यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, मेरी बिल्ली और मुझे से म्याऊं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मुहावरों की दुनिया बड़ी निराली है, अभी हाल ही में मैं एक कहानी संग्रह की समीक्षा लिख रही थी, क्या बात है, और उसमें कहानी की नायिका बहुत खूबसूरत है और कुछ ऑफिस के कर्मचारी उसके बारे में तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं, मैं उस एक जगह पर अटक गई और फिर वहीं बड़ी देर तक कुछ नहीं सूझा, तो मैंने इसी मुहावरे का प्रयोग किया और इस मुहावरे के प्रयोग से मेरी समीक्षा को तर्क मिल गया, क्योंकि साथी कर्मचारी जब हर तरह से असफल हो गए तो नायिका के बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाने लग गई।
1: तो चलिए एक पहले गीत सुन लेते हैं, फिर हम आगे और संदेश पढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो बात चल रही थी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे क्या है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपनी असफलता या लज्जा पर गुस्सा होना और झुंझलाट को किसी निर्दोष पर या व्यर्थ की चीजों पर निकालना। मुहावरे की उत्पत्ति और भाव, जब तक कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन चूहा भाग जाता है, बिल्ली पकड़ी नहीं पाती, उसे पकड़ नहीं पाती, शर्मिंदा होकर पास खड़े खंबे पर अपने नाखून गड़ाने लगती है। इसी स्थिति को इंसानों की उस मनोदशा से जोड़ा गया है जहां व्यक्ति अपनी गलती या कमजोरी स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ देता है और बेमतलब का गुस्सा दिखाता है। वाक्य प्रयोग से बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ कुछ उन्होंने उदाहरण भी दे दिए हैं, जैसे हम अपने परीक्षा पेपर में देते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण लिखकर हमें भेजे हैं।
1: और इसके साथ ही एक लिखते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी ही गलती होने पर खुद पर शर्मिंदा होना और गुस्सा करके किसी पर भड़ास निकालना या किसी चीज को नोच डालना, इन्होंने लिखा है। और इसी के साथ ही एक साथ लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है, अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है।

0: एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है कि तुम खुद परीक्षा में पास नहीं हो सके और मास्टर जी पर दोष लगा रहे हो। ये तो वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, अपनी सफलता या शर्मिंदगी के कारण गुस्सा होना और उस झुंझलाहट में दूसरों पर गुस्सा निकालना, यानी बेमतलब की उल्टी सीधी हरकतें करना। जब कोई व्यक्ति किसी काम में नाकामयाब हो जाता है या उसे अपनी ही गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन वो उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो अपना गुस्सा या खींच किसी और चीज पर निकालता है। घर में भी अगर बड़ों का मन किसी बात पर खराब है तो अपनी खींच बच्चों पर हम निकालते हैं और अपने से छोटे पर भी हम निकालते हैं। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे।
0: और एक साथी लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, जब कोई गलती पर शर्मिंदा ना होना गुस्सा किसी पर उतारते हुए क्रोधित हो जाए। ऐसी ही कहावत गुजराती की, लाजवाने बदले गाजवू, शर्मिंदा ना होकर गुस्सा करना, इन्होंने लिखा है।
1: जी वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में और अन्य संस्थानों में देखा जाता है कि वहाँ उच्च अधिकारी अपनी खुद की असफलता के कारण उसे छुपाने के लिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर क्रोधित हो जाते हैं और वो फिर अपने घर पर बेचारी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। इस मुहावरे का चरितार्थ करते हैं कि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, जो कि बहुत ही गलत बात है।
0: और एक साथी लिखते हैं कि घर परिवार रिश्तेदार में खिसियानी बिल्ली वाले बात हमेशा ही होती है। रिश्तेदारी में ही दो बहनों में कुछ मनमुटाव हो गया, जबकि उसमें से एक बहन बैठने पर कुछ बात बोल रही थी। दूसरी बहन को लगा कि ये उन लोगों की बात हो रही, उस समय तो कुछ नहीं बोली, बाद में वो हम ही लोग से उलझ गई और हमें समझ में नहीं आया कि इसके पीछे इतनी ये आग बबूला क्यों हो रही है। सबके सामने कुपचिकी चिल्लाई, बाद में जब उसे पता चला तो हम सब में से ये कहकर खूब हंसे कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे।
1: और एक आखिरी और है संदेश, वो लिखते हैं कि पुराने समय में घी दूध मक्खन को छत पर रस्सी का छींका बांधकर सुरक्षित रखा जाता था ताकि बिल्ली उछलकर भी वहां तक नहीं पहुंचे। जब बिल्ली वाकई में चढ़ने के लिए खम्बे नोचती है तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचती तो फिर वो खम्बा नोचने लग जाती है।
0: तो चलिए इसी के साथ सुन लेते हैं गी।

0: तो मंदाकिनी जी देखिए बातें करते करते प्रोग्राम एकदम समापन की ओर आ गया है, तो चलते हैं लेते हैं सबसे विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सखी सहेली।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने को हैं और इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम जो आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जा रहे हैं।

0: आज है जाने माने गीतकार आनंद बख्शी का जन्मदिन। वो गीतकार जिसकी गीत यात्रा 1958 से शुरू हुई तो पूरे 44 साल चली, यानी तकरीबन 5 दशक का सफर। इस सफर में आनंद बख्शी के गानों ने कभी हमें रुलाया।
1: जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई।
0: कभी थपकी दी और बहलाया।

0: कभी इन गानों ने हमारी खुशियों की साझेदारी की।
1: जय जय शिव शंकर, माटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया।
0: कभी इन गानों ने हमारी मोहब्बत का इजहार किया।

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और कुछ सुने किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आया हूँ। 1950 में बख्शी साहब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली में गए थे
0: जी,
1: उन्होंने वॉइस टेस्ट दिया था
0: उद्घोषक बनने का।
1: हाँ जी, और वो फेल हो गए थे।
0: बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी और खुद से एक वादा किया था जो सारा मामला है। पर सोचिए कि ये कनेक्शन बख्शी साहब का रेडियो के साथ है। एक और कनेक्शन है, जब उनका पहला गाना उन्होंने रेडियो पर सुना था, यहीं से बातें शुरू कर।
1: चुन्नू पतंग को कहता है काई,
2: चुन्नू पतंग को कहता है काई, बोलो बेटा टिंगू ये रॉन्ग है या राइट, राइट राइट राइट,
0: बोलो जी ये रॉन्ग है या राइट।
1: पहली बार उन्होंने अपना गाना सुना था
0: जी,
1: एक गली में दिल्ली में घूमते घूमते, यार ये तो मेरा गाना बज रहा है। तो उनका जो बचपन का सपना था कि एक दिन मेरे गाने बजेंगे रेडियो पर
0: जी,
1: वो उस दिन पूरा हुआ।
0: क्या बात है। तो ये बख्शी साहब का जो रेडियो कनेक्शन है, उसके अलावा एक और कनेक्शन है, आप जानते हैं क्या? वो ये है कि दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन जो फिल्मी गाने बजाता है, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता जब बख्शी साहब के गाने नहीं बजते हो।
1: यस, और एक और कनेक्शन है।
0: अच्छा,
1: कि उनकी जो जीवनी है
0: जी,
1: उसको ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में आरजे यूनुस खान ने किया
0: जी, वो भी ये मेरा सौभाग्य है,
1: तीसरा कनेक्शन बन गया।
0: जी जी बिल्कुल। तो शुरू से शुरू करते हैं, बख्शी साहब कहाँ पैदा हुए थे और वो जो खानदान था वो किस हैसियत का खानदान था, वहां लोग क्या क्या काम किया करते थे?
1: तो बख्शी साहब पैदा हुए थे भारत में, फिर उसका विभाजन हुआ, भारत में रावलपिंडी में पैदा हुए थे, 17 साल उन्होंने रावलपिंडी में गुजारे, और फिर विभाजन हुआ तो फिर वो पाकिस्तान बन गया
0: जी।
1: तो 1947 में वो इंडिया आए,
0: सरहद के इस पार आ गए।
1: हाँ, जो उनके 17 साल थे, वो उन्होंने एक गाना है उनका, मेरे देश में पवन चले पुरवाई
0: जी,
1: मेरे देश में,
0: बिल्कुल।
1: तो वो कहते हैं कि अगर मैंने गांव की जिंदगी नहीं जी होती तो ऐसा मैं गाना लिख ही नहीं पाता।
0: क्या प्यारी बात।
1: अगर मैंने वो गाना लिखा है इसलिए क्योंकि मैंने वो पानी पिया है, खेतों में नहा हूं, खेतों से अनाज उठाया है,
0: इसीलिए जिगरी दोस्त का वो गाना जो है वो इतना सुंदर बन पड़ा है।
1: हाँ,
0: उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है।
1: पवन चले पुरवाई।
0: हाँ,
1: क्योंकि इसी हमारे खुले गांव में।
0: हाँ,
1: सबसे ज्यादा मजा जो है वो एक आकाश का होता है, खुला आकाश, और दूसरा पवन।
0: बिल्कुल,
1: पवन का जो मजा है और जो बरसात का मजा है, पवन और खुले आसमान के नीचे, उसकी वो बातें बहुत

0: उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। उन्होंने
1: वो जब रावलपिंडी से दिल्ली आए थे तो एक छोटी दवाई की शीशी में, खाली शीशी में वो मिट्टी भी लाए थे रावलपिंडी की, और जिंदगी भर उन्होंने वो मिट्टी रखी थी अपने कबड़ में उस बॉटल के अंदर।
0: मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मिट्टी से प्यार, जो गांव से प्यार है, उसकी एक मिसाल है मेरे देश में। पवन चले पुरवाई में बख्शी साहब लिखते हैं, अमवा की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियां हो पतझड़ मस्त बहारें जैसे, पत्थर भी हैं तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के, मेरे खेत की मिट्टी ने सोने की मूरत पाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ये गांव की मिट्टी से उनका प्यार था।
1: अमवा की डाली पे गाय मत वाली, क्या लिया का

0: ये गांव वाले लिख सकते हैं। और एक रावलपिंडी की मिट्टी, पिंडी की मिट्टी,
1: उसका पिंडी कहते थे जी, रावलपिंडी नहीं कहते थे।
0: उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका जिक्र कीजिए।
1: उन्होंने वो कविता लिखी थी क्योंकि उनको क्या होता है, वो भले वो विभाजन हो गया और एक दूसरा देश बन गया
0: जी,
1: लेकिन जन्म तो वहीं हुआ था ना।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके लिए वो जन्मभूमि है। जब इंसान अपनी माँ से बिछड़ जाए 5 साल की उम्र में, तो वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो एक भूमि क्या होती है, वो भी तो पैदा करती है ना। भूमि गर्भ होती है, गर्भ में से ही सब निकलता है ना, अनाज निकलता है, पानी आता है। तो वैसे ही जब माँ भी गुजर गई 5 साल की उम्र में, और मिट्टी भी रह गई पीछे 17 साल की उम्र में, तो एक जो दर्द महसूस होता है कि वो जो एक मातृभूमि है वो चली गई, दोनों माँ चली गई, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसकी कोख से जन्म लिया। तो इसलिए वो ऐसी उन्होंने ये कविता लिखी थी, कविता का नाम है
0: पिंडी की मिट्टी। तो मेरा सौभाग्य है कि वो कविता मैंने पढ़ी है। एक किताब है बख्शी साहब की कविताओं की, जिसमें वो संग्रहित
1: मैं जादू हूं चल जाऊंगा
0: जी,
1: उसमें लिखी है, मेंशन की हुई है।
0: बख्शी साहब के बचपन की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटी है, जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, वो सिनेमा, साइकिल, गाना, ये सारी चीज।
1: क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे।
0: अरे ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई,
1: सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ एंटायर पंजाब, ऑल द जेल्स,
0: पंजाब प्रांत,
1: पूरा प्रांत, अनडिवाइडेड पंजाब का जो जेल्स थे वो जेलर थे, उसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेरी बिग, वेरी पावरफुल मैन। उनका उनका जो घर है, अभी कुछ 3-4 साल पहले ही वो डिमोलिश हुआ है, 3 मंजिल का घर था वो। और ही वॉज द ओनली चाइल्ड फैमिली जिनके पास साइकिल थी। तो वो साइकिल भी इतनी खास चीज थी तब, कि जब वो कहीं भी जाते थे साइकिल छोड़ आते थे, कोई ना कोई घर में साइकिल छोड़ जाता था वापस,
0: सब पहचानते थे
1: कि दरोगा जी के पोते की साइकिल है ये।
0: क्या कहलाती है, मोहियाल,
1: मोहियाल, मोहियाल, हाँ, पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है मोहियाल्स
0: जी।
1: तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मोर देन 50% रिलेटिव्स हमारे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में है, बिकॉज वी आर अ मार्शल क्लैन
0: जी जी, हाँ,
1: वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय ऑफ सोसाइटी। और उनको शौक था फिल्मों का, और फिल्म देखने के लिए पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे फिल्म का काम करना या फिल्म देखना कंजरों का काम होता था,
0: खराब माना जाता।
1: हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, तो वहाँ पे वो टेम्पररी नौकरी ले लेते थे कभी हफ्ते में 2-3 दिन। क्यों, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में।
0: अरे गजब।
1: हाँ, क्योंकि अगर आप सिनेमा में काम करोगे, लोगों को सीट बताओगे सीट कहाँ बैठना है, या डोरमैन का काम करोगे स्कूल के बाद, तो फिल्म पूरी देखने को मिलती है फ्री में। तो फिर दादाजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने को मिलने में नहीं वाले। तो ये उनका टाइम पास होता था कि चलो मैं इसी बहाने फिल्में देखूंगा।
0: वाह।
1: तो जिस दिन पिताजी को पता चला कि इसने ऐसी नौकरी पकड़ी हुई है टाइम पास,
0: और जबकि वो बच्चे थे उस वक्त,
1: बच्चे थे और स्कूल की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे थे, और जाके इधर नौकरी कर रहे थे सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म देखने के लिए, तो जो उनके दादाजी की जो छड़ी थी, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी कि तुमने ये ऐसा क्यों किया जब हमारे को पैसों की जरूरत ही नहीं है, और तुम भी ये काम कर रहे हो, गलत काम है ये फिल्में देखना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है। इतना शौक था उनको
0: जी जी।
1: और वो करीब कुछ 12-13 साल की उम्र से ही नज़्में लिख भी रहे थे, उसकी धुन भी बनाते थे, उसको गाते भी थे, और उस पर एक्टिंग भी करते थे।
0: वाह वाह।
1: क्योंकि जब मोहल्ले में रामलीला होती थी
0: जी,
1: तो उनको भी पकड़ा जाता था, डायलॉग मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए रामायण का। तो जितने भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे हिंदू के, तो उसमें सारे में बख्शी साहब टीनेजर को बुलाया जाता था, अरे वो बख्शी को बुलाओ, अरे वो दरोगा जी के पोते को बुलाओ, वो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है। तो सब कर लेते थे, लिख भी लेते थे, उसको धुन भी बना देते थे, गा भी लेते थे, उसकी एक्टिंग भी कर लेते थे।
0: और उनका ख्वाब बंबई जाने का था।
1: हाँ, फिल्में देखते हैं तो पता चलता है ये कहाँ बनी है, बंबई से बंबई में बनती है। अच्छा, बंबई किधर है,
0: समुद्र के पार है,
1: समुद्र के पार है। तो उनको ये था कि मैं बंबई जाऊं, लेकिन उनको पता नहीं था बंबई क्या है, ये कि बंबई में फिल्में बनती हैं।
0: हाँ।
1: तो अगर गाना गाना है या गाना लिखना है या एक्टिंग करनी है या धुन बनानी है तो बंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो गांव में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं।
0: एक छोटे से बच्चे को ये समझ में आ गया कि उसकी मंजिल बंबई है।
1: हाँ। तो जब वो 14 साल के थे, उनको नेवी में भर्ती किया गया, क्योंकि हमारी सारी एंसेस्ट्री नेवी में थी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस, बिकॉज देवर अ मार्शल क्लैन।
0: तो 14 साल की उम्र तो बहुत कम होती है, तो कैडेट बन गए वो।
1: कैडेट, यू द नेवल कैडेट। और उनकी भर्ती हुई, दो शिप थी, INS हिंदुस्तान और INS दिलावर, इन दो शिप में पढ़ाई जाती थी नेवल की जो पढ़ाई है।
0: और ये तो अंग्रेजों का जमाना था।
1: हाँ, 1942। तो जो पहला साल उनका नेवी में था कराची पोर्ट में, तो वहां म्यूटिनी शुरू हो गई। तो जो म्यूटिनी हुई वो बम्बई में हुई, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, मद्रास पोर्ट और कराची पोर्ट।
0: ये जो बगावत थी नेवी की, ये बहुत मशहूर है,
1: बहुत मशहूर,
0: इसका
1: बहुत
0: इतिहास में दर्ज है।
1: पहली बगावत, सेकंड बगावत थी जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि हम इस देश पे राज नहीं कर सकेंगे
0: जी।
1: क्योंकि देखिए, आम आदमी प्रोटेस्ट करे तो वो तो करेगा प्रोटेस्ट, लेकिन अगर आपकी नेवल फोर्स आपके अगेंस्ट चले जाए, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपकी पुलिस आपके, कू बन जाता है, लेकिन भी कू,
0: बिल्कुल,
1: तो दैट इज व्हेन दे रियलाइज यार ये तो इन पे राज करना मुश्किल होगा
0: जी।
1: तो उन्होंने उसमें भाग लिया था। और उनका जो ये जो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी ना, नेवी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि वो पेट्रियोटिक थे। उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी कि कराची में बोट में पढ़ाई होती है, शिप में पढ़ाई होती है, और वो शिप में घुमाते हैं, तो जब मेरी शिप बंबई जाएगी मैं शिप से जंप मार के भाग जाऊंगा, नेवी छोड़ के भाग जाऊंगा और जाके फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा।
0: अरे,
1: तो
0: अरे,
1: उनका
0: अरे।
1: जो गोल था वो देश के लिए नहीं था।
0: हाँ।
1: नेवी ज्वाइन करना, वो जो देश के लिए गोल था वो जब म्यूटनी हुई तब पैदा हुआ। वहां उनको एहसास हुआ क्योंकि जब वो पकड़े गए सब और जेल हुई, तो तब उनको उनमें ये एक एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। तब तक उनको वो गुलामी का एहसास नहीं था
0: क्योंकि उम्र भी बहुत कम थी,
1: बहुत कम थी
0: जी।
1: और क्या होता है कि दादाजी भी पुलिस में है, सच ए पावरफुल पोस्ट, तो आपको कोई गुलाम की तरह रखेगा नहीं ना, तो आपको गुलामी का एहसास नहीं होता। तो जब भी इनको कराची में अरेस्ट किया गया, जब म्यूटिनी को स्मैश किया गया, डिमोलिश किया गया बाय द ब्रिटिश, उनके जो ऑफिसर थे वो अंग्रेज था, तो उन्होंने पकड़ा इनको, सबको पकड़ा, जेल में गए। तो जेल में जब गए और बख्शी साहब को देखा तो उसने बोला ये बच्चा कौन है, ये तो अंडर एज है। तो बख्शी साहब को उन्होंने बोला कि तुम तो बच्चे हो, यू आर नॉट 18 एज येट, तो अगर तुम्हें जेल होती है, अगर मैं तुम्हें जेल में भेजता हूँ तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जेल की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ
0: जी।
1: लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूँ ब्रिटिश नेवी का, तो मैं तुम्हें रेस्टिकेट करूंगा नेवी से। तो उनको रेस्टिकेट किया गया, यू हैड टू लीव। फिर लीव करके फिर उनके बाद वो गए, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ, इंडिया आए, दिल्ली आए, तो वहां उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन की। सिग्नल्स,
0: इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो फौजी अफसर थे उनके प्रति बहुत सम्मान था बख्शी साहब के जहन में, क्योंकि अगर वो जेल भेज देते तो पूरी जिंदगी बदल जाती।
1: हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक तो माँ होती है जो जन्म देती है, और एक जो माँ होती है जो एक आगे जिंदगी बढ़ाती है
0: जी।
1: तो ही ऑलवेज थॉट कि इट इज अ वेरी मदर लाइक एक्ट
0: जी,
1: एक माँ की तरह एक उन्होंने उस बच्चे को एक सेकेंड लाइफ दी कि तू जा
0: जी,
1: देखो मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में।
0: और छोड़ दिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
1: यू आर रेस्टिकेटेड विद डिसऑनर।
0: अब जब घर आए तो क्या हाल हुआ?
1: घर आए तो फिर नेचुरली एकदम, फिर तो इमीडिएटली अपना एक साल में पार्टीशन हो गया ना देश का, अपना भारत का। तो फिर उससे पहले उनको उधर भेजा गया गुरुकुल, जम्मू के पास में गुरुकुल था, तो वहाँ गुरुकुल में भेजा गया पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में वो सिनेमा हॉल में ये चले जाते थे छोटा मोटा काम करने के लिए, पैसे नहीं मिलते थे लेकिन फिल्म देखने को मिलती थी। तो ये सब पकड़ी गई, सब उनकी सब चोरी पकड़ी गई था ये तो। और दूसरी एक बात थी कि एक बार उनके स्कूल में दो दोस्त बने थे उनके, तीन दोस्त थे स्कूल में, और तीनों का ये सपना था कि हम बम्बई जाएंगे, कुछ काम करेंगे। बख्शी साहब का था कि मैं फिल्म ज्वाइन करूंगा,
0: और बाकी दोस्तों
1: का कुछ था, उनका कुछ सपना था। तो इन्होंने तीनों ने स्कूल की सारी किताबें बेच दी,
0: अरे बाप रे,
1: बैग वैग सब बेच दिया, पानी की बोतल सब बेच, सब कुछ जो भी स्कूल का सामान था सारा बेच दिया। और वो जो से पैसे मिले वो जाके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए कि सुबह हम मिलेंगे इतने बजे और हम ये ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहाँ जाएगी, यहाँ से वहाँ जाएगी, वहाँ से वहाँ जाएगी, वहाँ से बम्बई पहुँच जाएगी।
0: हाँ हाँ।
1: और हम घर में नहीं बताएंगे। अभी वो चले गए, पहुँच गए, अपना सामान वामान बेच के सब पैसे वैसे जेब में, जो भी 5-10, 6 रुपया, 1 रुपया जो भी मिला होगा उसका जेब में डाल के, अपने 2-3 एक जोड़ी कपड़ा वपड़ा कपड़े की थैली में लटका के, पानी वानी, पहुंच गए स्टेशन। 5, 6, 8, 12 घंटे निकल के वो आए नहीं दोनों दोस्त।
0: अरे अरे अरे,
1: घर चले गए वापस, घर चले गए वापस। तो फिर मालूम पड़ा कि तो सारी किताबें बेच दी इसने, कल स्कूल है,
0: फिर
1: स्कूल जाने के लिए सब जबरदस्त पिटाई हुई।
0: अरे अरे,
1: तो उसका इलाज उन्होंने क्या ढूंढा कि यहाँ से निकालो, ये यहाँ खराब हो गया गाँव में,
0: यहाँ गलत संगत,
1: गलत संगत होगी इसकी। हाँ। इसके बेकार बेकार से सपने हैं इसके बम्बई जाने के, फिल्म लाइन ज्वाइन करने के, तो इसको गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में खूब पिटाई होगी, इसकी पढ़ाई भी होगी और साथ में डिसिप्लिन होता ना, बिकॉज एवरीथिंग इज धार्मिक, तो वहां ये सुधर जाएगा। तो भेजा।

0: गुरुकुल ज्वाइन किया, तो गुरुकुल में एक ऑफिसर आया था, ही वाज अ ब्रिटिश बॉक्सर, ब्रिटिश था वो, अंग्रेज था और वो बॉक्सर था और टीचर था, बॉक्सिंग सिखाता था वो।
1: अच्छा, मतलब गुरुकुल में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कि बच्चे हट्टे कट्टे बने, तंदुरुस्त बने, वो
0: ब्रिटिश राज था ना, करें ब्रिटिश को था कि हम हर जगह हमारा पैर दबा के रखें। तो जो दो गुरुकुल में पढ़ाई इंग्लिश नहीं होती थी, लेकिन उनको अपना दबदबा सब जगह रखना था, तो उन्हें वहां भी अंग्रेज को भेजते थे वो, कि ताकि वो नजर रखे सब बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे, कि हो क्या रखे, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट तो नहीं हो रहा गुरुकुल में। बॉक्सर था तो बॉक्सिंग सिखाता था सबको, पीटी वीटी कराता था। तो बॉक्सिंग सिखाने के लिए कोई सीखने को रेडी नहीं था, तब किसी को शौक नहीं था, क्योंकि हमारी जो एंसेस्ट्रल है अपना, हमारी जो कल्चर है उसमें वो है ना कुश्ती,
1: बिल्कुल
0: बॉक्सिंग तो है ही नहीं हमारे इसमें, तो उसको अभी कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर बॉक्सिंग सीखोगे तो बड़ा ग्लास दूध का मिलता था, उसमें मलाई ऊपर रहती थी।
1: अच्छा,
0: तो वो दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली, कि यार साला इधर मलाई और दूध मिलेगा,
1: दूध मिलेगा।
0: फॉर एवरी क्लास एवरी स्टूडेंट गेट्स वन ग्लास ऑफ मिल्क विद मलाई ऑन टॉप। वो जमाने के ग्लास इतने बड़े बड़े रहते थे,
1: बिल्कुल। और वो पंजाबी व्यक्ति
0: दूध का शौक मलाई, गांव में पैदा हुए हैं
1: जी,
0: तो ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पर वो जो ऑफिसर था ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, वो सिखाने के लिए नहीं आया था, वो अपना गुस्सा निकालता था सब पे, और रोज एक स्टूडेंट को पकड़ के इतनी पिटाई करता था कि वो बच्चे बेहोश हो जाते थे। तो बख्श साहब ने देखा, यार ये तो खूब पिटाई हो रही है, लेकिन यार दूध भी मिल रहा है। तो वो क्या करते थे, रोज जब क्लास होता था ना, हफ्ते में एक दिन क्लास होता था, वो किसी ना किसी के पीछे छुप जाते थे,
1: ताकि रिंग में ना आना पड़े।
0: हाँ, और रेंज में नहीं आया, आंखों से आंखें नहीं मिल सके। तो 3-4 महीने तो बड़ा दूध पिया, मलाई खाई, मजे के ले लिए। लेकिन एक दिन वो अंग्रेज ने देख लिया इनको, बोला यार तुम कौन हो, हैव यू जॉइंड न्यू, तुम क्या नया आए हो इधर? इसे नहीं, कब आए तुम इधर क्लास में? वो सर 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए,
1: अभी तक मेरे हाथ
0: नहीं लगा ये। उनकी तो डबल पिटाई की उन्होंने।
1: अरे बाप,
0: अरे जबरदस्त खूब पीटा बख्शी साहब को। बख्शी साहब अगले दिन भाग गए वहां से।
1: अरे अरे,
0: सुबह उठे सीधा ट्रेन पकड़ी। क्या वो जमाने के जो बच्चे थे ना
1: जी,
0: वो आज के जमाने के जो हमारे मेट्रो बच्चे हैं या टायर टू सिटी के बच्चे, वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं थे वो। तो सीधा अगले दिन ट्रेन पकड़ी जम्मू से, और घर वापस आ गए कि बाबा बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी और। तो उसके बाद फिर विभाजन हो गया।
1: हाँ,
0: तो फिर वो पूरा स्टोरी चेंज हो गई ना, सारे लाइफ पाथ ही बदल गया पूरा।
1: तो एक दिन रातों रात ये तय किया गया कि पूरा परिवार दिल्ली जाएगा।
0: हाँ, तो उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हमारे मोहल्ले में दंगा होने वाला है, और क्योंकि वो दरोगा जी थे वो।
1: हाँ,
0: तो उनके हर घर को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली कल्चरली सर्टेन पोजिशन बट ऑल्सो मैन ऑफ पावर, कि भाई इसका घर तोड़ेंगे आज उस हिसाब से। तो इनको रातों रात निकलना पड़ा वहाँ से। तो जो भी हाथ लगा, बर्तन गहने वहने, हाँ, खाना जो भी छोटा मोटा खाना पीना पानी, वो लकी थे क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे ऑफ पंजाब जेल। तो उनको दिल्ली आने के लिए एक डकोटा प्लेन में आए। देवर 2-3 फैमिलीज, देवर वेरी प्रिविलेज्ड पीपल, और वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आए रावलपिंडी। पता नहीं बीच में रुके होंगे फॉर रिफ्यूलिंग, आई डो नॉट नो, बट आई नो दैट दे केम टू दिल्ली टू रेफ्यूजी कैंप। और बहुत लकी थे क्योंकि लाखों कहानियां जो लोगों का लूटा गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो उनकी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे के सारे सेफ। तो जो भी वो उनका हाथ लगा, और घर की चाबी बाजू वाले को दे के आए थे कि बाबा हम आ रहे हैं वापस, 2-3 महीने में वापस आ जाएंगे,
1: क्योंकि
0: किसी को ये नहीं था कि वापस कभी नहीं आ सकेंगे। तो इस विश्वास से कि हम एक दिन वापस आ जाएंगे, सब चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे, तो पड़ोसी को घर की चाबी दे के आ गए। तो यहाँ कुछ 4-5 दिन निकले और सब सेटल हो गए, खाना पीना, और रेफ्यूजी कैंप में जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि दरोगा जी थे वो, रिटायर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज इन पावर स्टिल बट ही वॉज दिल्ली। तो रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह वगैरह मिल गई, सब ठीक हो गया। तो सबको पूछा कि भाई क्या क्या लाए हो, कि उस जमाने में चांदी के बर्तन वॉज वेरी कॉमन, तो बर्तन चांदी के, ज्वेलरी जो लेडीज होती है तो ज्वेलरी लगती है, हमारे कल्चर में तो यही ज्वेलरी, गोल्ड लेना, क्योंकि 5 बहन है, और ही वॉज द ओनली सन फ्रॉम द फर्स्ट मदर एंड 2 ब्रदर्स फ्रॉम द सेकेंड मदर।
1: सौतेली माँ भी उनकी एक थी।
0: हाँ, सौतेली माँ, तो ये सब पूरी दादा दादी साथ में, पूरे सब ज्वाइंट फैमिली। तो सब ने बताया कि किसी के पास ज्वेलरी, किसी के पास ये वो कपड़े वपड़े। तो जब बख्शी साहब का पूछा कि तू क्या लाया घर से, क्योंकि उनको रातों रात भाग के निकला ना वहाँ से, कि सुबह होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना है। तो जब उन्होंने बताया सामान जो लाए हैं, तो उनको खूब डांट पड़ी दादाजी से, बाऊजी से और दादाजी दोनों से, कि बेवकूफ़, क्या उठा के लाया, एक क्या काम आएगा किसी के, ये सब क्या लाए थे वो 17 साल की उम्र में रातों रात वहाँ से जब निकले, अपनी गुजरी हुई माँ की फोटोज, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में गुजर गई माँ, तो उनकी मेमोरीज बहुत कम है माँ के साथ,
1: तो वो तस्वीर उनके लिए,
0: वो तस्वीर ही उनकी मेमोरी थी कि ये, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो माँ बहुत जल्दी गुजर गई, तो मेरे पास तो ज्यादा यादें नहीं है माँ के साथ, तो ये तस्वीरें ही हैं जिनको मैं देख देख के वक्त गुजारता हूँ, जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि क्या है उनके पिताजी ने भी शादी कर ली सेकंड, तो नेचुरली एक कोई भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता ना, तो बच्चे को थोड़ा प्यार नहीं मिलता, ये नहीं कि कम मिलता है, वो हर एक बच्चा अलग होता है, कोई बच्चे को लगता है मुझे ज्यादा सेंसिटिव होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो फिर वो माँ की तस्वीर देख के रोते थे वो, तो उनको ये था कि उन्होंने बाबूजी को बोला था कि पैसे तो हम काम करके कमा लेंगे, कोई भी काम करके आप आदमी इंसान पैसे कमा लेता है, लेकिन माँ की तस्वीर अगर रह जाती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा।
1: गजब, क्या गजब की बात।
0: तो मैं लोगों को हमेशा ये जो किस्सा सुनाता हूँ उसका मकसद ये है सुनाने का, जो इंसान 17 साल की उम्र में रातों रात कपड़े नहीं उठाए, पानी नहीं उठाया, खाना नहीं उठाया, ज्वेलरी नहीं उठाई, जो चांदी का ग्लास था वो नहीं उठाया, माँ की तस्वीर उठा के लाया, वो ही इंसान आगे जाके गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ।

0: और कोई नहीं लिख सकता ऐसा गाना। मुझे याद है जब हम मम्मी के साथ लड़ते थे, क्योंकि हम हर बच्चा मम्मी के साथ लड़ता है, क्योंकि मम्मी एक है जो हमारे नॉनसेंस ले लेती है ना, बाकी तो बाप तो सीधा उठा के दो चांटे लगा देगा। तो मम्मी के साथ वो लड़ते थे, लड़की के लड़ नहीं सकते क्योंकि एक जनरेशन गैप है, ऊपर से एक पिताजी का एक होता है ना रोब होता है, बाबूजी दादाजी पिताजी इनका एक रोब होता है बहुत हमारे घर में।
1: बिल्कुल,
0: मम्मी फ्रेंड होती है ना।
1: यस बिल्कुल,
0: हाँ हम दोस्ती ज्यादा मम्मी से करते हैं, तो मम्मी से बहुत लड़ते थे। तो हमेशा डैडी मम्मी को बोलते थे कि तुम जो बदतमीजी से बात करते हो अपने मम्मी के साथ, तुम बुरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी माँ जिंदा है इसलिए तुम्हें पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है। हमसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, माँ से कैसे बात की जाती है, तुम्हारी माँ है इसलिए तुम्हें माँ की कीमत नहीं पता,
1: माँ का मोल समझो।
0: हाँ,
1: दूसरी चीज वो जो लेके आए थे अपने घर से वो थी पिंडी की मिट्टी,
0: वो मिसप्लेस हो गई, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नॉट नो वेर इट वेंट। मैंने बहुत उसको खोजा उनके जाने के बाद, जब मैंने उनका वॉलेट खोला, मुझे उनकी कृष्ण जी की फोटो मिली, एक गीता का एक वर्स मिला मुझे उसमें, एक बोतल ही मुझे वापस मिली
1: कि उन्होंने अपने गांव की मिट्टी एक बोतल में भरी कि अब ये छूट रही है मेरी मातृभूमि, ये कितनी बड़ी बात है।
0: हाँ, इसलिए उन्होंने कितने खूबसूरत गाने लिखे हैं मिट्टी पे
1: जी,
0: कितने खूबसूरत, मतलब एक से नंबर एक गाना है उनका मिट्टी पे। और मिट्टी खो देने का, माँ खो देने का, और मिट्टी खो देने का, इंसान खो देने का, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, जाने कहाँ चले जाते हैं वो लोग
1: दुनिया
0: से जाने वाले। आप देखो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि जिया है उसे,
1: वो उनकी जिंदगी की कहानी है।

0: रावलपिंडी से जुड़ी यादें वो शेयर करते थे, और वो कौन कौन सी यादें, अभी तक हमने बहुत सारी यादें वहां की बांटी हैं, तो कुछ और बात है जो रह गई जो उन्होंने आपको सुनाई हो रावलपिंडी से जुड़ी हुई कहानी?
1: जब रावलपिंडी में थे तब उनको पता चला था कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: हाँ, क्यों स्टूडियोज होते थे बड़े बड़े,
1: तो वो लाहौर गए थे काम ढूंढने के लिए। नहीं, उनकी एक कविता एक उर्दू मैगजीन में छपी थी, क्योंकि पढ़ाई उर्दू में होती थी वहां पर रावलपिंडी में। तो उनका जो लिखाई है वो भले ही हिंदी है, हिंदी गाने हैं, लेकिन वो उर्दू में लिखते थे हिंदी गानों को हमेशा, क्योंकि उन्होंने हिंदी सीखी नहीं थी। जो उनकी हिंदी थी वो बोलचाल में थी
0: जी जी,
1: हाँ, लेकिन लिखने में वो हिंदी गाने उर्दू में लिखते थे।
0: ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बख्शी साहब अपने गाने उर्दू में लिखा करते थे।
1: हाँ, मैट्रिक पास ना, 8th स्टैंडर्ड तक, तो वो पब्लिश हुई थी उनकी एक नज़म लाहौर में, तो वहाँ इंडस्ट्री भी थी, तो वहाँ भी वो गए थे कि चलो इसी बारे में थोड़ा काम भी ढूंढूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो वो फिर वापस आ गए थे।
0: जी, पार्टीशन के बाद जब पूरा परिवार दिल्ली आया, दिल्ली में किस तरह के हालात हुए और वहां से कहां गया पूरा परिवार?
1: बिकॉज देवर रेफ्यूजी कैंप में थे ना वो, तो दिल्ली से फिर उनको पुणे शिफ्ट किया गया रेफ्यूजी कैंप।
0: सरकार ने भेजा?
1: सरकार ने। फिर वहां से वापस वो दिल्ली आए, क्योंकि पंजाबी थे वो, तो उनको महाराष्ट्र सूट नहीं किया। दे वांटेड समबडी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव वही है, पंजाब में ही है, पंजाब हरियाणा, तो उन्होंने बोला कोई ये हमारा इधर तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई पहचान वाला ही नहीं है महाराष्ट्र में। तो पुणे से फिर वापस उनको शिफ्ट किया गया, फिर उनको घर दिया गया दिल्ली में, सराय रोहिल्ला जगह है, सराय रोहिल्ला। तो फिर पार्टीशन हुआ अगस्त में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उन्होंने ही ज्वाइंट इन द सिग्नल्स एज एन इलेक्ट्रिशियन एंड टेलीफोन ऑपरेटर।
0: ओके,
1: तो उनका जो कोड नेम था एज अ सोल्जर, क्योंकि सोल्जर को सिग्नल में वॉच कोड सिखाया जाता है
0: जी जी,
1: और टाइप राइटिंग सिखाई जाती है, जो तब की कम्युनिकेशन थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हर ऑफिसर को कोड नेम दिया जाता था, क्योंकि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर नेम, सो दैट अगर हमारी रिकॉर्डिंग टैप हो रही है एनिमी से, इफ द एनिमी इज रिकॉर्डिंग
0: आवर, तो वो नहीं जान पाए,
1: उनको पता नहीं चलेगा ये कौन बात कर रहा है,
0: बंदा कौन है, उसकी लोकेशन क्या है,
1: लोकेशन क्या है। तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
1: वाकई में आजाद थे वो,
0: क्या बात,
1: आजाद दिल के।
0: अच्छा, उनकी आर्मी सिग्नल कोर में पोस्टिंग से पहले
1: जबलपुर में पोस्टिंग हुई थी।
0: हाँ,
1: ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम जबलपुर,
0: ट्रेनिंग वहां हुई,
1: 3 साल की जो ट्रेनिंग थी वो जबलपुर में हुई। तो उनका जो सर्टिफिकेट है, जो मैंने पब्लिश भी किया है किताब में,
0: जी जी,
1: वो जबलपुर का है, वो सिग्नल सेंटर जबलपुर जो आपका गांव है।
0: बिल्कुल। वहां पर स्पेलिंग लिखी जबलपुर, आज भी आर्मी सिग्नल कोर का जो ठिकाना है वो अभी भी जबलपुर में है, एक बड़ा सा गेट है, और क्योंकि मेरा शहर है तो जब कभी हम वहां से निकलते हैं, जो भी साथ होता है उसको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यहाँ बख्शी साहब रहे हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के काम में उनको दिलचस्पी होने लगी थी। मैंने उनकी कॉपी दिखी है जो आपने दिखाई थी ट्रेनिंग वाली, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हैं, बहुत सारे नोट्स लिखे हैं साइंस के, तो वो देख के ऐसा
1: लेकिन
0: लगता
1: कमाल
0: है
1: कि he was certified electrician, लेकिन डरपोक नंबर वन, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो जाए घर में ना गड़बड़, डरपोक नंबर वन,
0: तो वो मतलब टच नहीं करते थे,
1: स्क्रू ड्राइवर डालने में भी घबराते थे कि शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, हाथ में लगा शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, he was like that।
0: नहीं, लेकिन वो जो नोटबुक आपने मुझे दिखाई थी उसमें तो क्या सर्किट,
1: सब कुछ, लेकिन
0: बहुत सुंदर राइटिंग में सब कुछ है।
1: फोबिया होता है शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो उनको वो शॉक लगने का बहुत डर रहता था, एक चिपकली का डर, एक शॉक लगने का डर, और एक लिफ्ट में चढ़ने का डर, तीन उनके डर थे, और अकेले रहने का डर। तो उनका अकेले रहने का जो डर था ना, उसको एनालाइज किया गया, वो करीब लेट 1990s में, मेरे ख्याल में गुजर जाने से कुछ 2-3 साल पहले, ही मेट अ साइकोलॉजिस्ट कि अभी तो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ, मेरा नाम है सब जगह, इज्जत है, जो मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में होगा वो भी हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे डर है प्लेन में नहीं चढ़ने का, लिफ्ट में नहीं जाने का, घर में अकेले नहीं रहने का।
0: मतलब कोई ना कोई उनके साथ होना जरूरी था।
1: घर पे भी हमारा काफी बार डैडी के साथ झगड़ा क्यों होता था, क्योंकि वो बोलते थे अभी मम्मी बाहर गई है तुम घर बैठो, बाहर नहीं जाना, मम्मी आएगी तब जाना। तो बोलता अभी अब जाना, खेलने के लिए जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, या गोटी खेलने जाना है, या गिति गिति खेलने जाना है, दोस्त बुला रहे, नहीं नहीं मम्मी आएगी या भाई आएगा, गोगी आएगा तब जाना। तो हम लड़ते थे डैडी के साथ, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद जब मैंने उनकी डायरी खोली तब मुझे पता चला कि ये जो डर था उनका घर में अकेले नहीं रहना, कोई ना कोई होना चाहिए घर में, या तो जो हमारे घर में लोग काम करते हैं वो होने चाहिए, या मैं या माय ब्रदर और माय सिस्टर और माय मदर, कोई होना चाहिए, अकेले नहीं। उसको एनालाइज किया गया हूँ साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने रिमार्क लिखा है दैट बिकॉज यू आर अबैंडन्ड एज अ चाइल्ड, बिकॉज यू लॉस्ट योर मदर एट द एज ऑफ 5, और आप पिताजी ने दूसरी शादी की, और क्या होता है भले वो माँ अच्छी हो दूसरी आई है, लेकिन वो माँ नहीं है,
0: तो एक अकेलापन आ जाता
1: है। अकेलापन से ज्यादा होता है अबैंडनमेंट।
0: जी जी,
1: अबैंडनमेंट हर्ट्स यू।
0: यस,
1: अकेलापन मे नॉट हर्ट यू, लेकिन इफ यू फील अबैंडनड यू आर हर्टिंग योर सेल्फ,
0: कि मेरा तो कोई नहीं है,
1: मेरा तो कोई नहीं है, नहीं मुझे छोड़ा गया है,
0: हाँ,
1: मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, तो क्योंकि 5 साल की उम्र है ना, तो उसको लगता था कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है, तो बचपन से माँ चली गई मतलब माँ ने छोड़ दिया मुझे, तो वो एक जख्म था, वो भरा नहीं कभी, इसलिए वहां पे क्या गाने लिखे बख्शी साहब ने, कमाल सर, आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज रिटन एज गुड एज आनंद बख्शी रिटन ऑन मदर।

0: 60s, 70s, 80s में माँ की बहुत अहमियत थी सोसाइटी में, तो फिल्म में कहीं ना कहीं माँ का कैरेक्टर आ ही जाता था, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर,
1: और वहां फिर गाने लिखने की।
0: हाँ, जो आजकल नहीं है फिल्मों में। आजकल फिल्मों में आपको देखो दोस्ती खत्म हो गई है, दोस्ती में कोई गाना नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं दिखा रहे दोस्ती का। तो ये सब है, तो उनका जो ये था ना कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, उसकी दो वजह थी। एक तो ही फेल्ट लेटर तो व्हेन ही ग्रो ओल्डर देन ही रियलाइज दैट शी डाइड, बिकॉज़ शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ। जब सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ ना बख्शी साहब के बाद, तो वो चाइल्ड बर्थ में गुजर, उस जमाने में ना चाइल्ड बर्थ में बहुत डेथ हो जाती थी
1: जी जी लेडीज की, बिल्कुल।
0: लेकिन वो जख्म जख्म होता है, कोई जख्म बढ़ते नहीं, हर जख्म नहीं बढ़ता
1: वाला। और प्लेन में सफर न करने वाला डर क्यों?
0: दैट इज जस्ट अ फोबिया। एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला, अगर आपको, उन्होंने बोला कि भाई जब मैं आर्मी में था तो मैं तो पैराशूट से जंप मारता था 70 रुपए के लिए ज्यादा, हमको 70 रुपए ज्यादा मिलते थे अगर हम पैराट्रूपिंग करें।

0: मूड हुआ तो लिखा, नहीं हुआ तो ऐसे बैठ के वो जो जिंदगी जीती उन्होंने
1: उसको रिपीट
0: 1956
1: किया।
0: में, उसको रिपीट किया गया ताकि ये डर जाए, क्योंकि वो आदमी खो गया है, उस आदमी को वापस कैसे लाना है, वो आदमी बनो।
1: अरे गजब,
0: तो वो आदमी वापस आएगा, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ने वो आदमी पैदा किया था ना, जो ट्रेन में जाता था काम ढूंढने, बस में चढ़ता था काम ढूंढने, लिफ्ट पे चला जाता था काम ढूंढने, वो इंसान खो गया क्योंकि अभी उसके पास गाड़ी आ गई है, वेल्थ आ गया है, घर आ गया है, नाम और शोहरत आ गया है, तो वो इंसान खो गया है। तो उस डॉक्टर ने कहा था उनको, साइकोलॉजिस्ट ने, तुम वो इंसान बनो क्योंकि वो इंसान पीछे रह गया है। फिर हफ्ते में 3 दिन चर्चगेट जाते थे ट्रेन में, और ऐसे बहुत लोगों ने मिले हैं लोग, आई सॉ योर फादर टुडे यार एट पेंड्रा स्टेशन यार, माय फ्रेंड्स यू आर गोइंग ऑन ट्रेन यार,
1: ट्रेन से जा रहे थे। क्या बात है।
0: हाँ, एक जर्नलिस्ट मुझे, मैं 2-3 जर्नलिस्ट से मिला रहे, हम बख्शीश आपको देखते थे यार
1: ट्रेन में जाते।
0: हाँ, क्यों जाते थे।
1: हाँ।
0: तो कभी बैठेंगे तो सुनाऊंगा कहानी।
1: अरे बाप रे, ये भी बहुत ही कमाल की कहानी।
0: तो हमें, अगर हमें ताकत चाहिए ना, जो हमारी ताकत जवानी में थे, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा।
1: ये बहुत बारीक बात,
0: स्पिरिचुअल ताकत वापस आएगी।
1: जी, बहुत बारीक बात। वापस जबलपुर चलते हैं, जहां आर्मी सिग्नल कोर में बख्शी साहब की ट्रेनिंग चल रही है, और वहां बख्शी साहब अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं, और आर्मी वालों को ये यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए नहीं बना है।
0: तो क्या हुआ कि उनका सपना जो था वो मोहल्ले वालों ने एनकरेज किया, अरे तू बंबई जा यार, तू बंबई जा यार, यार तू किधर क्या कर रहा है यार, तू गांव में क्या कर रहा है, बंबई जा। तो वो तो एक बचपन का सपना होता ना, लेकिन जब वो आर्मी में अडल्ट हो गए थे, विभाजन हो गया था देश का, मतलब इट वॉज अ वेरी सीरियस एटमोसफियर ना, यू हैव लॉस्ट योर हाउस, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव लॉस्ट योर वेल्थ, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट नौकरी, सरकारी नौकरी है बस, और देश के लिए आप काम कर रहे हो, बिकॉज दैट वाज व्हेन यू जॉइंड द आर्मी, इट वॉज पेट्रियोटिज्म, व्हेन यू जॉइंड द नेवी, इट वॉज मैं बंबई जाऊंगा, वहां से जंप मार के फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। जो उनका जो बचपन का सपना था, उसने रूप लेना शुरू किया। कैसे, उनके जो कलीग्स थे आर्मी में, जो सोल्जर्स होते हैं साथ में आपके काम करते हैं, और जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने इनको एनकरेज किया। और एक तो कैप्टन, उन्होंने तो ऑफिशियल आर्मी के लेटर पे चिट्ठी भी लिखी थी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आनंद प्रकाश बख्शी वैद इज एन एक्सीलेंट राइटर एंड एक्सीलेंट सिंगर एंड ही परफॉर्म्स वेरी गुड स्टेज शोज एंड आई सोनचो सोनचो कमांडर ऑफिसर कैप्टन रिकमेंड हिम टू एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री टू प्लीज गिव हिम अ वर्क एज अ सॉन्ग राइटर।
1: यानी एक फौजी अफसर ये लिख रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा कलाकार है, इसको सिनेमा में काम दो,
0: सिनेमा में काम दो।
1: वाह वाह,
0: वो है मेरे पास चिट्ठी, है मेरे पास रेडीनेस, वो संभाल कर रखा है, क्योंकि वो चिट्ठी जाके दिखाते थे बॉम्बे में आके, देखो मेरे ऑफिसर ने मुझे भेजा है, अब यहाँ क्या उसकी कीमत।
1: हाँ, इंडस्ट्री वालों को थोड़ी पता
0: क्या कीमत है कैप्टन की।
1: जी, आर्मी में वो परफॉर्म क्या करते थे, बड़े खाने के दिन,
0: प्लेस, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उसमें एक्टिंग भी कर लेते, लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, गाते थे भी, और एक्टिंग भी कर लेते थे। ये वाज द मेन स्टार ऑफ बड़ा खाना शोज।
1: और ये
0: एनुअल
1: इम्पोर्टेंट बात है कि उस जमाने में उन्होंने उस दौर के मशहूर गानों को सुन के उनकी धुन पर गाने लिखना शुरू कर दिया।
0: हाँ, जब आर्मी में थे तो बरसात की एक रात लगी थी
1: जी,
0: उन्होंने उस फिल्म को 29 टाइम्स देखा था, 29 टाइम्स। क्यों देखा था, ताकि वो कहानी को घोल के पी जाएं, और फिर उस फिल्म के गाने लिखे थे पूरे।
1: ये उनका रियाज था।
0: वीकेंड पे जो छुट्टी मिलती थी ना, तो जाके फिल्म देखते थे सिटी में, वापस आके बैरक्स में उसी फिल्म के पूरे गाने वापस लिखते थे और सुनाते थे सब। इसीलिए सबने रेकमेंड किया, यार तूने तो यार क्या लिखा यार, ये तो वैसा ही है जैसा हमने फिल्म में देखा था यार, उससे भी अच्छा लिखा तूने यार। तो वो एनकरेजमेंट, पहली बार उनका जो सपना था ना, वो कॉन्क्रीटाइज हुआ कि मैं यहाँ के लिए नहीं बनाऊं, मैं वहां के लिए बनाऊं।
1: तो उन्होंने आर्मी छोड़ी कैसे, बंबई आए, साल कौन सा था,
0: 1950 में छोड़ी, जो भी उनकी सैलरी थी उसको जमा किया, सेविंग्स बंबई 1950, और 3 महीने में वो सारे पैसे खत्म हो गए,
1: बंबई तो शहर ही निराला है,
0: और वापस आर्मी ने को लिया, 6 साल काम किया आर्मी में, सिग्नल्स नहीं, उनको वापस से एक्सेप्ट किया।
1: 1950 में बंबई आए,
0: तीन महीने में
1: वापस चले गए, और वापस आर्मी में
0: हार के, और वो जो टोली ना, उनके सीनियर ने उनको छुट्टियां दी थी, तो दे वो वेलकम्ड हिम, उनको बल्कि सिंपथी हुई कि यार बेचारा अपना सोना मुंडा वापस आ गया है, तो आज को रख लो यार, क्योंकि आपने जो 3 साल काम किया है ना, वहां भी तो नाम कमाया, तो उनको नौकरी मिल गई इमिजिएटली। फिर उनकी शादी हो गई,
1: और शादी भी लखनऊ में हुई।
0: हाँ, शादी लखनऊ में हुई।
1: ये लड़की कैसे मिली,
0: शादी में एक लड़का मिला उनको, तो बोला यार तू यहाँ क्या कर रहा है, वो रावलपिंडी का था, उनकी गली का, तो बोला यार तू इधर क्या कर रहा है, तो बोला मेरी तो शादी है, तेरी शादी है, हाँ तो तू इधर क्या कर, मेरी बहन की शादी है, तो मेरे मम्मी का भाई था वो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: क्योंकि वो दोनों में अरेंज मैरिज होती थी।
1: ये रिश्ता किसने जोड़ा था,
0: उनकी एक बुआ थी, शी वॉज वो पत्री बनाती थी, जन्म पत्री।
1: अच्छा अच्छा,
0: एस्ट्रोलॉजी, शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड में, पोस्ट कार्ड हमारे मेरे पास है, मैंने उसको अभी फाइनली डिस्प्ले किया हॉल में
1: जी,
0: उसको फ्रेम करके रखा हुआ है,

0: उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी बख्शी साहब के, उनके पिताजी को, बाऊजी को, कि मैंने नंद के, नंद उनका घर का नाम था नंद,
1: हाँ आनंद से नंद,
0: नंद नंद इज ऑल्सो नेम फॉर कृष्णा,
1: बिल्कुल
0: कृष्ण भक्त है वो
1: जी।
0: तो नंद के लिए मैंने कुड़ी देखी है लड़की, और वो थोड़ी सावली है, वीटिश कॉम्प्लेक्शन, और थोड़ी भारी है, स्लाइटली प्लम्प, और सबसे कमाल की बात है शी इज अ सीमस्ट्रेस ग्रेजुएशन इन
1: सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छा करती है।
0: हाँ, और सबसे अच्छी, सबसे खास बात है कि वो साइकिल चलाती है।
1: अच्छा साइकिल चलाना बहुत बड़ी खासियत,
0: बहुत बड़ी बात थी लेडीज के लिए, गर्ल के लिए, लड़की साइकिल चलाए वो, अरे ये तो डेक्कन क्वीन है भाई ये तो।
1: वाह वाह वाह वाह वाह। तो बख्शी साहब देखने गए?
0: नहीं नहीं कुछ देखने वाला ना क्या, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सर आप, देखने देखने?
1: सीधे शादी तय,
0: शादी तय, बोलो उनका भाई था, उनको पता नहीं था कि भाई है इसका ये।
1: हाँ ये देखिए ये कमाल की बात है, और यही बख्शी साहब ने आगे चल के गाना लिखा, लड़की साइकिल वाली,
0: बी आर चोपड़ा की फिल्म थी वो।
1: हाँ।

जाने माने गीतकार आनंद बख्शी के जन्मदिन पर ये थी उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत।

बख्शी साहब की यादों का सिलसिला इतना विस्तृत है कि सारी बातें एक एपिसोड में शामिल करना मुमकिन नहीं है। अगले हफ्ते राकेश आनंद बख्शी से बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मिलेंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते शाम 4 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो आप अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों में रक्षा करने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर इस वर्ष 30 जून तक 288 गीगावाट से अधिक हो गई है। आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री नाइक ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2025-26 तक देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $46 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 जारी किया गया था। सिक्किम में नामची जिले में NHPC तीस्तापन बिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपये तथा घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन के इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने पुलिस के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने कहा कि ये सभी दावे झूठे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोप्जो में राष्ट्रपति गॉर्डाना सिंजिवास्को दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठक शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट चरण शुरू किया है। ये देश भर में ज़मीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स की पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की एचएस प्रणॉय और देविका सिहाग का अभियान आज पहले ही दौर में समाप्त हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी धर्मशाला पर अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्मों से भजन।

फिल्मों से भजन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 5:25 होने को है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा मंच।

रेडियो की इन सुरीली तरंगों के साथ सभी युवा दोस्तों का आज के युवा मंच कार्यक्रम में स्वागत है। हाजिर हूँ मैं वंदना रैना आकाशवाणी धर्मशाला से आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच लेकर। और दोस्तों, आज युवा मंच में होगा सैर सपाटा। हिमाचल प्रदेश हमारा प्रदेश और यहाँ का खूबसूरत जिला चंबा सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी गहरी आस्था और अदम्य साहस के लिए भी जाना जाता है। तो आइए आज कार्यक्रम में हम आपको चंबा के उस हिस्से में ले चलें जो शिव भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, आज कार्यक्रम में बात होगी ऐतिहासिक भरमौर और पावन मणिमहेश की। तो हो जाइए तैयार इस रूहानी और रोमांचक सफर के लिए, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये मधुर गीत।

जी श्रोताओ, कार्यक्रम युवा मंच आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से। दोस्तों, चंबा शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर रावी और बुढ़ील नदी की घाटियों के बीच बसा है भरमौर। पुराने समय में इसे ब्रह्मपुरा भी कहा जाता था और यह चंबा रियासत की प्राचीन राजधानी भी रहा है। ऊंचे ऊंचे देवदार के जंगलों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों से घिरा भरमौर गद्दी जनजाति का मूल निवास स्थान है और यहाँ की ठंडी हवाएं और शांत वातावरण शहर की भागदौड़ से दूर एक अनोखा सुकून देते हैं। तो आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत नगमा।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa. जी श्रोताओ, कार्यक्रम युवा मंच में एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं भरमौर की खूबसूरत वादियों में। और भरमौर पहुंचते ही जो जगह सबसे पहले हमारे दिल को छूती है वह है यहाँ के ऐतिहासिक 84 मंदिर। दोस्तों, ये कोई आम मंदिर नहीं है। यहाँ एक ही आंगन में छोटे बड़े 84 मंदिर बने हुए हैं जो लगभग 1400 साल पुराने हैं। और इसमें मणिमहेश शिव मंदिर, माता लक्ष्मा देवी मंदिर और धर्मराज यमराज का अनोखा मंदिर प्रमुख हैं। वास्तुकला और इतिहास के शौकीन युवाओं के लिए ये जगह किसी भी खजाने से कम नहीं है। और श्रोताओ, अब बात करते हैं उस सफर की जो हर युवा के साहस और आस्था की परीक्षा लेता है। जी हाँ, वो है मणिमहेश यात्रा। भरमौर से आगे हडसर से मणिमहेश झील के लिए लगभग 13 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग शुरू होती है। और जो लोग की ये चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं उनके लिए प्रशासन ने विशेष हेलीकॉप्टर सेवा भी चलाई है जो सीधे उन्हें गौरी कुंड में पहुंचाती है और जहां से पवित्र डल झील मात्र 1 किलोमीटर दूर है।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई। सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
1: जी दोस्त,

यहाँ से जब आप सामने खड़े मणिमहेश कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं तो रास्ते की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। मौसम साफ हो तो सूरज की पहली किरण जब कैलाश चोटी पर पड़ती है तो वह किसी चमकती हुई मणि की तरह दिखती है। रोमांच और ट्रैकिंग के शौकीन युवाओं के लिए ये स्थान जो है वो एक मस्ट विजिट प्लेस है।

भारतीय संस्कृति के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ का स्थानीय पहनावा और पारंपरिक गीत संगीत इस घाटी की जान है। सफर के दौरान जब आप यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखते हैं तो पहाड़ों का मज़ा कहीं ना कहीं दोगुना हो जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर हाथ से बुनी हुई ऊनी शॉल और पट्टू भी युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसके साथ ही चंबा का रुमाल और चंबा की कलाकारी और चंबा की चुक, ये सब भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो चलिए इस खूबसूरत संस्कृति को सलाम करते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, चलते चलते बस यही कहेंगे कि अगर आप भी इस यात्रा में जाने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो साथ में गर्म कपड़े, अच्छी ग्रिप वाले जूते और साथ में ज़रूरी दवाइयाँ ज़रूर लेके जाएं। और इसके साथ ही प्रकृति ने हमें जो अनमोल तोहफा दिया है उसकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो यात्रा के दौरान कचरा ना फैलाएं और पहाड़ों को साफ करने में प्रशासन की मदद करें। तो दोस्तों, आज के युवा मंच कार्यक्रम में भरमौर की प्राचीन गलियों और मणिमहेश के पावन शिखरों का हमारा ये सफर

युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 5:55 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सुहाने गीतों का आनंद उठाइए कार्यक्रम सुरमई सांझ में। शाम 6:05 पर और 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मौजा कराइंदिया का। कार्यक्रम किसानवाणी हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:10 पर। रात्रि 8:00 संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी और 8:30 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर बाद शाम 6 बजे और शाम 7:45 पर। समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज 8:09 रात 9 बजे आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे मुकेश के गाए हुए सदाबहार नगमे। और रात 9:30 पर आनंद उठाइए लोकगीतों के कार्यक्रम धाम गीतादि का। मानसून सत्र 2026 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। समय रहेगा रात्रि 10 बजे। और अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे कल सुबह 6:05 पर। 6:40 का समय है श्री रामचरित मानस गान का। मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुबह सुहानी प्रसारित किया जाएगा कल सुबह 7:10 पर। और लोकगीतों का आनंद उठाइए कार्यक्रम शुभ प्रयाग में समय है कल प्रातः 7:40। गाने सुहाने ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे कल प्रातः 8:30 पर और कल सुबह 9 बजे का समय है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि का। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 हुए हैं। थोड़ी ही देर में यानी शाम 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने व जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से एक अनूठी पहल भोजन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर कहा कि इसका उद्देश्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बीच की दूरी को खत्म करना है। इस पहल के तहत आज मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के साथ पच्छाद और चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने संवाद किया। इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि संगठन ही सरकार का मुख्य आधार होता है और सभी से मिलने वाली प्रत्यक्ष फीडबैक के आधार पर जनहित की भावी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन किया जाएगा।
1: हर एक विधानसभा क्षेत्र से 50 से 60 कार्यकर्ताओं के बीच संवाद करेंगे, जमीनी स्तर पर फीडबैक लेकर अगली योजनाओं को अमलीजामा पहना सकते। संगठन से ही सरकार बनती है और संगठन के मजबूत कार्यकर्ता बूथ प्रभारी जब हमारे साथ आकर चर्चा करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कई बातें सामने आएगी। कार्यकर्ता उस विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक दे, सरकार के कार्यक्रमों का जो धरातल पर क्या असर हो रहा है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, यही मेरी एक मंशा है।
0: मुख्यमंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि मंत्रालय की किसी भी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में एक भी सरकारी अस्पताल आधारित नशा मुक्ति केंद्र संचालित नहीं है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन द्वारा हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल आधारित नशा मुक्ति केंद्र सुविधाओं को लेकर संसद में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। प्रताप राव जाधव ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से नया नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र को कोई प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया है। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुछ नशा उपचार सुविधाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमालयी राज्यों के संवेदनशील पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस व दीर्घकालिक कदम उठा रही है। लोकसभा में सांसद सुरेश कश्यप द्वारा इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू किए हैं, जिनमें विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन के अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश के बद्दी, डमटाल, कालाअंब, नालागढ़, पांवटा साहिब, परवाणु और सुंदरनगर सहित 7 गैर प्राप्ति शहरों के लिए विशेष कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत हिमाचल में 250 स्थानों पर जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है। प्रदेश में अधिकांश भागों में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और कई स्थानों पर भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कांगड़ा जिला में शाहपुर उपमंडल की बोह घाटी के स्पैड़ा और गढ़मुगुन गांव में भारी वर्षा से हुए भूस्खलन से 6 मकान पूरी तरह बह गए हैं। हालांकि अब तक किसी भी प्रकार की जानी नुकसान की सूचना नहीं है। जिला उपायुक्त हेमराज

0: ने बताया कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और उन्हें तत्काल राहत उपलब्ध करवाई जा रही है। भारी बारिश के चलते क्षेत्र में सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है। उन्होंने लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने का आग्रह किया है।
1: अर्ली मॉर्निंग से भारी बारिश पूरे जिले में चली थी और जो हमारे पास जो लॉस की रिपोर्ट आई है वो वैली से आई, जहाँ के पैडू और पैड़ा दोनों में नुकसान घरों का हुआ है, लेकिन हमारे लिए राहत की बात है कि कोई जानी नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ है। लोगों को फौरी राहत तुरंत हम करेंगे और जो हैं वो टेम्पररी शेल्टरों में वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
0: इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग ने पानी के व्यावसायिक और घरेलू कनेक्शनों के दुरुपयोग पर सख्ती शुरू कर दी है। विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने कहा कि जिन व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने पानी के कनेक्शनों पर मीटर नहीं लगवाए हैं वे तत्काल मीटर लगवा लें, अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से पानी के बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की जलापूर्ति बंद कर दी जाएगी।
2: जिनके कमर्शियल कनेक्शन है वो अपने मीटर जरूर लगवा लें और मैं लोगों से अपील करता हूं कि जिनके भी कमर्शियल कनेक्शन है, चाहे वो गांव में है चाहे वो शहर में है, अगर उनकी बिलों की पेंडेंसी है वो बिल की जमा करवा दें।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुरमई सांझ। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कश्मीर की कली फिल्म के गीत के साथ, आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। गीतकार SH बिहारी और संगीतकार OP नैयर।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
3: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
4: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
3: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
5: Nexa. कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।
6: दीवाना

सुरमई सांझी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से। आवाज है किशोर कुमार की, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है आरडी वर्मा ने।

सुरमई सांझ ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 6:30 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजा गराई दिया।

0: कार्यक्रम मोजा ग्राएं दियां सुनने वाले सारे किसान साथियों जो कने बाकी सुनने वाले श्रोतियों जो सैकटरी दी राम राम कने किसान साथियों टियाले प्रसाद दे दिन चुन्नी ताई ते चुन्नी ताई तुहानूं जो भी राम राम
1: राम राम जी दो हाथ जोड़ के तुहानूं जो भी राम राम कने सारे किसान कने पशु पालक भाइयों जो राम राम
0: दिखा किसान साथी अहाँ जल बटियाले पर आते हैं तो अहाँ वास्ते कोई ना कोई जी जानकारी अहाँ लेके आते हैं कने जी थोड़े वास्ते कमे की भी होंगी है कने अज भी अहाँ जी जानकारी तुम वास्ते लेके आए उन है राष्ट्रीय ई कृषि बाजार के बारे में।
1: हाँ
0: तो राष्ट्रीय ई कृषि बाजार जरा एक ऑनलाइन कृषि व्यापार का मंच है जोड़ा कि देश दिया विभिन्न कृषि मंडियां जो एक डिजिटल नैटवर्क के कने जोड़ने का काम करता है। इसका उद्देश्य यह है कि किसान व्यापारी कने खरीददार एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आई करी अपनी कृषि का जोड़ा व्यापार है करी सकते हैं कने इस व्यवस्था च मंडियां जो तकनीक इस व्यवस्था में जोड़ा मंडियां जो तकनीक कने जोड़िया जाता है ताकि बोली लगाने वाले अपनी प्रक्रिया जो अधिक पारदर्शी जोड़ा बनाई सकन कने किसानों जो उपज का अच्छा मूल्य जोड़ा मिली सके। किसान साथियों पहले अधिकतर किसानों की उपज जोड़ा केवल स्थानीय मंडियां तक ही रही आती ही कने तिना उत्थों ही बेचना पौंदी ही कने कई बार क्या होंदा हा कि खरीदार घट होने के कारण जोड़ा तिना उचित मूल्य नहीं मिली पाता था तो कुछ कुछ नापतोल या बोली सकते कि बोली की पारदर्शिता भी कमी होंगी ही तो भुगतान भी देरी आती ही तो यह बड़ी समस्या जड़ियाँ पहले आनिया थी तो इन सारिया चुनौतियों को घट करने वास्ते कृषि विभाग की तरफ से राष्ट्रीय ई कृषि बाजार जोड़ा है निर्माण जो है किया गया था।
2: प्लेटफॉर्म ने जोड़ी जा चुके हैं। इस साल राष्ट्रीय कृषि बाजार पर 10 होर वस्तुआं जो इस व्यापार ने कृषि मंत्रालय ने जोड़ी दी है यानी कि परमिशन दे दी है कने व्यापार योग्य वस्तुआं की कुल संख्या 247 हो गई है जिड़ी कि 10 वस्तुएं शामिल की सैन तुलसी सुखे पत्ते बेसन चने का आटा गेहूं का आटा चना सत्तू भुने हुए चने का आटा सिंघाड़े का आटा हींग सूखे मेथी के पत्ते बेबीकॉर्न ड्रैगन फ्रूट कने सिंघाड़ा वगैरह
0: जी। किसान साथी दिखा इस प्रणाली के अंतर्गत जरा पंजीकृत कृषि मंडियां जी डिजिटल प्लेटफॉर्म कने जुड़िया होंगे ने कने अहां दे किसानों जो उपज जरा मंडी तक लियाना पौंदी है ते तो अहां दी गुणवत्ता का परीक्षण भी होंदा है कने इस ते बाद खरीदार जरा डिजिटल माध्यम कने बोली लगांदे ने प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण जरा मूल्य

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: किसान साथी हो जियां कि तुहानूं सारे पता कि अजकल बरसात लगी हो कहिंदा बरसाती च पानी दी जिहड़ी आयात है बड़ी ज़्यादा होंदी है साढ़े वाल कहिंदा पानी जिहड़ा सहां दे जीवन का आधार भी है कहिंदा बरखा का पानी जिहड़ा सहां प्रकृति द्वारा दित्या गया सब तो शुद्ध कहिंदा अमुल्य उपहार भी है। अज बढ़ती आबादी घटते भूजल स्तर कहिंदा बदलते मौसम के कारण कई क्षेत्रों में पानी की समस्या जिहड़ी सहां गंभीर होंदी जा रही है। तो इस समय में हाँ जो क्या करना चाहिए कि वर्षा का जल जरा संग्रह करना चाहिए जिहड़ा कि एक सरल सस्ता कहना प्रभावी उपाय है जिसे अहां रेन वाटर हारवैसटिंग भी गलांदे ने। यदि अहां अपने घर च स्कूलों च कार्यालयों च कने खेतों च वर्षा का जल संचयन की व्यवस्था करन तब बारिश का पानी व्यर्थ बहने की बजाय जरा सह सुरक्षित किया जा सकता जिस के कारण अहां का जो भूजल स्तर है सह भी बधी आना कने सिंचाई वास्ते पानी भी उपलब्ध रहना पेयजल पर भी हाँ का दबाव जरा घट जाना कने सुखे सारिया जी परिस्थितियां आदियाँ इन्होंने तिना का भी सो सामना करने मदद मिलनी। किसान अपने खेतों में छोटे तालाब मेड़बंदी कने जल संरक्षण करी करी संचाए संरचनाएं बनाई करी वर्षा का जल जरा बेहतर उपयोग करी सकते हैं कने कुथी कुथी शहरी क्षेत्रों से भी छतों का जरा पानी अहाँ मिलता है तो किसी भी हाँ टैंकियों से या रिचार्ज बिटा च एकत्र करी करी पानी की बचत जी की जा सकती है। याद रखा कि पानी की हर एक बूंद जी से अनमोल है कने यदि अज अहाँ पानी का संरक्षण कर गए तो आने वाली पीढ़ियों जो जल संकट का सामना जरा नहीं करना पौना कने वह अहाँ सारे मिली करी जल संरक्षण की जी सह आदत बना ताकि इसे अच्छे तरीके ने संचय किया जा सके।
4: जी जी जी तुम ठीक गलाया कि जल ही जीवन है जल है तो कल है।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
0: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
3: किसान साथी अहां गल करा रहे बरसात के मौसम जल संग्रह की, पर बरसात के मौसम अहें और भी बड़ी जड़ियाँ सावधानियां बरतना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम आपू कने हरियाली, ठंडी हवावां, प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे भी लेके आता है। पहाड़ों में फैले बदल, झरने, कने हरे भरे नज़ारे हर कुछ अपनी तरफ जो आकर्षित करते हैं, लेकिन इस मौसम में कई बार गंभीर प्राकृतिक आपदा आने का भी खतरा रहता है। तो इस वास्ते बारिश के मौसम पहाड़ी कने दुर्गम स्थानों की यात्रा करने से अहें बचना चाहिए। लगातार होने वाली बारिश जिहड़ा सी कई बारी पहाड़ी क्षेत्रां च भूस्खलन, चट्टानां दा गिरना, कने अचानक बाढ़ या बदल फटने या सड़कां दे धसने दा कारण बनी सकदियां, कने इन्हां घटनां दे कारण अहें भी नुकसान हो सकदा है। अगर तुहाडी यात्रा जिहड़ी सी बड़ी जरूरी नहीं है, तो तुहें अपनी यात्रा जिहड़ी सी बरखा दे मौसम ते कारण जिहड़ी टाली देना चाहीदी, कने उस ते कुछ समय बाद करना चाहीदी। यात्रा के दौरान अहें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अहें नदी नालों के नेड़े नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटा जिहा दिखने वाला नाला भी है, कई बार कालू तेज़ बहाव का पानी कहने भरू जाए, अहें पता नहीं लगता। खास करके बरखा के मौसम जल अह यात्रा करा दे होंगे, तो वाहन चलाते वक्त भी अहें जी सावधानियां बरतना चाहिए। सड़कों के किनारे ज़्यादा फिसलन होंगी है, इस वास्ते तेज़ गति अहें अपनी वाहन जरा नहीं चलाना चाहिए, कहने सुरक्षित दूरी बनाई कर भी चलना चाहिए, कहने ना ही तो ओवरटेक करना चाहिए। किसान साथियों अहें यात्रा पर जाने से पहले आवश्यक दवाइया, पीने का पानी, टार्च, मोबाइल फोन, पावर बैंक, कने प्राथमिक उपचार का समान जिहड़ा सा कन्ने रखना चाहिए। कने सब तो वड्डी गल है कि तुहां कुत्थे भी यात्रा करना जा रहे तो अपने परिचित लोगों जो दसी के जा, घरवाले दसी के जा कि तुहां कुत्थों चले, कने कुछ रस्ते तुहां चले, ताकि तुहांदी जानकारी तुहां दे घरवाले तक रहे,
4: कने हो सके तो संवेदनशील इलाकों पर जिथों पेड़ गिरा दे होने, बिजली के खंभे गिरने या शंका, उत्थों भी ना जान।
3: जी बिल्कुल। तो किसान साथियों इसी जानकारी कने फ्री से सुन दे एक लोकगीत, पर पहले सुनना हाँ एक संदेश।
5: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।

0: किसान साथियों इसी लोकगीत का नहाते जाने का वक्त हो ही है, पर जानते पहले दस दीजिए कि तकनीकी सहयोग रहा विपिन कुमार दा करना है, कार्यक्रम प्रस्तुत करता थे जितेंद्र पाल सिंह, हुन दुनिया दिया इजाजत।
1: अच्छा जी, जय हिंद।

0: मौजा कराई दिया। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 7 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया। अब ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगी। UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी, महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड NHPC ने कहा है कि सिक्किम के नामची जिले के स्मरदुंग स्थित NHPC तीस्ता छठा चरण जल विद्युत परियोजना में हुई घटना के कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी। NHPC ने आज एक बयान में कहा कि सुरंग के अंदर 25 कर्मी फंसे थे, जिसमें से अब तक 11 की मौत हो चुकी है। NHPC ने बताया कि परियोजना दल जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चल रहे बचाव कार्यों में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजोनोव्स्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले स्कोपिये में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास विला वोडने में राष्ट्रपति मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कल से फिलीपींस के मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। आसियान से जुड़ी बैठकों के

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे किसान साथियों जो कने बाकी सुनने वाले सारे श्रोतियों जो सेक्रेटरी दी राम राम किसान साथियों ट्याले प्रसाद दे दिन चुनीताई तो चुनीताई तुहानू वी राम राम
2: राम राम कने सारे सुनने वाले श्रोतियों जो साड़ी दो हाथ जोड़ी के राम राम
1: जी। किसान साथी दिखा ट्याले पर आते ना तो कोई ना कोई जानकारी कोई ना कोई योजना की जानकारी या कोई और गलबात वास्ते लेके आते हैं कि ने अज अह जी गल करनी है सह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। अज जी अह गल करा दें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में तो यह जी योजना है सह प्रधानमंत्री और ने 2016 चलाई थी जिस दे कारण देश की करोड़ों महिलाओं का जीवन जरा सह बड़ा अचानक बदली या बदलाव लेके आया आई ये योजना। यह केवल एक गैस कनैक्शन की योजना नहीं है बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य सम्मान समय की बचत कने स्वच्छ जीवन से जुड़िया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। किसान साथियों कई वर्ष पहले तक जरा अहां जे ग्रां से अधिकांश परिवार खाना बनाने वास्ते लकड़ी का कने उपले का या कोयले का उपयोग जरा से करते थे कने खाना बनाते वक्त जरा धुआं निकलता हाँ तो कारण जरा महिला कने बच्चों के स्वास्थ्य पर जरा गंभीर असर जरा पाता था। आँखी विच जलन सांस लेने ते परेशानी खांसी कने फेफड़िया जुड़िया कई बीमारियां जी आम गलती हुई हो। तो इस तो अलावा महिलाओं जो रोज़ लकड़ी कट्ठे करने वास्ते कई कई घंटे तक रह जंगलों भी जाना पौंदा हा तो इन सारी समस्या जो ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत जी की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर कने पात्र परिवार जो महिला जो LPG कनैक्शन उपलब्ध कराना है ताकि धुएं से मुक्त रहन कने सुरक्षित रसोई विच खाना बनाई सकन।
2: कने तुसां देखा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना साड़ी भारत सरकार गरीब परिवारों की महिला जो मुफ्त LPG कनैक्शन प्रदान करने की एक कल्याणकारी पहल की है जिस दे तहत 1600 रुपये की नगद सहायता जिहड़ी कि 14.2 किलोग्राम सिलेंडर वास्ते है कने पहला मुफ्त रिफिल सिलेंडर कने एक मुफ्त गैस चूल्हा भी दिता जाता है। कने हाल ही नियमों के अनुसार हर साल लाभार्थियों जो अधिकतम 4 गैस सिलेंडर पर सबसिडी मिलती है। अगर तुसा गल करिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना साड़ी महिलाओं का इसका लाभ क्या उठाई सकती हैं तो उन्होंने जो इन शर्तों जो पूरा करना बहुत जरूरी है। पहली तो कि आवेदक की उम्र घट्ट घट 18 साल होनी चाहिए कने सह एक महिला ही होनी चाहिए। दूसरी कि उस परिवार की किसी भी तेल विपणन कंपनी या होर किसी LPG कनैक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरी गल कि पात्रता वास्ते आवेदक BPL परिवार का यानी कि अंत्योदय या अन्न योजना या फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभार्थी होए ताई सह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ ले सकता है। कने किसान भाइयों कने भैनों अगर असं गल करिए कि पात्रता दे वास्ते आवेदन की प्रक्रिया क्या है तो तुसा ऑनलाइन भी कने ऑफलाइन भी दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया वास्ते सरकार की आधिकारिक वैबसाइट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वैबसाइट पर जाई करके उज्ज्वला 2.0 कनैक्शन पर क्लिक करके उसकी पसंद से गैस वितरक यानी कि इंडेन होई या भारत गैस होई या HP गैस जो चुनी के ऑनलाइन फॉर्म तुसा भरी सकते हैं। कने अगर तुसा ऑफलाइन प्रक्रिया जो अपनी नज़दीकी गैस एजेंसी पर जाई के कने उज्ज्वला योजना का फॉर्म

0: किसान साथी लोग गीते बात फ्री ते वक्त है जानकारी देखने जानकारी जड़ी से उन्नत किसान दे बारे भी है ते सब्जियां दी किन्या है करा देन खेती बाड़ी कने किन्या अपनी फसलां उगा देन ता ओ आ सुन देने जानकारी कने ना कने गलबात कीती हां दे टियाले दे किसान मित्र हो ना ता ओ सुन दे गलबात।
1: किसान साथियों, जियां कि तुहां जानदे हन कि कार्यक्रम किसान वाणी च अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए, चाहे वो कृषि वैज्ञानिकां द्वारा दित्ती गई जानकारी होवे या फिर उन्नत किसानां कन्नै कीती गई गलबात होवे। तां अज मिंजो मौका मिला कन्नै मैं इस वेले जेहड़ा सा अज गया है तहसील देहरा च, देहरा हरिपुर च, ग्राएं दा नां है बकलेड़, ये बिलासपुरे च पौंदा। तां इत्थों एक उन्नत किसान जेहड़े सा इस वेले मेरे कन्नै जेहड़े से जुड़ा करते हैं ओवा करते हैं इन्हां कन्नै गलबात। राम राम जी।
2: राम राम
1: जी, सबसे पहले अपना नाम दसा।
2: मेरा नाम मनजीत।
1: तां मनजीत जी, तुहां दा जेहड़ा ये ग्रां है ये बकलेड़ है, इत्थों जी मैं पुज्जा था, मेरा तो पूरा एक जिसे बोलते ना कि मन खुश हो गया, जेहड़ा ये रकबा ना खेती दा
2: हाँ जी
1: तुहां दा, इत्थों जेहड़ी सा पूरी मौज लगाई दी हो। हाली अगे जाई के जेहड़ा सा पता नहीं क्या नजारा, पर इत्थों ते जेहड़ा सा मैं कुल मिलाई के बोली सकदा कि आस पास दा जेहड़ा भी इलाका है ना, इस विच जेहड़े सा तुहां एक जेहड़े सा एक बड़े अच्छे तरीके ना जेहड़े सा तुहां खेती करा करदे हन, कहना अखे वखे आणिया नेड़े तेड़े आणे जेहड़े सा तुहां एक प्रेरणा जेहड़ा सा पूरे एक स्रोत जेहड़े सा बनी चुके हो ने इस वेले। अच्छा, तां मनजीत जी कितनी की जमीन है तुहां वाल?
2: साढ़े आला है कोई 250
1: बड़ी भारी जमीन होंगी 250, ये सारी खेती काबिल है?
2: हाँ, पहले नहीं खेती दे काबिल नहीं थे, पर पे बनाना पे ये खेती दे काबिल, मेहनत करना पे,
1: हाँ जी,
2: फिर जेसीबी नाल मतलब के साफ सफाई करना पे, कुछ मजदूरा नाल करना पे, मतलब के ताए हुई खेती दे काबिल नहीं था, खेती दे काबिल नहीं था।
1: अच्छा, ये जड़ा जिस तो हाँ इस वेले काम करा कर दे, कितने की कनाल है कुल ले?
2: ये लगभग 80-85 कनाल है।
1: तो क्या क्या लगांदे इस चीज में तो? हाँ
2: इस तो मौसम की सब्जी में सारी लगा जियां हूँ मतलब के सर्दियां दी है तो देख हरा धनिया लाइती है,
1: अच्छा
2: फिर मूली, सलगम, इस चिकंदर, गोभी, तीन
1: अच्छा
2: चार प्रकार की गोभी है, ब्रोकली है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, फिर वो गठ गोभी है, सारी ये वरायटियां लगाई है। पहले जिस वक्त मैं इसकी साफ सफाई की ना तो मैं पहली फसल जी है तो मैं मक्की दी लगाई।
1: अच्छा जदों तो हाँ ये रकबा यानी कि जदों हाँ आबाद किया है
2: हाँ
1: तदों
2: जी
1: पहली फसल छलियां दी वाई?
2: छलियां दी बाई
1: अच्छा
2: मैं जियां इस दी तैयारी कीती तां छलियां दी बाई कहने मैं जालू सह झुड़िया ना बड़ा दा हा तां मिंजो लोक हसना भी लग
1: अच्छा
2: फौजी बोलिया दो दो नौकरियां करी के

0: आए कहना हूं झूड़िया ने ली पे कुल ना हो
1: अच्छा, यानी कि तो हाँ पेंशन होने के बाद ये रकबा तो हाँ जेड़ा से आबाद किता ना
0: आबाद
1: खेती
0: कितना
1: जो।
0: ज्यादा मतलब के इं बंदे है पहले थोड़ी बहुती पांच चार बोरियां निकालते है। फिर ही मैं जिस वक्त मतलब कि इसकी साफ सफाई की तो पहली फसल मैं मक्की बीजी कहना 40 बोरियां कढ़िया छलियां। उसके बाद मैं दूई गेहूं दी लगाई तो
1: अच्छा
0: 70 बोरियां मैं कणक दियां कढ़िया। फिर
1: अच्छा
0: ही मैं जो बंदे भी मिली ये मतलब के काम करने वाले
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: फिर मैं सब्जी शुरू करी थी। तो सब्जी मैं सीजन दी तकरीबन कोई ना लगाइए नहीं तो सारी सब्जी लगाते हैं।
1: अच्छा, मनजीत जी जियां गल करते ना, जियां इतना भरी तो हाँ खेती का काम करते हैं, ये जेड़े बीज होंगे कुत्ते लेंदे तो हाँ, ये
0: बीज अहां नदौने ते लेंदे किसान बीज भंडार है जिथों
1: प्राइवेट दुकान है कोई या सरकारी है?
0: प्राइवेट है दुकान
1: अच्छा
0: जिथों ते लेंदे कुछ सहजो ना एग्रीकल्चर वाले भी दिंदे मतलब के फिर आत्मा वाले भी
1: अच्छा ब्लॉक वाले है ना।
0: हाँ सह भी ब्लॉक वाले नहीं तो पहले तो सह भी नहीं जानते इतू जंगल च कुछ आना साढ़े बोलते कौन होगा इतू ना आता इतू कुछ सब्जी लाने बोलिया। पहली बारी जलू मैं कणक लगे ना गुआने ताए मैं बोलिया ट्रैक्टर वाले बोलना लगे यार मनजीते दे घर कणका गाना जाना बोलिया यार जिथू कुतू कणक होंगी जिथू धोवा गाना जाना बोलिया जिथू पकलेड़ा कुतू कणक होंगी बोलिया चला मैं तुझे दसा 70 बोरियां
1: हाँ
0: कड़िया उस बंदे बोलिया ला आता 2 दिन ट्रैक्टर ने मतलब के थ्रैशिंग होंगी रही।
1: बड़ा मुश्किल है कहना, एक बड़ा एक मैना रखता कि
0: मैं
1: सत्तर।
0: ना रखदा
1: हाँ जी
0: क्योंकि हर उजाड़ है इतू चौई पासे थे मतलब के कोई ये नहीं पे जेड़ी जानवर ने नहीं मतलब क्योंकि लोग आजकल फसल बाद ने पक्षी भी पूरे आई के इतू ही बैठते।
1: देखा भाई, अखे बखे चाओ पासे जड़ा सा जंगल है,
0: हाँ जी
1: कहने जानवर जड़ा सा चौं कोने ते जड़ा सा आई सकता है
0: आई
1: इतू, ये
0: सकता
1: तू करे बैठे जी है। मैं देखा करता कि निगरानी वो दूर तक रो याद, ये तो है ना।
0: हाँ जी या कुत्ते भी मैं खरे जोरे वाले रखे हो
1: अच्छा
0: जर्मन सैफर रखे हो
1: अच्छा
0: इससे पहले मैं नाइंदा अमेरिकन बुली था ले आया सह बेचारा लेके बाहर चला गया हाँ तो खत्म हुई है कुत्ता है नहीं
1: अच्छा
0: तो बड़ा जबरदस्त कुत्ता है बांदरे बूंदरे पकड़ लिया एक बारी तो बांदरे छड़ता नहीं था मुरकने ते बिना तो ये भी कुत्ते बड़े जोरे वाले ने
1: हाँ जी
0: इना मेरे नाइंदा इतू पिछले साल मैं ये गोभी लगाई खरगोश ऐसा होंगे कि जिसे फुल गोभी हुई
1: अच्छा
0: खांदा और
1: अच्छा
0: कैसी यो नहीं खाना जे फूल गोभी खानी तो मतलब जिन्या हाँ पौधे लगाए दे ये तो रोज से 50-60 पौधे ना खाई जान तो तुहा लगा हिसाब पे 50 पौधे यदि रोज नाइंदा खरगोश खान तो से कितना साड़ा नुकसान हो। एक से पौधा यदि मतलब के से 3 या 4 रुपए का भी था या 5 रुपए का भी था जो पौधा जिन्हें देने थे तो
1: हाँ जी
0: से साड़ कितना 50 पौधे का कितना नुकसान होया एक दिन च 50 खाई जान। फिर ये लेते मैं मुर्गे वाली जाली लेते तो जिसने कंट्रोल किया
1: अच्छा
0: कने सह खरगोश ऐसा होंगे जिन्हें ब्रोकली नहीं खानी पत्ता गोभी भी नहीं खानी कने दुई गठ गोभी भी नहीं खानी जिन्हें सिर्फ फूल गोभी खानी जिसे इतना पता जमदे पौधे आह लगांगे जिन्हें सही तोपी के खाना
1: अच्छा
0: फूल गोभी का पत्ता ही खाना जिन्हें
1: नहीं तो दुए बूटे कैसे कड़वे वगैरह होंगे होंगे
0: पता
1: तान
0: नहीं क्या ना आंदा मतलब कि जिसे जा क्या ना आंदा जिन्हें मतलब
1: पहचान हुई है ताली
0: पहचान हुई
1: की चीज खानी है।
0: हाँ बस मतलब कि वही खानी फूल गोभी है।
1: अच्छा जी, इतनी तो हाँ दस्या कि छलियां कढ़िया पहली बारी,
0: हाँ जी
1: इससे बाद 70 बोरियां कणकियां,
0: हाँ जी
1: अनाज तो खूब बेचे होना फिर।
0: हाँ तो सर कणक फिर मैं मौके दी बेची थी 50 बोरियां मैं तो तुम लगा लिया साहब 2000 दे हिसाबे ने ली है कोई 2200 दे हिसाबे ने भी ली 2000 दे हिसाबे ने भी तभी सीधा ला इंदा 1 लाख रुपया हुई 50 बोरियां दा 1 लाख रुपया हुई है बाकी कम से कम ला इंदा 40-50 हजार दी तूड़ी बेची मैं
1: अच्छा
0: तूड़ी बेची थी और कुछ तूड़ी रही गई लोकल मतलब के सोच नहीं यार पकलेड़ा कुछ तूड़ी होनी
1: अच्छा जी, सब्जी है फिर कुछ बेच दे से नहीं के।
0: आहा इसियो नगरोटा सूरिया मार्केट च
1: हाँ
0: कहने लंज।
1: अच्छा,
0: हाँ जी
1: आपू जानते होने लेके है ना।
0: आपू जिस टाइम आहा ये काम शुरू किता उसी टाइम आहा टेम्पू खरीद लिया हा क्योंकि साहा टेम्पू नहीं था खरीदया कहने ना हा लिताए खरीदना हा आहा एक बंदे फोन किता पे भाई साड़ी सब्जी लेके जाना था तू कितने पैसे लेंगा तेरा ज्यादा ते ज्यादा हम 2 घंटे लेंगे
1: हाँ
0: तू 2 घंटे के कितने पैसे लेगा बोला 1000 रुपया।
1: हाँ जी
0: आहा बोलिया रहा इसियो मतलब के 1000 रुपया इसियो देना रोजे तो 30 हजार बनी जाए इदा ही 12 महीने इसियो ले जाए तो 12 ते 36
1: हाँ
0: 3.5 लाख इदा बनी जा
1: हाँ जी
0: 3,60,000 ते इस ते अपने टेम्पू कह नहीं ले लीए। आहा उसी टाइम कंपनी फोन किया और वो ट्रायल वास्ते सो टेम्पू लेके आए और
1: अच्छा
0: हमने उसी टाइम सिलेक्ट कर दिया कि ये टेम्पू हमारे को दे जाओ अभी
1: अच्छा
0: और उसी टाइम उसकी पेमेंट दे दी
1: हाँ जी
0: और टेम्पू दे गए वो।
1: अच्छा, इधर अलावा मैं दिखा करता कि मशीनरी तो लगभग तो हाँ अपनी रखी जी है, ट्रैक्टर भी है तो हाँ वाल ये
0: हाँ जी
1: जी है, एक ट्रैक्टर वाला आल होता एक आम आल जरा।
0: एक रोटावेटर है
1: अच्छा

0: कने एक कल्टीवेटर
1: तो
0: है।
1: ये जड़ा ये रूटावेटर है,
0: हाँ
1: रूटावेटर ना कना कल्टीवेटर ना क्या फर्क पौंदा जी, ये बाणी हो बता जमीन।
0: रूटावेटर दा तो ये है ना भी जिन्हें पूरी चीज जो ना
1: हाँ जी
0: मतलब के इदा बनाए देना साग जिन्हें मतलब के ना हर चीज कुतर देनी लक्कड़
1: अच्छा
0: पत्थर माड़ा मोटा पत्थर जेड़ा भी सब ही
1: हाँ,
0: उन्हें तोड़ी ताड़ी के मिट्टी बनाए देना पाउडर कर देना
1: पूरी
0: जिदा
1: ये भुरभुरी में ना।
0: भूर भूरी
1: हाँ
0: जमीन कर
1: जी
0: दे। नंबर दो तो हाँ ना आंदा यदि देखा कणक हाँ रूटावेटर नाल बांधे कने इथू जेड़ा भी साड़ा कोई किसान मतलब के संजो बोलता तो हाँ जिसे रूटावेटर नाल ही कणक बाही के देंदे कहना
1: अच्छा
0: हाँ जी नहीं सलाह भी ये देंदे पे कणक बाणी तो रूटावेटर ने बाणी कहना हाँ जो इस सब्जी ताई ताई इतना फायदेमंद है रूटावेटर संजो ये ट्रायल वास्ते पहले ले आए थे कंपनी वाले हाँ फोन किया जी ने भी हाँ रूटावेटर चाहिए इसे सोनालिका कंपनी वाले लेके आए फिर जिन्हें बोलिया पे नहीं अहां तो हाँ मतलब के ना एक दिन जिन्हें अपना ड्राइवर भेजे अपना ट्रैक्टर भेजे डेमो कहना रूटावेटर भी फिर बोलिया तो हाँ आंदा एक दिन बाई के देखा इथू रूटावेटर संजो लाई के दिखे मेरे खेतों से इतों
1: हाँ जी
0: कहना संजो बड़ा अच्छा लगा फिर अहां जल हुई जिन्हें दी बुकिंग कराई थी अहां बोलिया फिर संजो ना आंदा ये रूटावेटर आनी के दिया फिर
1: अच्छा
0: जिदाड़ी जिन्हें लिया हा 1,51,000 ते इथू कोई रूटावेटर ने नहीं मैं तारा च लिया हा सर रूटावेटर इस नगरोटा सूरिया में कोई रूटावेटर नहीं था दे रहे तक फिर ता जिस दा मैं खेती बाई क्या हुआ ना सह बंदा दूसरे ट्रैक्टर दिखे ही ना बोले भाई तू है आना मैं तो हो गया तंग मेरा तो अपना ही कम नहीं
1: हाँ
0: चलता कहना सब्जी लगानी होंगी कोई कुछ लगाना तो मतलब के साड़ा टाइम नहीं होंगे तो काम करने जोगा।
1: पानी का जरा तो जुगाड़ किया है,
0: हाँ
1: देखा मैं बोर कितिया तो हाँ
0: हाँ जी
1: किता है, देखा इसी इलाके से नहीं लगा कि दूर दूर तक पानी का कोई जरा सा ना निशान नहीं है, लेकिन तो है तू पानी की पूरी मोज खोली थी।
0: मैं बोलिया पे देखो अंदर ना गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है बोलिया डिठे सभ्य थान
1: हाँ
0: नहीं
1: जी
0: तुद दिया जिथू पे तू बसे जिदिया थान कोई जिदा मुकाबला नहीं कर सकता ये मतलब के ना मैं तो बोलता पता नहीं हूं ना जी वजह नाल इतनी रौनक है मतलब के कने देखा पानी इथू थले ना आंदा बोर किते आधे इंच ते ज्यादा पानी नहीं कुसी दा
1: अच्छा
0: कने इस कम से कम 5 इंच पानी है
1: हाँ
0: और जून महीने रात दिन चली रहा मेरा बोर मतलब कि सांझो पानी देना पौंदा हा राती 12-1-1 बजे तक पानी देना भ्यागा चलानी मोटर तो राती बंद करनी
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: दूई चलानी फिरी
1: दो न कितने हो।
0: हाँ बोर दो की है मैंने
1: अच्छा
0: लेकिन ये बोर जो है ना इसमें फेंकना टैंक में ना फिर ये
1: अच्छा
0: टैंक के अंदर अलग है मोटर
1: अच्छा इससे कितना के खर्चा आई है, चलो तो हाँ बोर करवाया है
0: आइया कोई 2,00,000
1: अपना ही कितना है सारा ही।
0: नहीं गवर्नमेंट ने 1,10,000 रुपया सब्सिडी दी थी मेरे को
1: कितना के बिल आई अंदा
0: इदा सर कोई ज्यादा से ज्यादा कोई 300-400 रुपया
1: अच्छा जड़ी तो हाँ मैं दिखा करता कि तो हाँ जड़ी अपनी जमीन ने ये जड़ी बाड़बंदी की थी यो है,
0: हाँ जी
1: ये भी आपको ही कितनी ही की विभाग द्वारा
0: नहीं नहीं ये
1: कितना के खर्चा आई है इस।
0: ईसा आइया 1,35,000 दी तार आई थी बाकी पोल पाल आए थे 50-60 हज़ार दे पोल आए थे
1: अच्छा
0: बाकी लेबर रखा तो हाँ लेबर करने लगाई थी
1: हाँ
0: हाँ
1: जी
0: फिर मतलब के पूरी कंप्लीट
1: हाँ
0: हुई
1: ताई दिखा ना देखा इसी इलाके च दिखा चो वाह जड़े से जंगली
0: जंगली
1: जानवर,
0: जानवर
1: तो ये तो इतना एक किलो अनाज नहीं होना देना ना
0: ना ना मतलब
1: लेकिन
0: नहीं हो सकता कोई भी
1: हाँ हूं तो ये है कि दूरे पार से दिखते होने कि खाने का कुछ सामने है लेकिन अंदर आ ही
0: नहीं
1: नहीं सकते है ना।
0: आई सकते
1: अच्छा मनजीत जी जिया इतने भरी 250 कनाल च तो हाँ खेती करा कर दे इस वेले इस खाद कौन दे पाते तो हाँ
0: आहा ज्यादातर देसी खाद
1: घर डंगरे रखी हो अपने।
0: करें देखा मैं 3 गाय रखी हैं लेकिन मैं सकरी बिलासपुर कने गलुए दी खाद डो के लाता हूँ
1: तो
0: ये भी
1: जिया
0: है
1: ट्राली कुछ दिया कर जिया माल लगाइए कुनी एक ट्राली गोए दी लैनी है
0: हाँ
1: मुल्ले ले उन्दे होने ना
0: मूल्य सर
1: किया
0: 500 रुपया देते हैं कई तो बेचारे 1,200-1,300 भी लेते हैं कोई बेचारा 500 में भी दे देता है कोई फ्री भी दे देता है
1: अच्छा देखा देसी तरीके कन्ने तैयार की थी जड़ी सब्जी है उसा दा रंग रूप जिदा एक नजारा ही जड़ा सा हो रहा है। हाँ
0: जल वहां ना टेम्पू साड़ा मार्केट च पहुंचता है ना ता सारे ते पहले मेरे टेम्पू वाल दौड़ते आंदे ने दुकानदार
1: हाँ
0: तेरा सरदारी दी सब्जी पहले खत्म ना हो जाए दे
1: हाँ जी
0: कई बोलते हैं बे मंद अरे पहले उन्होंने ले लिया उन्हें वो दूसरे ने
1: हाँ जी
0: बोले वो तो मिली जानी फिरी भी
1: हाँ जी
0: अबे इन्ना नहीं मिलना बोलिया
1: हाँ देसी होंगी ना ना।
0: हाँ इन्ना नहीं मिलना बोलिया
1: हाँ
0: वो तो
1: जी
0: फिरी भी मिली जानी
1: जी यहाँ गाय रखी है दूध भी देनी होनी है।
0: हाँ दूध देती है।
1: अच्छा मनजीत जी इससे बाद एक गल और कर देना कि इतने भारी एरिए च काम करना तो मुश्किल काम है, कितने की वर्कर लगाए होंगे कमे की आपू ही कर दे की।
0: नहीं
1: हाँ
0: मैं अप्पू नहीं कर सकता इतना काम ना
1: हाँ जी
0: इतना काम नहीं कर सकता बंदे रखे हो ना ये बेचारे करते हैं
1: रहना रोना
0: मेहनत
1: सब तो आड़ा ही है
0: हाँ
1: ना।
0: रहना रोना सब ना आंदा
1: अच्छा
0: हमारा
1: अच्छा
0: है।
1: अच्छा मनजीत जी ता अहां दी जड़ी बेरोजगार युवा पीढ़ी है ना
0: हाँ जी
1: जड़ी की नौकरियां पिछे ता ता घुमा कर दी कने नौकरियां नहीं भी मिला कर दी है ना। जिस तरीके कने तो हां जड़ा सा कामकार जड़ा

0: ऐसा कर दें तो हाँ ते ना ये क्या संदेश देना चाहेंगे जेड़ी यहाँ दी युवा पीढ़ी है।
1: मैं तो ये बोलता है ता देखो आम भी फौज दी नौकरी की ना तब जेड़ी तनख्वाह मिलती है महीने च दो दिन में पूर जाती थी, लेकिन जितनी तनख्वाह हम एक महीने में लेते थे उतनी एक दिन में ले लेते हैं इधर। मतलब के यदि बंदा ठीक करे ना।
0: हाँ जी
1: अभी पिछला सीजन मेरा चला टमाटर था
0: जी। अच्छा पीछे जी टमाटर काफी महंगे बिके।
1: महंगे बिके
0: जी ता मनजीत जी तो कन्ने मिली गई जरा सा बड़ा अच्छा लगा एक पूरा जिस ये बोलते ने कि दिल खुश हो गया जड़ा तो हाँ दा खेती जड़ा तो हाँ काम कार तो हाँ कितिया पूरे जंगल चे तो हाँ तो दिखा एक मंगल करी ते तो हाँ आहा करने जुड़े अपने खेती बाड़ी दे अनुभव तो हाँ आहा करने सांझा कीते तो हाँ दा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों आहा सुनी जानकारी कने इसके बाद फिर ते वक्त है सब्जी मंडी दे थोक भाव दा। आलू आज रहा 10-20 रुपये किलो, प्याज 34-35 रुपये किलो, टमाटर 20-30 रुपये किलो, लहसुन 180-200 रुपये किलो, शिमला मिर्च 65-75 रुपये किलो, अरबी 25-30 रुपये किलो, खीरा 25-45 रुपये किलो, मटर 110-120 रुपये किलो, फुलगोभी 30-50 रुपये किलो, बंद गोभी 25-30 रुपये किलो, बैंगन 35-40 रुपये, कद्दू रहा 20-25 रुपये, मूली रही 25-55 रुपये, पालक रहा 30-35 रुपये, हरी मिर्च 30-35 रुपये, धनिया 180-200 रुपया, तोरी 35-40 रुपये, भिंडी 25-35 रुपये, घीया 35-40 रुपये, कटहल रहा 25-40 रुपये, करेला 20-30 रुपये, गाजर रहे 25-30 रुपये।
3: फलों की गल करिए सेब दा रहा 100-180 रुपये प्रति किलो, केला 50-60 रुपये प्रति दर्जन, अनार 100-110 रुपये प्रति किलो, अनानास 35-40 रुपये, अमरूद 80-90 रुपये, मौसमी 50-60 रुपये, पपीता 45-60 रुपये, प्लम 40-60 रुपये, आम तोता 50-60 रुपये, आम दशहरी 40-60 रुपये, नाशपति 100-150 रुपये, नींबू 90-100 रुपये, कीवी एक पीस 35-40 रुपये, कन्नै माल्टा 100-110 रुपये।
2: किसान साथियों सब्जी मंडी के थोक भाव के बाद फिर ते वक्त है एक लोक गीत दा, ता और सुन दे एक प्यार दिया लोक गीत।

0: किसान साथियों इस लोकगीत करने हाँ जाने की अनुमति दिया जानते पहले दस दीजिए कि तकनीकी सहयोग रहा विपन कुमार दाक ने कार्यक्रम प्रस्तुत करता थे जितेंद्र पाल सिंह
1: उन्हें 42 सदस्य चुनिता
0: इजाजत। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 7:42 होने को हैं। थोड़ी ही देर में यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नीतियों व जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का किया आह्वान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा 15 वर्ष तक होगी ऑल इंडिया टूरिस्ट वाहनों की परिचालन अवधि। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा अटकाने लटकाने और भटकाने का खेल खेल रही सुक्खू सरकार, जनहित के भवनों पर तालाबंदी के लिए ठेकेदार मजबूर। राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक ने कर्जदारों को राहत देते हुए अगले 6 महीनों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की 3 योजनाएं की शुरू। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से जनजीवन प्रभावित, आगामी 24 घंटों के दौरान 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने और राज्य सरकार की नीतियों व जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। प्रदेश में कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने व जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से उन्होंने आज शिमला में एक अनूठी पहल भोजन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बीच की दूरी को खत्म करना है। इस पहल के तहत आज मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के साथ पच्छाद और चौपाल विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने संवाद किया। इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि संगठन ही सरकार का मुख्य आधार होता है और सभी से मिलने वाली प्रत्यक्ष फीडबैक के आधार पर जनहित की भावी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन किया जाएगा।
1: हर एक विधानसभा क्षेत्र से 50 से 60 कार्यकर्ताओं के बीच संवाद करेंगे, जमीनी स्तर पर फीडबैक लेकर अगली योजनाओं को अमलीजामा पहना सकते। संगठन से ही सरकार बनती है और संगठन के मजबूत कार्यकर्ता बूथ प्रभारी जब हमारे साथ आकर चर्चा करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कई बातें सामने आएगी। कार्यकर्ता उस विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक दे, सरकार के कार्यक्रमों का जो धरातल पर क्या असर हो रहा है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, यही मेरी एक मंशा है।
0: मुख्यमंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार कौशल विकास व रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में तकनीकी शिक्षा विभाग के तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य छात्रों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और रोजगारदाताओं को एकीकृत प्रणाली के माध्यम से जोड़कर प्रदेश में प्लेसमेंट और भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल छात्रों को रोजगार के अवसर और उद्योगों की आवश्यकता तक सीधी पहुंच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के सतत प्रयासों से प्रदेश के ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटरों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों की मांगों का मामला लगातार केंद्र सरकार के समक्ष उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों की परिचालन अवधि को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पर्यटन प्रधान राज्य में हजारों परिवार टैक्सी संचालन कर अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियमों में संशोधन किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी करने के साथ साथ विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया भी अधिसूचित कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि जनहित के भवनों पर ठेकेदार की तालाबंदी प्रदेश सरकार की नाकामी को उजागर करती है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि एक ओर राज्य सरकार सभी ठेकेदारों का भुगतान समय पर करने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ 2.5 साल पहले लोकार्पित भवन का उपयोग भी न होने की बात सामने आई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्मित आईटीआई भवन का भुगतान न होने पर ठेकेदार द्वारा भवन में ताला लगाने का मामला मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग ऐसी ही स्थिति है और जो कार्य पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए वे भी अटके पड़े हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार केवल अटकाने लटकाने और भटकाने का खेल खेल रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार ट्रेजरी व्हाट्सएप से चल रही है और अपनी सुविधा के अनुसार लोगों के भुगतान करवाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साथ बेहतर खेल सुविधाएं भी प्रदान कर रही है, जिसके अंतर्गत शतरंज के खेल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

0: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिला के ठियोग में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित 13 वर्ष से कम आयु वर्ग की शतरंज प्रतियोगिता के दौरान ये बात कही। इस प्रतियोगिता में 7 स्कूलों के 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रोहित ठाकुर ने कहा कि शतरंज केवल एक खेल नहीं बल्कि बौद्धिक क्षमता, अनुशासन और तार्किक सोच को विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक ने कर्जदारों को बड़ी राहत देते हुए अगले 6 महीनों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की 3 योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने आज शिमला में बताया कि किसानों को राहत देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि ऋण राहत योजना में 50% ब्याज माफी का निर्णय लिया गया है और जिन किसानों ने कृषि क्षेत्र में 3 लाख रुपए तक का ऋण लिया है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। संजय सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के 6,319 किसानों को इसका लाभ मिलेगा और ये योजना आज से अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 2016 तक के पुराने एनपीए खातों के लिए ओटीएस के तहत 25% ब्याज छूट दी जाएगी।
1: 3 लाख तक का जो कृषि लोन होगा हम उसमें 50% की रियायत कृषकों को देंगे। लगभग इसमें 6300 जो अकाउंट्स हैं वो सेटल किए जाएंगे। उसके अलावा हमने 2 और स्कीमें ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट जो है हमारे बैंक के जो कस्टोडियन हैं आरसीएस उनकी अनुमति के चलते हम 2016 तक के जो केसेस हैं उसमें भी हम रियायत दे रहे हैं। आज से हमारे बैंक में आने वाले 6 महीनों के लिए हम 3 स्कीमों को लॉन्च कर रहे हैं जिसका जो हमारे अकाउंट होल्डर हैं वो फायदा लेंगे।
0: हमीरपुर शहर के पुराने छात्रा विद्यालय को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत को एजुकेशनल विद्यालय के रूप में पुनः बहाल किया गया है। स्थानीय व्यापारियों, विद्यार्थियों के अभिभावकों और शहरवासियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू का आभार जताया है। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री के हमीरपुर दौरे के दौरान सुनील शर्मा बिट्टू ने इस स्कूल को प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत को एजुकेशनल स्कूल के रूप में पुनः शुरू करने की मांग प्रमुखता से रखी थी। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया था और अब मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने हमीरपुर शहर के दोनों वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के विलय को निरस्त करते हुए उन्हें अलग अलग संचालित करने के निर्देश दिए। नए आदेशों के अनुसार एक विद्यालय सीबीएसई जबकि दूसरा एचपी बोर्ड के अंतर्गत संचालित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि मंत्रालय की किसी भी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में एक भी सरकारी अस्पताल आधारित नशा मुक्ति केंद्र संचालित नहीं है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन द्वारा हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल आधारित नशा मुक्ति सुविधाओं को लेकर संसद में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। प्रताप राव जाधव ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से नया नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुछ नशा उपचार सुविधाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की सक्रियता के चलते कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। कांगड़ा जिला में शाहपुर उपमंडल की बो घाटी के स्पैड़ा और गढ़गुन गांव में भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण 6 मकान पूरी तरह बह गए हैं। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। जिला उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और उन्हें तत्काल राहत उपलब्ध करवाई जा रही है। भारी बारिश के चलते क्षेत्र में सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है। उन्होंने लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने का आग्रह किया।
2: अर्ली मॉर्निंग से भारी बारिश पूरे जिले में चली हुई थी और जो हमारे पास जो लॉस की रिपोर्ट आई है वो वैली से है जहाँ के पैडू और पैड़ा दोनों में नुकसान घरों का हुआ है, लेकिन हमारे लिए राहत की बात है कि कोई जानी नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ। लोगों को परिवारों को तुरंत करेंगे और जो है वो टेम्प्ररी शटरों में वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
0: इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नीतियों व जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का किया आह्वान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा 15 वर्ष तक होगी ऑल इंडिया टूरिस्ट वाहनों की परिचालन अवधि। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा अटकाने लटकाने और भटकाने का खेल खेल रही है सुक्खू सरकार, जनहित के भवनों पर तालाबंदी के लिए ठेकेदार मजबूर। राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक ने कर्जदारों को राहत देते हुए अगले 6 महीनों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की 3 योजनाएं की शुरू। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से जनजीवन प्रभावित, आगामी 24 घंटों के दौरान 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
4: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
3: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
4: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बसंतपुर स्थित सुनी, जिला शिमला से प्राप्त सूचना के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने हेतु इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों को भरने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इन पदों हेतु साक्षात्कार 13 अगस्त 2026 को बाल विकास परियोजना सुन्नी के कार्यालय में सुबह 11 बजे उप मंडलाधिकारी सुन्नी की अध्यक्षता में किए जाएंगे। इन पदों हेतु पात्रता की शर्तें इस प्रकार से हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही योग्य है। प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी का नाम संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे परिवारों की सूची में दर्ज होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और इससे संबंधित आय प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 10.2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवार का हिमाचल का स्थायी निवासी होना भी अनिवार्य है। एक बार फिर से बता दें, इन पदों हेतु आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 4 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है और इन पदों के लिए साक्षात्कार 13 अगस्त 2026 को बाल विकास परियोजना सुन्नी के कार्यालय में सुबह 11 बजे आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
6: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8 बजने को हैं, श्रोताओं लीजिए सुनिए मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं नाजिया हसन और जोहेब हसन के गाए हुए इस गीत के साथ।

0: नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आप नहीं बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज 1 मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खरगे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खरगे ने कहा कि नीट पीपर लेक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में ICP शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
2: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सापरस।

Jah. That we come to run things on the road. See?

मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये पंजाबी गीत सर्वजीत चीमा का गाया हुआ।

मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे थे 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 8:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर

0: बाद होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री

0: गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा, एक नई पहल, पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को

जी श्रोता, मुकेश जी की आवाज़ की यही तो खासियत थी। उसमें एक ऐसी सादगी, एक ऐसा भोलापन था जो हर आम इंसान को अपना बना लेता था। 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में जन्मे मुकेश चंद माथुर ने जब हिंदी सिनेमा में कदम रखा तो केएल सहगल के दौर में अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई। और राज कपूर तो उन्हें अपनी आत्मा कहते थे। वे कहते थे कि मैं तो सिर्फ शरीर हूँ, मेरी आवाज़ तो मुकेश है। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में ही एक और गीत।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: जी श्रोताओ, जिंदगी की कितनी भी बड़ी सच्चाई क्यों ना हो, उसे अपने गीतों के माध्यम से इतने सरल अंदाज में सिर्फ मुकेश ही गा सकते थे। और वो सिर्फ गम के ही सागर नहीं थे, जब उन्होंने रुमानी गाने गाए तो प्यार करने वालों को एक नया फलसफा दे दिया। साल 1976 में 27 अगस्त के दिन भले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन उनके गाए गीत आज भी हर धड़कन में जिंदा हैं।

जी श्रोताओ, और चलते चलते बस यही कहेंगे कि मुकेश की आवाज़ कल भी अमर थी, आज भी अमर है और हमेशा अमर रहेगी।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और इस कार्यक्रम में आज आपने सुने मुकेश के नगमे। रात्रि के 9:30 हुए हैं और लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम धाम गीता दी। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं रीता, सपना और लक्ष्मी के गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

धाम गीता दी ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला लोकगीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं निम्मो चौधरी की आवाज़ में।

धाम गीता दी लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला लोकगीत। लोक गायक हैं मंजू चिश्ती।

धाम गीता दी लोकगीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की गाए हुए इस गीत के साथ, जो हमने लिया है फिल्म चित्रलेखा से। वो लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई है रोशन ने।

शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। एस टी वर्मन का संगीत निर्देशन है और फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीतकार एस टी वर्मन, और फिल्म का नाम है गाइड।

जंगली फिल्म मेरी जो सुनिए मोहम्मद रफ़ी को, हसरत जयपुरी की शब्द रचना है और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 11 बजने को है, अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस

0: स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET-related issues despite government assurance.
2: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET-related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you are saying no.
1: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case today. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA parliamentary party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Union Health Minister J.P. Nadda today visited Dr. Ram Manohar Lohia Hospital in New Delhi and reviewed the condition of those injured during yesterday's protest in the national capital over the alleged NEET UG exam paper leak. The minister also held a meeting with the doctors at the hospital. Mr. Nadda also visited Lady Harding Medical College and Hospital and met the injured protesters who are admitted there. Delhi police released all opposition leaders, including senior Congress leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, after they were detained from the protest site near Lok Kalyan Marg. They were protesting over the NEET paper leak issue.